0: रोज रात 8 बजे सिर्फ CMR 101.3 FM टोरंटो।
1: क्या आप एक रिलायबल ऑटो केयर ढूंढ रहे हैं इस सीजन? तो जाएं एक्टिव ग्रीन एंड रॉस पे एट वार्डन एंड लॉरेंस। वहाँ बदलवाएं अपने सीजनल टायर्स और करवाएं सभी मेक्स एंड मॉडल्स की फुल सर्विस। साथ ही ले 30 पॉइंट इंस्पेक्शन फ्री। मेजर टायर ब्रांड्स पर ग्रेट डील्स और फुल बॉडी रिपेयर सर्विस प्लस इंश्योरेंस कवर्ड रिपेयर्स भी, पर सिर्फ वार्डन एंड लॉरेंस लोकेशन पर ही। आज ही अपॉइंटमेंट लें। कॉल रमेश एट 416-990-2462। एक्टिव ग्रीन एंड रॉस, वे योर कार गेट्स अ केयर it deserves.
2: कैशपॉइंट वन स्टॉप शॉप फॉर ऑल योर मनी ट्रांजैक्शन नीड्स। हम प्रोवाइड करते हैं ऑनेस्ट और रिलायबल सर्विसेज फॉर ऑल योर फाइनेंशियल नीड्स, जैसे कि वर्ल्ड वाइड मनी ट्रांसफर, चेक कैशिंग, करेंसी एक्सचेंज एंड बायबैक गोल्ड लोन एट एक्सेप्शनली लो रेट्स। दुनिया के किसी भी कोने से सेंड और रिसीव मनी ट्रांसफर्स, रिलायबल, कन्वीनियंट एंड अफोर्डेबल। दैट्स व्हाट कैशपॉइंट मनी ट्रांसफर सर्विसेज गिव यू। कैशपॉइंट ऑफर करता है टॉप डॉलर्स फॉर योर गोल्ड। अनवांटेड और यूज्ड गोल्ड के लिए कैशपॉइंट देगा फेयर मार्केट वैल्यू। लोकेटेड at 3852 Finch Avenue, Easton, Scarborough, Unit GO3. Aaj hi call karein 416-284-7000. 416-284-7000.
3: Another Don Clean with the Don Dux.
4: Oh, he's doing dishes with Dawn Platinum.
5: The only soap trusted to save wildlife affected by oil.
4: And Platinum removes up to 99% of grease and food residue, so he doesn't have to work so hard.
5: Well, flap my wings. What'll he do with all that unused elbow grease?
4: Organize the fridge, the spice rack, the junk drawer.
5: What are you quacking on about? He's gonna make enchiladas.
4: More dishes? That's giving this duck goosebumps.
3: Dawn Platinum, the better grease getter.
1: क्या आपकी कार अब समर रोड ट्रिप्स के लिए रेडी है? नहीं तो उसकी समर मेंटेनेंस ट्यून अप माय मैकेनिक ऑटो एंड रिपेयर के कार एक्सपर्ट्स को दे दें। वो बदल देंगे विंटर टायर्स टू समर टायर्स। नए टायर्स लें एट अनबीटेबल प्राइसेस और $200 तक की टायर रिबेट भी, साथ में ब्रेक, सस्पेंशन, फ्लूइड्स एक्सेट्रा के कॉम्प्लीमेंट्री चेकअप भी। और हाँ, विद अ मंथली टायर स्वीप डील आप जीत सकते हैं $1000 के ब्रांड न्यू सेट ऑफ टायर्स बिल्कुल फ्री। सभी तरह की बॉडी और कोलिजन रिपेयर्स में स्पेशलाइज करते हैं और इंश्योरेंस से डायरेक्ट डील। कॉल 905-946-1000 for Midland and Sears and 416-757-1000 for Midland and Ellesmere, or visit mymechanicauto.ca.

गोल्ड खरीदना है तो यह परफेक्ट टाइम, क्योंकि एशिया गोल्ड पर शुरू हो गया है जून ज्वेलरी सेविंग्स प्रोग्राम। जून 5 से जून 21 तक वहाँ सभी हाई क्वालिटी अनयूज्ड ब्रांड न्यू ज्वेलरी कलेक्शंस पर स्पेशल डिस्काउंट्स हैं। सेलिब्रेट लेजर कट 24th एनिवर्सरी विद स्पेशल प्राइजेस ऑन ऑल गोल्ड ज्वेलरी। विजिट एशिया गोल्ड एट 1510 स्टील्स एवेन्यू वेस्ट, इटोबिको नियर किपलिंग एंड स्टील्स, और कॉल 4167463795 4167463795। एशिया गोल्ड, हर चमक में भरोसा, हर खरीद में बचत। विजिट एशिया गोल्डिंग.com।

0: राजधानी स्वीट्स, ये सचमुच है स्वाद की राजधानी। खुद आइए, दोस्तों को भी लाइए।
1: ये है राजधानी, राजधानी, राजधानी।
2: राजधानी स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट, द लार्जेस्ट इंडियन वेजिटेरियन रेस्टोरेंट चेन इन कनाडा। फाइंड आउट मोर एट rajdhanisweets.ca।
3: Looking for your next ride? Morningside Nissan par ye hai perfect time. Drive away in a brand new Nissan Rogue with an incredible 0% finance for 60 months on all Rogue models. Ji haan, aapne theek suna. 0% financing for 60 months, making it easier than ever to own your dream SUV. Ab fikr na karein, hum sab credit types ke saath kaam karte hain, jisse sabko approve hone ka mauka mil sake. Visit Morningside Nissan today and mile AAG se or call 416-804-2365. Drive home your new Nissan Today at Morningside Nissan.
4: क्या आप भी वही डेली रूटीन में फंसे हैं? चलो एक ब्रेक ले लेते हैं। Toronto से just 2 hours north on Highway 400, एक परफेक्ट गेटअवे, ग्रैंड टेपाटू रिसॉर्ट नियर पेरी साउंड मुस्कोका। हर सीजन के लिए परफेक्ट डेस्टिनेशन, प्राइवेट बीच, इंडोर स्विमिंग पूल और स्टे इन कोजी सुंदर कॉटेजेस एंड होटल रूम्स। खाना हमारे स्पेशल रेस्टोरेंट में बहुत स्पेशल क्विजीन्स हैं बाय अ ब्रिलियंट इंडियन शेफ। So call today at 705-378-2210, 705-378-2210.
5: You're tuned in to
6: CMR at 8. Dil se. एक घंटा बेहतरीन म्यूजिक, दिलचस्प बातें और आपकी अपनी कम्युनिटी के साथ।
5: हर शाम
6: Monday to Friday, 8 p.m. to 9 p.m. Sirf CMR 101.3 FM Toronto par.

0: रोज रात 8 बजे सिर्फ CMR 101.3 FM टोरंटो।
1: क्या आप एक रिलायबल ऑटो केयर ढूंढ रहे हैं इस सीजन? तो जाएं एक्टिव ग्रीन एंड रॉस पे एट वार्डन एंड लॉरेंस। वहां बदलवाएं अपने सीजनल टायर्स और करवाएं सभी मेक्स एंड मॉडल्स की फुल सर्विस। साथ ही ले 30 पॉइंट इंस्पेक्शन फ्री। मेजर टायर ब्रांड्स पर ग्रेट डील्स और फुल बॉडी रिपेयर सर्विस प्लस इंश्योरेंस कवर्ड रिपेयर्स भी, पर सिर्फ वार्डन एंड लॉरेंस लोकेशन पर ही। आज ही अपॉइंटमेंट लें। कॉल रमेश एट 416-990-2462। एक्टिव ग्रीन एंड रॉस, वे योर कार गेट्स अ केयर it deserves.
2: कैशपॉइंट वन स्टॉप शॉप फॉर ऑल योर मनी ट्रांजैक्शन नीड्स। हम प्रोवाइड करते हैं ऑनेस्ट और रिलायबल सर्विसेज फॉर ऑल योर फाइनेंशियल नीड्स, जैसे कि वर्ल्ड वाइड मनी ट्रांसफर, चेक कैशिंग, करेंसी एक्सचेंज एंड बायबैक गोल्ड लोन एट एक्सेप्शनली लो रेट्स। दुनिया के किसी भी कोने से सेंड और रिसीव मनी ट्रांसफर्स, रिलायबल, कन्वीनियंट एंड अफोर्डेबल। दैट्स व्हाट कैशपॉइंट मनी ट्रांसफर सर्विसेज गिव यू। कैशपॉइंट ऑफर करता है टॉप डॉलर्स फॉर योर गोल्ड। अनवांटेड और यूज्ड गोल्ड के लिए कैशपॉइंट देगा फेयर मार्केट वैल्यू। लोकेटेड at 3852 Finch Avenue, Eastern Scarborough, Unit GO3. Aaj hi call karein 416-284-7000. 416-284-7000.
3: Another Don Clean with the Don Ducks.
4: Oh, he's doing dishes with Dawn Platinum.
5: The only soap trusted to save wildlife affected by oil.
4: And Platinum removes up to 99% of grease and food residue, so he doesn't have to work so hard.
5: Well, flap my wings. What'll he do with all that unused elbow grease?
4: Organize the fridge, the spice rack, the junk drawer.
5: What are you quacking on about? He's gonna make enchiladas.
4: More dishes? That's giving this duck goosebumps.
3: Dawn Platinum, the better grease getter.
1: क्या आपकी कार अब समर रोड ट्रिप्स के लिए रेडी है? नहीं तो उसकी समर मेंटेनेंस ट्यून-अप माय मैकेनिक ऑटो एंड रिपेयर के कार एक्सपर्ट्स को दे दें। वो बदल देंगे विंटर टायर्स टू समर टायर्स। नए टायर्स लें एट अनबीटेबल प्राइसेस और $200 तक की टायर रिबेट भी, साथ में ब्रेक, सस्पेंशन, फ्लूइड्स एक्सेट्रा के कॉम्प्लीमेंट्री चेकअप भी। और हाँ, विद अ मंथली टायर स्वीप डील आप जीत सकते हैं $1000 के ब्रांड न्यू सेट ऑफ टायर्स बिल्कुल फ्री। सभी तरह की बॉडी और कोलिजन रिपेयर्स में स्पेशलाइज करते हैं और इंश्योरेंस से डायरेक्ट डील। कॉल 9 9461000 for Midland and Sears and 416-757-1000 for Midland and Ellesmere, or visit mymechanicauto.ca.

खरीदना है तो यह परफेक्ट टाइम, क्योंकि एशिया गोल्ड पर शुरू हो गया है जून ज्वेलरी सेविंग्स प्रोग्राम। जून 5 से जून 21 तक वहाँ सभी हाई क्वालिटी अनयूज्ड ब्रांड न्यू ज्वेलरी कलेक्शंस पर स्पेशल डिस्काउंट्स हैं। सेलिब्रेट लेजर कट 24th एनिवर्सरी विद स्पेशल प्राइजेस ऑन ऑल गोल्ड ज्वेलरी। विजिट एशिया गोल्ड एट 5010 स्टील्स एवेन्यू वेस्ट, इटोबिको, नियर किपलिंग एंड स्टील्स, और कॉल 4167463795, 4167463795। एशिया गोल्ड, हर चमक में भरोसा, हर खरीद में बचत। विजिट asiagolding.com। Looking for your next ride? Morningside Nissan par ye hai perfect time. Drive away in a brand new Nissan Rogue with an incredible 0% finance for 60 months on all Rogue models. Ji haan, aapne theek suna. 0% financing for 60 months, making it easier than ever to own your dream SUV. Aur fikr na karein, hum sab credit types ke saath kaam karte hain, jisse sabko approve hone ka mauka mil sake. Visit Morningside Nissan today and mile AHA se, or call 416-804-2365. Drive home your new Nissan today at Morningside Nissan.

0: राजधानी स्वीट्स, ये सचमुच है स्वाद की राजधानी। खुद आइए, दोस्तों को भी लाइए।
1: ये है राजधानी, राजधानी, राजधानी।
2: Rajdhani Sweets and Restaurant, the largest Indian vegetarian restaurant chain in Canada. Find out more at rajdhanisweets.ca.
3: क्या आप भी वही डेली रूटीन में फंसे हैं? चलो एक ब्रेक ले लेते हैं। टोरंटो से जस्ट 2 hours नॉर्थ ऑन हाईवे 400, एक परफेक्ट गेटअवे ग्रैंड टेम्पल्टन रिसॉर्ट नियर फेरी साउंड मस्कोका। हर सीजन के लिए परफेक्ट डेस्टिनेशन, प्राइवेट बीच, इंडोर स्विमिंग पूल और स्टे इन कोजी सुंदर कॉटेजेस एंड होटल रूम्स। खाना हमारे स्पेशल रेस्टोरेंट में बहुत स्पेशल क्विजीन्स हैं बाय अ ब्रिलियंट इंडियन शेफ। So call today at 705-378-2210, 705-378-2210.
4: You're tuned in to
5: CMR at 8. Dil se. एक घंटा बेहतरीन म्यूजिक, दिलचस्प बातें और आपकी अपनी कम्युनिटी के साथ।
4: हर शाम
5: Monday to Friday, 8 p.m. to 9 p.m. Sirf CMR 101.3 FM Toronto par.

0: अपनी राजधानी।
1: राजधानी स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट के प्योर वेजिटेरियन लजीज खाने, जिसके स्वाद के सभी हैं दीवाने। फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आकर खाइए या फिर केटरिंग करवाइए, मिठाइयाँ ऐसी की मजा आ जाए।
0: ये है राजधानी राजधानी राजधानी।
1: मल्टीपल लोकेशंस इन GTA। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट rajdhanisweets.ca।
2: Another Don Clean with the Don Dux.
3: Oh, he's doing dishes with Dawn Platinum.
4: The only soap trusted to save wildlife affected by oil.
3: And Platinum removes up to 99% of grease and food residue, so he doesn't have to work so hard.
4: Well, flap my wings. What'll he do with all that unused elbow grease?
3: Organize the fridge, the spice rack, the junk drawer.
4: What are you quacking on about? He's gonna make enchiladas.
3: More dishes? That's giving this duck goosebumps.
2: Dawn Platinum, the better grease getter.

किसी लड़की की बाहों में झूल जा, दो चार दिन बाद उसको भूल जा। ए, और सुन,

0: और मी नहीं चलेगा। वैम बैम थैंक यू मैम नहीं चलेगा। वन नाइट स्टैंड नहीं चलेगा।
1: लिसन मैडम, तो क्या चलेगा?

0: पर होना चाहिए,
1: खाली खाली थिएटर होना चाहिए,
0: मोटर बाइक पर जाना चाहिए,
1: अरे बार बार ब्रेक लगाना चाहिए,
0: हमेशा अलर्ट होना चाहिए,
1: थोड़ा थोड़ा फ्लर्ट होना चाहिए,
0: लव होना चाहिए,
1: सब होना चाहिए,
0: रोमांस होना चाहिए।

0: रानी राजधानी।
1: राजधानी स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट के प्योर वेजिटेरियन लजीज खाने, जिसके स्वाद के सभी हैं दीवाने। फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आकर खाइए या फिर केटरिंग करवाइए, मिठाइयाँ ऐसी की मजा आ जाए।
0: ये है राजधानी राजधानी राजधानी।
1: मल्टीपल लोकेशंस इन GTA। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट rajdhanisweets.ca।
2: क्या आप भी वही डेली रूटीन में फंसे हैं? चलो एक ब्रेक ले लेते हैं। टोरंटो से जस्ट 2 hours नॉर्थ ऑन हाईवे 400, एक परफेक्ट गेटअवे ग्रैंड टेम्पेटिव रिसॉर्ट नियर पेरी साउंड मस्कोका। हर सीजन के लिए परफेक्ट डेस्टिनेशन, प्राइवेट बीच, इंडोर स्विमिंग पूल और स्टे इन कोजी सुंदर कॉटेजेस एंड होटल रूम्स। खाना हमारे स्पेशल रेस्टोरेंट में बहुत स्पेशल क्विजीन्स हैं बाय अ ब्रिलियंट इंडियन शेफ। So call today at 705-378-2210, 705-378-2210।
3: आप सुन रहे CMRF 9, मंडे टू फ्राइडे 9 AM to 11 AM। Stay tuned।

0: You're listening to CMR at 9. For advertising, call 647-220-4834. 647-220-4834. Stay tuned to CMR at 9. Cashpoint, one-stop shop for all your money transaction needs. Hum provide karte hain honest aur reliable services for all your financial needs. Jaise ki worldwide money transfer, check cashing, currency exchange and buyback gold loan at exceptionally low rates. Duniya ke kisi bhi kone se send or receive money transfers. Reliable, convenient and affordable. That's what Cashpoint money transfer services give you. Cashpoint offer karta hai top dollars for your gold. Unwanted or used gold ke liye Cashpoint dega fair market value. Located at 3852 Finch Avenue, Easton, Scarborough, Unit GO3. Aaj hi call karein 416-284-7000. 416-284-7000.
1: क्या आप एक रिलायबल ऑटो केयर ढूंढ रहे हैं इस सीजन? तो जाएं एक्टिव ग्रीन एंड रॉस पे एट वार्डन एंड लॉरेंस. वहाँ बदलवाएं अपने सीजनल टायर्स और करवाएं सभी मेक्स एंड मॉडल्स की फुल सर्विस. साथ ही ले 30 पॉइंट इंस्पेक्शन फ्री. मेजर टायर ब्रांड्स पर ग्रेट डील्स और फुल बॉडी रिपेयर सर्विस प्लस इंश्योरेंस कवर्ड रिपेयर्स भी. पर सिर्फ वार्डन एंड लॉरेंस लोकेशन पर ही. आज ही अपॉइंटमेंट लें. कॉल रमेश एट 416-990-2462. एक्टिव ग्रीन एंड रॉस, वे योर कार गेट्स अ केयर it deserves.

0: You're listening to CMR at 9 on CMR 101.3 FM.
1: Toronto!
2: Kaheen mat jaiye.
0: Don't touch that dial.
2: Hum bas yo dale hain.
0: After a short break and a few messages from our sponsors. Stay tuned for more hit Bollywood classics, timeless melodies, and non-stop entertainment. CMR 101.3 FM, Toronto! We'll be right back!
3: Looking for your next ride? Morningside Nissan par ye hai perfect time. Drive away in a brand new Nissan Rogue with an incredible 0% finance for 60 months on all Rogue models. Ji haan, aapne theek suna. 0% financing for 60 months, making it easier than ever to own your dream SUV. Aur fikr na karein, hum sab credit types ke saath kaam karte hain, jisse sabko approve hone ka mauka mil sake. Visit Morningside Nissan today and mile AAG se or call 416-804-2365. Drive home your new Nissan today at Morningside Nissan. क्या आप भी वही डेली रूटीन में फंसे हैं? चलो एक ब्रेक ले लेते हैं. Toronto से just 2 hours north on Highway 400, एक परफेक्ट गेटअवे ग्रैंड डिपार्चर रिसॉर्ट नियर फेरी साउंड मुस्कोका. हर सीजन के लिए परफेक्ट डेस्टिनेशन, प्राइवेट बीच, इंडोर स्विमिंग पूल और स्टे इन कोजी सुंदर कॉटेजेस एंड होटल रूम्स. खाना हमारे स्पेशल रेस्टोरेंट में बहुत स्पेशल क्विजीन्स हैं बाय अ ब्रिलियंट इंडियन शेफ. So call today at 705-378-2210, 705-378-2210.
4: क्या आपकी कार अब समर रोड ट्रिप्स के लिए रेडी है? नहीं तो उसकी समर मेंटेनेंस ट्यून अप माय मैकेनिक ऑटो एंड रिपेयर के कार एक्सपर्ट्स को दे दें. वो बदल देंगे विंटर टायर्स टू समर टायर्स. नए टायर्स लिए एट अनबीटेबल प्राइसेस और $200 तक की टायर रिबेट भी, साथ में ब्रेक, सस्पेंशन फ्लूइड्स एटसेट्रा के कॉम्प्लीमेंट्री चेकअप भी. और हाँ, विद ए मंथली टायर स्वीप डील आप जीत सकते हैं $1000 के ब्रांड न्यू सेट ऑफ टायर्स बिल्कुल फ्री. सभी तरह की बॉडी और कोलिजन रिपेयर्स में स्पेशलाइज करते हैं और इंश्योरेंस से डायरेक्ट डील. कॉल 905-946-1000 for Midland and Sears and 416-757-1000 for Midland and Ellesmere, or visit mymechanicauto.ca.

0: रानी राजधानी।
1: राजधानी स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट के प्योर वेजिटेरियन लजीज खाने, जिसके स्वाद के सभी हैं दीवाने। फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आकर खाइए या फिर केटरिंग करवाइए, मिठाइयाँ ऐसी की मजा आ जाए।
0: ये है राजधानी राजधानी राजधानी।
1: मल्टीपल लोकेशंस इन GTA। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट rajdhanisweets.ca।
2: Another Don Clean with the Don Ducks.
3: Oh, he's doing dishes with Dawn Platinum.
4: The only soap trusted to save wildlife affected by oil.
3: And Platinum removes up to 99% of grease and food residue, so he doesn't have to work so hard.
4: Well, flap my wings. What'll he do with all that unused elbow grease?
3: Organize the fridge, the spice rack, the junk drawer.
4: What are you quacking on about? He's gonna make enchiladas.
3: More dishes? That's giving this duck goosebumps.
2: Dawn Platinum, the better grease getter.

0: आप सुन रहे CMR at 9, Monday to Friday, 9 a.m. to 11 a.m. Stay tuned. Cashpoint, one-stop shop for all your money transaction needs. हम प्रोवाइड करते हैं honest और reliable services for all your financial needs, जैसे कि worldwide money transfer, check cashing, currency exchange and buyback gold loan at exceptionally low rates. दुनिया के किसी भी कोने से send और receive money transfers, reliable, convenient and affordable. That's what Cashpoint money transfer services give you. Cashpoint offer करता है top dollars for your gold. Unwanted or used gold के लिए Cashpoint देगा fair market value. Located at 3852 Finch Avenue, Eastern Scarborough, Unit GO3. आज ही कॉल करें 416-284-7000, 416-284-7000.
1: क्या आपकी कार अब समर रोड ट्रिप्स के लिए रेडी है? नहीं तो उसकी समर मेंटेनेंस ट्यून-अप माय मैकेनिक ऑटो एंड रिपेयर के कार एक्सपर्ट्स को दे दें। वो बदल देंगे विंटर टायर्स टू समर टायर्स। नए टायर्स लें एट अनबीटेबल प्राइसेस और $200 तक की टायर रिपेयर भी, साथ में ब्रेक, सस्पेंशन, फ्लूइड्स एक्सेट्रा के कॉम्प्लीमेंट्री चेकअप भी। और हाँ, विद अ मंथली टायर स्वीप डील आप जीत सकते हैं $1000 के ब्रांड न्यू सेट ऑफ टायर्स बिल्कुल फ्री। सभी तरह की बॉडी और कोलिजन रिपेयर्स में स्पेशलाइज करते हैं और इंश्योरेंस से डायरेक्ट डील। कॉल 9046-1000 for Midland and Sears and 416-757-1000 for Midland and Ellesmere or visit mymechanicauto.ca.

0: You're listening to CMR at 9. For advertising, call 647-220-4834. 647-220-4834. Stay tuned to CMR at 9.
1: वही डेली रूटीन में फंसे हैं। चलो एक ब्रेक ले लेते हैं। टोरंटो से जस्ट 2 hours नॉर्थ ऑन हाईवे 400, एक परफेक्ट गेटअवे ग्रैंड डिपार्चर रिसॉर्ट, ये फेरी साउंड मुस्कोका, हर सीजन के लिए परफेक्ट डेस्टिनेशन, प्राइवेट बीच, इंडोर स्विमिंग पूल और स्टे इन कोजी सुंदर कॉटेजेस एंड होटल रूम्स। खाना हमारे स्पेशल रेस्टोरेंट में बहुत स्पेशल क्विजीन्स हैं बाय अ ब्रिलियंट इंडियन शेफ। So call today at 705-378-2210, 705-378-2210. Looking for your next ride? Morningside Nissan par ye hai perfect time. Drive away in a brand new Nissan Rogue with an incredible 0% finance for 60 months on all Rogue models. Ji haan, aapne theek suna. 0% financing for 60 months, making it easier than ever to own your dream SUV. Aur fikr na karein, hum sab credit types ke saath kaam karte hain, jisse sabko approve hone ka mauka mil sake. Visit Morningside Nissan today and mile AAJ se or call 416-804-2365. Drive home your new Nissan today at Morningside Nissan.
0: You're listening to CMR at 9. For advertising, call 647-220-4834. 647-220-4834. Stay tuned to CMR at 9.

0: की राजधानी।
1: राजधानी स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट के प्योर वेजिटेरियन लजीज खाने, जिसके स्वाद के सभी है दीवाने। फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आकर खाइए या फिर केटरिंग करवाइए, मिठाइयाँ ऐसी की मजा आ जाए।
0: ये है राजधानी राजधानी राजधानी।
1: मल्टीपल लोकेशंस इन GTA। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट rajdhanisweets.ca।
2: You're listening to CMR at 9. For advertising, call 647-220-4834. 647-220-4834. Stay tuned to CMR at 9.

0: आप सुन रहे हैं CMR at 9, मंडे टू फ्राइडे 9 AM टू 11 AM. स्टे ट्यून्ड.
1: Another Don Clean with the Don Dux.
2: Oh, he's doing dishes with Dawn Platinum.
3: The only soap trusted to save wildlife affected by oil.
2: And Platinum removes up to 99% of grease and food residue, so he doesn't have to work so hard.
3: Well, flap my wings. What'll he do with all that unused elbow grease?
2: Organize the fridge, the spice rack, the junk drawer.
3: What are you quacking on about? He's gonna make enchiladas.
2: More dishes? That's giving this duck goosebumps.
1: Dawn Platinum, the better grease getter.
4: क्या आप एक रिलायबल ऑटो केयर ढूंढ रहे हैं इस सीजन? तो जाएं एक्टिव ग्रीन एंड रॉस पे एट वार्डन एंड लॉरेंस. वहाँ बदलवाएं अपने सीजनल टायर्स और करवाएं सभी मेक्स एंड मॉडल्स की फुल सर्विस. साथ ही ले 30 पॉइंट इंस्पेक्शन फ्री. मेजर टायर ब्रांड्स पर ग्रेट डील्स और फुल बॉडी रिपेयर सर्विस प्लस इंश्योरेंस कवर्ड रिपेयर्स भी. पर सिर्फ वार्डन एंड लॉरेंस लोकेशन पर ही. आज ही अपॉइंटमेंट लें. कॉल रमेश एट 416-990-2462. एक्टिव ग्रीन एंड रॉस, वे योर कार गेट्स अ केयर. It deserves.
5: लेक डे का प्लान था और टोयोटा टंड्रा के बिना सुकून नहीं, शोर मिला. बट व्हेन यू गेट अ टंड्रा एट योर लोकल टोयोटा डीलर, तो इसकी अप टू 11,000 पाउंड्स की टोइंग कैपेसिटी से आप डिसाइड करेंगे कि रुकना कहाँ है. टेक एडवांटेज ऑफ रेड टैग डेज ऑन नाउ. लीज अ 2026 टंड्रा 4x4 क्रू मैक्स TRD ऑफ रोड फ्रॉम $172 वीकली फॉर 36 मंथ्स एट 4.29% APR विथ $5,800 डाउन. विजिट shoptoyota.ca और योर लोकल टोयोटा डीलर टुडे.
6: Cashpoint, one-stop shop for all your money transaction needs. हम provide करते हैं honest और reliable services for all your financial needs, जैसे कि worldwide money transfer, check cashing, currency exchange and buyback gold loan at exceptionally low rates. दुनिया के किसी भी कोने से send और receive money transfers, reliable, convenient and affordable. That's what Cashpoint money transfer services give you. Cashpoint offer करता है top dollars for your gold. Unwanted or used gold के लिए Cashpoint देगा fair market value. Located at 3852 Finch Avenue, Eastern Scarborough, Unit GO3. Aaj hi call kare 416-284-7000. 416-284-7000.

0: राजधानी स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट के प्योर वेजिटेरियन लजीज खाने, जिसके स्वाद के सभी हैं दीवाने। फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आकर खाइए या फिर केटरिंग करवाइए, मिठाइयाँ ऐसी की मजा आ जाए।
1: ये है राजधानी राजधानी राजधानी।
0: मल्टीपल लोकेशंस इन GTA। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट राजधानी स्वीट्स.ca।

0: Looking for your next ride? Morningside Nissan par ye hai perfect time. Drive away in a brand new Nissan Rogue with an incredible 0% finance for 60 months on all Rogue models. Ji haan, aapne theek suna. 0% financing for 60 months, making it easier than ever to own your dream SUV. Ab fikr na karein, hum sab credit types ke saath kaam karte hain, jisse sabko approve hone ka mauka mil sake. Visit Morningside Nissan today and mile AAG se or call 416-804-2365. Drive home your new Nissan today at Morningside Nissan. क्या आप भी वही डेली रूटीन में फंसे हैं? चलो एक ब्रेक ले लेते हैं. टोरंटो से जस्ट 2 hours नॉर्थ ऑन हाईवे 400, एक परफेक्ट गेटअवे, ग्रैंड डिपार्चर रिसॉर्ट, नियर फेरी साउंड मुस्कोका, हर सीजन के लिए परफेक्ट डेस्टिनेशन, प्राइवेट बीच, इंडोर स्विमिंग पूल और स्टे इन कोजी सुंदर कॉटेजेस एंड होटल रूम्स. खाना हमारे स्पेशल रेस्टोरेंट में बहुत स्पेशल क्विजीन्स हैं बाय अ ब्रिलियंट इंडियन शेफ. So call today at 705-378-2210, 705-378-2210.
1: Another Don Clean with the Don Ducks.
2: Oh, he's doing dishes with Dawn Platinum.
3: The only soap trusted to save wildlife affected by oil.
2: And Platinum removes up to 99% of grease and food residue, so he doesn't have to work so hard.
3: Well, flap my wings. What'll he do with all that unused elbow grease?
2: Organize the fridge, the spice rack, the junk drawer.
3: What are you quacking on about? He's gonna make enchiladas.
2: More dishes? That's giving this duck goosebumps.
1: Dawn Platinum, the better grease getter.
4: Listen to us around the universe. www.cmr.fm.

0: राजधानी स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट के प्योर वेजिटेरियन लजीज खाने, जिसके स्वाद के सभी हैं दीवाने। फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आकर खाइए या फिर केटरिंग करवाइए। मिठाइयाँ ऐसी की मजा आ जाए।
1: ये है राजधानी, राजधानी, राजधानी।
0: मल्टीपल लोकेशंस इन GTA। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट rajdhanisweets.ca।
2: रिलायबल ऑटो केयर ढूंढ रहे हैं इस सीजन, तो जाए एक्टिव ग्रीन एंड रॉस पे एट वार्डन एंड लॉरेंस। वहाँ बदलवाए अपने सीजनल टायर्स और करवाए सभी मेक्स एंड मॉडल्स की फुल सर्विस। साथ ही ले 30-point इंस्पेक्शन फ्री। मेजर टायर ब्रांड्स पर ग्रेट डील्स और फुल बॉडी रिपेयर सर्विस प्लस इंश्योरेंस कवर्ड रिपेयर्स भी, पर सिर्फ वार्डन एंड लॉरेंस लोकेशन पर ही। आज ही अपॉइंटमेंट ले। कॉल रमेश एट 416-990-2462। एक्टिव ग्रीन एंड रॉस, वेयर योर कार गेट्स अ केयर इट deserves.
3: कैशपॉइंट, वन स्टॉप शॉप फॉर ऑल योर मनी ट्रांजैक्शन नीड्स। हम प्रोवाइड करते हैं ऑनेस्ट और रिलायबल सर्विसेज फॉर ऑल योर फाइनेंशियल नीड्स, जैसे कि वर्ल्ड वाइड मनी ट्रांसफर, चेक कैशिंग, करेंसी एक्सचेंज एंड बायबैक गोल्ड लोन एट एक्सेप्शनली लो रेट्स। दुनिया के किसी भी कोने से सेंड और रिसीव मनी ट्रांसफर्स, रिलायबल, कन्वीनियंट एंड अफोर्डेबल। दैट्स व्हाट कैशपॉइंट मनी ट्रांसफर सर्विसेज गिव यू। कैशपॉइंट ऑफर करता है टॉप डॉलर्स फॉर योर गोल्ड। अनवांटेड और यूज्ड गोल्ड के लिए कैशपॉइंट देगा फेयर मार्केट वैल्यू। लोकेटेड at 3852 Finch Avenue, Eastern Scarborough, Unit GO3. Aaj hi call karein 416-284-7000. 416-284-7000.
4: Listen to us around the universe. www.cmr.fm.

0: क्या आपकी कार अब समर रोड ट्रिप्स के लिए रेडी है? नहीं तो उसकी समर मेंटेनेंस ट्यून-अप माय मैकेनिक ऑटो एंड रिपेयर के कार एक्सपर्ट्स को दे दें। वो बदल देंगे विंटर टायर्स टू समर टायर्स। नए टायर्स लिए एट अनबीटेबल प्राइसेस और $200 तक की टायर रिबेट भी, साथ में ब्रेक, सस्पेंशन, फ्लूइड्स एक्सेट्रा के कॉम्प्लीमेंट्री चेकअप भी। और हाँ, विद ए मंथली टायर स्वीप डील आप जीत सकते हैं $1000 के ब्रांड न्यू सेट ऑफ टायर्स बिल्कुल फ्री। सभी तरह की बॉडी और कोलिजन रिपेयर्स में स्पेशलाइज करते हैं। और इंश्योरेंस से डायरेक्ट डील, कॉल 9046-1000 for Midland and Sears and 416-757-1000 for Midland and Ellesmere or visit mymechanicauto.ca.
1: Another Dawn Clean with the Dawn Ducks.
2: Oh, he's doing dishes with Dawn Platinum.
3: The only soap trusted to save wildlife affected by oil.
2: And Platinum removes up to 99% of grease and food residue, so he doesn't have to work so hard.
3: Well, flap my wings. What'll he do with all that unused elbow grease?
2: Organize the fridge, the spice rack, the junk drawer.
3: What are you quacking on about? He's gonna make enchiladas.
2: More dishes? That's giving this duck goosebumps.
1: Dawn Platinum, the better grease getter.
4: Listen to us around the universe. www.cmr.fm.

0: at 11. Only on CMR 101.3 FM.
1: Looking for your next ride? Morningside Nissan par ye hai perfect time. Drive away in a brand new Nissan Rogue with an incredible 0% finance for 60 months on all Rogue models. Ji haan, aapne theek suna. 0% financing for 60 months, making it easier than ever to own your dream SUV. Aur fikr na karein, hum sab credit types ke saath kaam karte hain, jisse sabko approve hone ka mauka mil sake. Visit Morningside Nissan today and mile AAJ se or call 416-804-2365. Drive home your new Nissan
2: क्या आप भी वही डेली रूटीन में फंसे हैं? चलो एक ब्रेक ले लेते हैं. टोरंटो से जस्ट 2 hours नॉर्थ ऑन हाईवे 400, एक परफेक्ट गेटअवे ग्रैंड डिपार्चर रिसॉर्ट नियर पेरी साउंड मुस्कोका. हर सीजन के लिए परफेक्ट डेस्टिनेशन, प्राइवेट बीच, इंडोर स्विमिंग पूल और स्टे इन कोजी सुंदर कॉटेजेस एंड होटल रूम्स. खाना हमारे स्पेशल रेस्टोरेंट में बहुत स्पेशल क्विजीन्स हैं बाय अ ब्रिलियंट इंडियन शेफ. So call today at 705-378-2210, 705-378-2210.

0: at 11. Only on CMR 101.3 FM.
1: क्या आप एक रिलायबल ऑटो केयर ढूंढ रहे हैं सीजन? तो जाएं एक्टिव ग्रीन एंड रॉस पे एट वार्डन एंड लॉरेंस. वहाँ बदलवाएं अपने सीजनल टायर्स और करवाएं सभी मेक्स एंड मॉडल्स की फुल सर्विस. साथ ही ले 30 पॉइंट इंस्पेक्शन फ्री. मेजर टायर ब्रांड्स पर ग्रेट डील्स और फुल बॉडी रिपेयर सर्विस प्लस इंश्योरेंस कवर्ड रिपेयर भी. पर सिर्फ वार्डन एंड लॉरेंस लोकेशन पर ही. आज ही अपॉइंटमेंट लें. कॉल रमेश एट 416-990-2462. एक्टिव ग्रीन एंड रॉस, वे योर कार गेट्स अ केयर it deserves.

0: अपनी राजधानी।
1: राजधानी स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट के प्योर वेजिटेरियन लजीज खाने, जिसके स्वाद के सभी हैं दीवाने। फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आकर खाइए या फिर केटरिंग करवाइए, मिठाइयाँ ऐसी की मजा आ जाए।
0: ये है राजधानी राजधानी राजधानी।
1: मल्टीपल लोकेशंस इन GTA। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट rajdhanisweets.ca।
2: Make some noise!

0: आपकी कार अब समर रोड ट्रिप्स के लिए रेडी है? नहीं तो उसकी समर मेंटेनेंस ट्यून-अप माय मैकेनिक ऑटो एंड रिपेयर के कार एक्सपर्ट्स को दे दें। वो बदल देंगे विंटर टायर्स टू समर टायर्स। नए टायर्स लिए एट अनबीटेबल प्राइसेस और $200 तक की टायर रिबेट भी, साथ में ब्रेक, सस्पेंशन, फ्लूइड्स एक्सेट्रा के कॉम्प्लीमेंट्री चेकअप भी। और हाँ, विद अ मंथली टायर स्वीप डील आप जीत सकते हैं $1000 के ब्रांड न्यू सेट ऑफ टायर्स बिल्कुल फ्री। सभी तरह की बॉडी और कोलिजन रिपेयर्स में स्पेशलाइज करते हैं और इंश्योरेंस से डायरेक्ट डील। कॉल 905-946-1000 फॉर मिडलैंड एंड सील्स एंड 416-757-1000 फॉर मिडलैंड एंड एल्समियर और विजिट mymechanicauto.ca।
1: Cashpoint, one stop shop for all your money transaction needs. Hum provide karte hain honest aur reliable services for all your financial needs, jaise ki worldwide money transfer, check cashing, currency exchange and buyback gold loan at exceptionally low rates. Duniya ke kisi bhi kone se send aur receive money transfers, reliable, convenient and affordable. That's what Cashpoint money transfer services give you. Cashpoint offer karta hai top dollars for your gold. Unwanted or used gold ke liye Cashpoint dega fair market value. Located at 3852 Finch Avenue, Easton, Scarborough, Unit GO3. Aaj hi call karein 416-284-7000. 416-284-7000.
2: Listen to us around the universe. www.cmr.fm.

0: South Asian Unlimited Radio, Monday to Friday, 12 to 2 p.m. South Asian Unlimited Radio, जहां news, views, sports, entertainment की खबरें होंगी बिल्कुल unlimited. Entertainment तो बहुत है, लेकिन यहां पर मिलेगा आपको बिल्कुल unlimited. News और views तो हर जगह मिलेंगे, लेकिन यहां पर मिलेगा बिल्कुल unlimited.
1: यहां भी होगा, वहां भी होगा, अब तो सारे जहां में होगा क्या? मेरा ही जलवा.
0: जी हाँ, साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो का जलवा मंडे टू फ्राइडे 12 से 2 बजे तक. पापा, ये कौन से शो की बात कर रहे हैं पापा?
2: स्वैग से करेंगे सबका स्वागत.
0: जी हाँ, स्वैग से करेंगे सबका स्वागत. ये उस शो की बात कर रहे हैं जिसका नाम है साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो, मंडे टू फ्राइडे 12 टू 2 पीएम.
3: और म्यूजिक म्यूजिक स्टार्ट करो भाई.
0: रोशनी कर खुदा को हो मंजूर, आंधियों में चिराग जलते हैं. साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो, मंडे टू फ्राइडे 12 टू 2 पीएम. स्टे ट्यून्ड.

0: The advertisements, views, and opinions expressed in the radio show are that of the sponsors, guests, and callers, and are not necessarily those of the South Asian Unlimited show, host, and its producers. The show is for entertainment purposes only and does not advocate any sponsors' messages. It is solely the responsibility of the advertiser or sponsor. नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं सनी जोशी, आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो पर, मंडे टू फ्राइडे 12 टू 2 पीएम साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो, जहाँ न्यूज़, व्यू, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट की खबरें होती हैं बिल्कुल अनलिमिटेड। स्टूडियो का नंबर 416-593-0055। बाहर का तापमान 25 डिग्री सेल्सियस, फील्स लाइक 26। मैक्सिमम टेम्परेचर्स आज 27 डिग्री तक पहुंचेंगे। सनसेट होगा 8:56 पर, 8:56 PM। स्टॉर्म्स पॉसिबल सैटरडे मॉर्निंग, 50-55% चांसेस हैं। एंड टुमारोज टेम्परेचर्स 27, मैक्सिमम संडे 25, मंडे 28। टेम्परेचर्स आर लुकिंग गुड नाउ। प्रॉब्लम है द AQI विच इज सो अनहेल्दी एट 167 स्टिल, obviously because of the 148 wild fires that are active in northern Ontario, जिसकी वजह से हमें ये देखने को मिल रहा है। सो एयर क्वालिटी टेक्स अ नोज डाइव, yesterday and today, like really, really bad. So, agar outdoors ko aap avoid kar sakte, please do so. Studio ka number 416-593-0055, Bajrangi Bhaijaan ka geet, Adnan Sami ki awaaz mein, filmaya on Salman Khan and Bharto Joli, jisse humne din ki shuruaat ki hai. What a beautiful song. Sawa Bara ki headlines bilkul ready hai. Aapki song request play karenge all the way till 2 p.m. The segment is brought to you by Brampton TV and Appliances, TV Appliance Laundry ke Sultan. Sultan ji offer karte hain amazing deals at 801 Bovade Drive West at the corner of Bovade and Chikusi in Brampton. Rajdhani Sweets and Restaurant, jo ki 30 प्लस लोकेशन से सर्व करते हैं 100% प्योर वेजिटेरियन फूड, जबरदस्त मिठाइयों का दूसरा नाम राजधानी स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट, राजधानी स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट। अगर ऑटो एंड होम इंश्योरेंस की रिन्यूअल आ रही है, यू वांट टू सेव डॉलर्स, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स मे बी ऑफ डॉलर्स, खासकर जहां पर आप टू कार्स और होम को इंश्योर करते हैं, यू कैन सेव अप टू एन एवरेज ऑफ $2,100। उसके ऊपर से नए जो स्टूडेंट्स हैं, न्यू इमिग्रेंट्स हैं, जिन्हें नया नया लाइसेंस मिला है, गुरविंदर जी ऑल स्टेट के लिए काम करती हैं, गुरविंदर बामरा, टॉक टू हर, सेव अ लॉट ऑफ मनी। होम इंश्योरेंस हो या ऑटो हो, 647-303-3207, 647-303-3207। फीफा वर्ल्ड कप बस दो दिन की कहानी बची है, ऑल दैट यू नो हू हा एंड ऑल दैट एक्साइटमेंट एंड यू नो इट्स प्रॉब्ली कमिंग टू एन एंड नाउ। तो थर्ड प्लेस प्ले ऑफ कल होगा फ्रांस इंग्लैंड का 5 बजे शाम को, और फीफा वर्ल्ड कप फाइनल संडे को 3 PM स्पेन वर्सेस अर्जेंटीना, एंड देन 4 साल का फिर से होगा इंतजार। एंड गार्लिक पाउडर हेमनली स्पाइसेस का डॉलरामा ने पुल कर लिया है फ्रॉम शेल्स माइक्रोबियल कंटामिनेशन की वजह से। सो अगर आपके घर पे वो है, यू माइट वांट टू गो एंड गिव इट बैक। मेटा लॉन्चेस न्यू टूल टू अलर्ट कैनेडियन पेरेंट्स इफ देयर चाइल्ड डिस्कसेस सुसाइड विद AI चैटबॉट। So that's a great thing that they've done. Ontario Tourism Minister Stan Cho ne resigned kiya hai following scandal over hotel expense claims. So he has resigned. मेल राइडिंग स्कूटर का कलिजन हुआ ब्लूर स्ट्रीट और डफरिन पर, और डफरिन स्ट्रीट पर, और उनकी मौत हुई है। दे जस्ट द रिपोर्ट जस्ट केम इन। 416-593-0055 स्टूडियो का नंबर है। 12:15 की हेडलाइंस अपनी बिल्कुल रेडी है। छोटी सी यहां पे ब्रेक लेते हैं, हेडलाइंस लेकर फौरन आते हैं वापस।
1: हर एक ग्रेट जर्नी शुरू होती है एक सही पार्टनर के साथ। वेन्स ऑटो ग्रुप में हमारे डीलरशिप्स का वाइड नेटवर्क डिवर्स कम्युनिटीज को प्राउडली सर्व करता है। एक्सपर्ट कार बाइंग गाइडेंस, प्रीमियम सर्विस और ऐसा सपोर्ट जो आपकी लैंग्वेज समझे। हर डीलरशिप का प्रॉमिस एक ही है, ट्रस्टेड केयर, कंसिस्टेंट सर्विस और कंप्लीट ऑटोमोटिव सपोर्ट। फ्रॉम फर्स्ट ड्राइव टू लाइफ टाइम केयर, वेन्स ऑटो ग्रुप इज ऑलवेज देयर। Visit VainsAutoGroup.com.

0: रानी राजधानी।
1: राजधानी स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट के प्योर वेजिटेरियन लजीज खाने, जिसके स्वाद के सभी हैं दीवाने। फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आकर खाइए या फिर केटरिंग करवाइए, मिठाइयाँ ऐसी की मजा आ जाए।
0: ये है राजधानी राजधानी राजधानी।
1: मल्टीपल लोकेशंस इन GTA। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट rajdhanisweets.ca।
2: Our loan and credit card bills keep piling up. We have no money to pay them with our limited income.
3: I'm afraid we are going to go bankrupt and lose our house, business and all assets. Is this why we immigrated to Canada?
4: Jab

0: Help is just one call away. No need to file bankruptcy. We can save your assets, stop collection calls and make one monthly interest-free installment for maximum debt relief. Call Aisha Munawwar, Debt Solutions Specialist and Insolvency Counselor with Rumanek & Company Limited, a company with licensed insolvency trustee. Call Aisha Munawwar at 416-428-2165. That's 416-428-2165. Hum honge aapke
1: saath hamesha. Hi Anju, कैसी हो? How's your son doing?
2: निशा पूछ मत, सारा दिन कंप्यूटर टीवी फोन पर लगा रहता है, आंखें तो खराब होंगी ही, होमवर्क के टाइम बैटरी गुल।
1: मैं समझ गई, उसे चाहिए प्रिस्क्रिप्शन वाले स्मार्ट ग्लासेस फ्रॉम क्लियर ऑप्टिकल।
3: She is right, चाहे बच्चे हो या बड़े, wear smart glasses every day। ये प्रिस्क्रिप्शन स्मार्ट ग्लासेस आपके खराब होते विजन को स्टेबलाइज करे बिना किसी भी स्ट्रेस एंड फटीग ऑन योर आईज। विजिट 8005 फाइनेंशियल ड्राइव ब्रैम्पटन 905-457-3232 क्लियर ऑप्टिकल बाय वरुण कैंडा।
4: क्या आपकी होम और ऑटो इंश्योरेंस की रिन्यूअल ड्यू है? क्या आपको तलाश है गुड रेट्स की फॉर द राइट कवरेजेस? तो आज ही कॉल करें गुरविंदर बामरा को फ्रॉम ऑल स्टेट्स मिस्सागा साउथ एजेंसी एट 289-891-0296। इट्स 289-891-0296। आज ही कॉल करें एंड यू कैन सेव एन एवरेज ऑफ $2,163 व्हेन इंश्योरिंग टू कार्स एंड अ होम। Remember, you're in good hands with Allstate.
5: Genesis Markham par luxury milti hai ek expectation se bhi zyada. Lease kijiye beautifully designed 2026 G70. Sirf 1.9% se up to 39 months. Ya lease kijiye 2026 GV70. Sirf 2.9% se. Book your test drive today. Visit genesismarkham.ca, located at Woodbine Avenue and John Street, Markham. Genesis Markham, doing luxury your way. A proud member of Vane's Auto Group.
6: सुनो, आज मेरे भाई की फ्लाइट है इंडिया से।
7: अच्छी याद है। अच्छा, उसको कहना कि आते हुए एक प्लेट छोले भटूरे पैक करा के ले आए इंडिया से।
6: अजी, इंडिया जैसे स्वाद वाले छोले भटूरे खाने के लिए इंडिया के सपने ना लो, सीधा choleBhature.ca पे चलो।
8: choleBhature.ca, बेस्ट पंजाबी रेस्टोरेंट इन ब्रैम्पटन। छोले भटूरे, पतीले वाले मटर कुलचे, पाव भाजी, अमृतसरी कुलचे और भी कई डिलीशियस ऑथेंटिक इंडियन स्टाइल फूड के लिए पहुँचे। choleBhature.ca, कॉल 905-458-2448.
4: Serving from 4 dine-in locations, 2 in Brampton, 1 in Mississauga, and 1 by Vaughan Mills.
9: बिना सफर बिन मंजिलों का एक रास्ता होना चाहता हूँ। बिन सफर बिन मंजिलों का एक रास्ता होना चाहता हूँ। कहीं दूर किसी जंगल में ठहरा दरिया होना चाहता हूँ। एक जिंदगी होना चाहता हूँ बिना रिश्तों के और रिवाजों के। दूर आसमान से गिरते झरने में कहीं खोना चाहता हूं। मैं आज मैं होना चाहता हूं।
10: गुड आफ्टरनून, शुरू करते हैं साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो की ताजा तरीन हेडलाइंस।

Welcome back, friends. And the headlines are brought to you by Clear Optical by Varun Kanda, Kavya Home Care, McQueen Dental Care, Rajdhani Sweets and Restaurant, Win Lifetime Trading and Brampton TV Appliances. Shuru karte hain taza tareen headlines. Iran ke anusar, unhone Jordan mein US aircraft ko missiles aur drones se hit kiya. Iran ka dawa hai ki unhone kai US jets ko destroy kiya hai, cause serious damage to many more. Report ke anusar, US strikes ne Iran mein bridges aur airport ko hit kiya, railway station targeted as well. Trump administration ne foreign students aur journalists ke liye visa limits ko sakht kiya. September se agar changes aaye, then foreigners on student visas would be admitted for their academic program up to a maximum of only 4 years. Donald Trump ne White House ke situation room mein high-level meeting ki. Senior officials ne military operations par ki charcha. Texas floods mein dozens rescued as deadly flood wave sweeps region. Sixth consecutive night ke liye US forces ne Iran ke khilaf wave of strikes jari rakhi. Zelensky ne apne popular defense minister ko hataya, jiske baad Ukraine mein protests dekhe gaye. Hundreds of Canada wildfires ne US ki AQI ko bhi bigada. Smoke spreads down south. Donald Trump claims China interfered in 2020 US polls. Local samacharon mein Toronto ka aasman clear hai, magar AQI is very poor. Toronto AQI worst in the world, magar jald relief bhi milegi. Etobicoke ki industrial bakery mein crews battling 3-alarm fire and murdered Brampton truck driver ki body was dumped in Stony Creek. Hamilton traffic stop ke duran 2 million unmarked cigarettes discovered and 3-vehicle crash backs up traffic on westbound highway 401 in North York. Bharatiya samacharon mein 15-year-old national-level shooter lapata hai, last seen at Howrah station in Kolkata. Assam madrasa sexual abuse case mein key accused ko arrest kiya gaya. Odisha government ne puri rath yatra ke duran stampede ko deny kiya, magar do deaths ko confirm bhi kiya. Gurugram mein 28 saal ke shakhs ko usi ke dost ne shoot kiya, took him to a hospital, fled after the victim was declared dead. Shiv Sena spokesperson Shaina NC ka WhatsApp account hack kiya gaya. Shaina ne cyber police se complaint darj ki. Aur Mumbai ke Mira Road par crane ke girne se panic ka mahol dekha gaya. Under construction tower se giri thi crane. Legal counsel ke bina wale cases mein no Supreme Court live stream in hearings. And Gurugram mein ek SUV driver ne domestic worker par chalai gaadi, CCTV mein hadsa qaid hua. Sutron ke anusar Ram Mandir theft report tayar hai, aaj submit ki jayegi. Adalat ne framing charges ka order diya in cross-border narco terror funding case. Ek highway aur 4 states, lakho logon ki zindagi. PM Modi ne Delhi ka Katra expressway ko kiya open. PM Modi ne Punjab mein 5470 crore rupay ke railroad projects ko bhi launch kiya. दूसरी ओर पाकिस्तान की खबरों से ISPR के अनुसार बंडू ऑपरेशंस में 24 टेररिस्ट अब तक मारे गए. आर्मी ने कहा कि टेररिज्म के खात्मे के लिए ऑपरेशंस को जारी रखेंगे. चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज ने स्टूडेंट्स के लिए 1,00,000 फ्री इलेक्ट्रिक बाइक्स का ऐलान किया. पंजाब अब इस्टेब्लिश करेगा नवाज शरीफ स्कूल्स इन एवरी तहसील. चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज ने आवाम से गुहार लगाई कि अपने बच्चों को अनसेफ साइट्स से दूर रखें. स्टूडेंट से कहा टू लर्न AI, रोबोटिक्स एंड मशीन लर्निंग. पाकिस्तान ने रोचडेल रेपिस्ट की जिम्मेदारी लेने से मना कर दिया है. यूके हिंट्स एट वीजा रिस्ट्रिक्शंस. यूके ने पाकिस्तान को कहा टू एक्सेप्ट कन्विक्टेड शबीर अहमद रिटर्न, मगर पाकिस्तान का कहना है कि अहमद का केस ब्रिटिश की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है. इस्लामाबाद रिजेक्ट्स एनी लिंक्स टू अहमद क्राइम्स एंड रिलीज. पाकिस्तान ने वर्ल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का फाउंडिंग मेंबर बनने का ऐलान किया. और पीएम शरीफ का कहना है कि यूएस ईरान कॉन्फ्लिक्ट के रिन्यू होने का मतलब है कि इकॉनमी फिर से हिट होगी, सप्लाईज पर होगा इसका बुरा असर. अदालत ने पॉडकास्ट होस्ट रेहान तारिक की ब्लास्फेमी केस में पोस्ट अरेस्ट बेल पिटिशन को किया डिसमिस. पाकिस्तान और चाइना ने यूएस ईरान से गुहार लगाई टू रिज्यूम टॉक्स. MOU प्रोविजंस को दोनों साइड्स ऑनर करें. FCC ने KP अपील को खारिज किया ओवर MA क्वालिफाइड सैनिटरी वर्कर. जस्टिस रिजवी ने बेहद नाराजगी बयां की. दूसरी ओर स्पोर्ट्स जगत से फाइनल ODI मैच की संभावना को देखते हुए रोहित शर्मा के पेरेंट्स लंदन पहुंचे टू विटनेस गेम अगेंस्ट इंग्लैंड. पाकिस्तान स्टार मोहम्मद नवाज सैंक्शनड बाय ICC फॉर ब्रीचिंग एंटी डोपिंग कोड. FIFA वर्ल्ड कप थर्ड प्लेस प्लेऑफ फ्रांस वर्सेस इंग्लैंड सैटरडे को 5 बजे शाम को खेला जाएगा. FIFA वर्ल्ड कप फाइनल स्पेन वर्सेस अर्जेंटीना टू बी प्लेड ऑन संडे एट 3 PM. जो रूट के 99 नॉट आउट के बाद इंग्लैंड हैमर इंडिया इन द सेकेंड ODI लेवल सीरीज एट 1-1.
बॉलीवुड खबरों से, 7 months प्रेग्नेंट दीपिका पाडुकोण ने फिल्म राका के इंटेंस एक्शन सीन्स के लिए नाइट शिफ्ट्स पर काम किया। रियलिटी शो के दौरान सुहेल खान ने किया खुलासा, ही वांटेड टू नेम हिज सन राम खान व्हेन ही वाज बोर्न। प्रभास की फिल्म फौजी अब दिसंबर 3 को होगी रिलीज। परेश रावल ने कहा कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत के इर्द गिर्द की मीडिया सर्कस से वो बेहद परेशान थे, ही हेटेड ऑल ऑफ इट। इमरान हाशमी की फिल्म अवारापन का फर्स्ट पार्ट री रिलीज होगा ऑन जुलाई 31st टू क्लैश विद स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे। सनी डियोल की फिल्म बंटवारा 1947 की टीम रिलीज से पहले 12 सिटी प्रमोशनल टूर पर निकलेगी। और विकी कौशल ने कटरीना कैफ के 43rd बर्थडे सेलिब्रेशन की कुछ फोटोज शेयर की। ये थी साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो का की ताज़ा तरीन हेडलाइंस। कल 43rd बर्थडे कटरीना कैफ ने सेलिब्रेट किया, और जब कटरीना कैफ को देखते हैं तो ऑब्वियसली कुचा लंबा कद दूजा सोनी नीतू हद वेलकम फिल्म का गीत ही याद आता है, जो कि अक्षय कुमार ने फिर से अपनी वेलकम टू द जंगल में दिशा पाटनी के साथ रिक्रिएट करने की कोशिश की। बट लोगों को ऐसा लगा कि भाई ओरिजिनल अक्षय एंड कटरीनाज डांस नंबर वॉज वे बेटर। ज्यादातर ऐसा ही होता है। चलिए, क्लियर ऑप्टिकल बाय वरुण कांडा दो लोकेशन से सर्व करते हैं, ब्रैम्पटन जॉर्ज टाउन एंड नेम ब्रांड सनग्लासेस पर अमेजिंग डील्स चल रही हैं, समर वाली स्पेशल्स चल रही हैं, पहुंच जाइए क्लियर ऑप्टिकल बाय वरुण कांडा पर। आनंद राज आनंद एंड कोरस उच्चा लंबा कद इंजॉय करें, आते हैं बहुत ही जल्द वापस।

0: आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो। एडवर्टाइजिंग के लिए कॉल करें 647-863-1940, 647-863-1940।
1: फैमिली ट्रैवल को बनाइए एफर्टलेस विद द लेक्सस TX 350 एट डॉन वैली नॉर्थ लेक्सस। स्पेशियस, रिफाइंड और हर ड्राइव के लिए रेडी, क्विक रिफ्यूलिंग के साथ बिना चार्जिंग डिलेस के। वेलकम बैक ऑफर और 10 MSDs का एडवांटेज लीजिए और लीज कीजिए।

0: और विजिट poojahut.com।
1: जय श्री राम।
2: की तुहानू इलेक्ट्रिशियन दी लोड है, सानू हाई रिस्क इलेक्ट्रिकल ते कॉल करो। हाई रिस्क क्यों? क्योंकि साडे कोल लाइसेंस नहीं है ते सी इलेक्ट्रिकल परमिट नहीं लेंदे। जाने की तुसी पक्का नहीं कह सकते कि साडा काम किन्ना कु सुरक्षित जां कानूनी है, पर एक गल पक्की है कि जदों भी असीं आवांगे असीं तुहाडा टॉयलेट जरूर वरतांगे। इसलिए हुणे कॉल करो, असीं वादा करदे हां कि तुहाडे घर नूं अग नहीं लगेगी। शायद
3: अपने परिवार दी रक्षा करो, सिर्फ लाइसेंस्ड इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर ही वरतो अते यकीनी बनाओ कि ओ ईएसए परमिट हासिल करन। होर जानन लई hirelicense.ca ते जाओ। इलेक्ट्रिकल सेफ्टी अथॉरिटी वल्लों एक सुनेहा।

0: जोशी।
1: Hyundai का नेक्स्ट स्टार्ट्स नाउ सेल्स इवेंट चल रहा है डॉन वैली नॉर्थ Hyundai पर। अब सिक्योर करें साल के लोएस्ट रेट्स। हर कस्टमर क्वालिफाई करता है अप टू 1% रेट रिडक्शन के लिए या कैश परचेस पर $500 का बेनिफिट। ऑफर सिर्फ July 31st तक है। At Don Valley North Hyundai, we speak your language. Visit DonValleyNorthHyundai.com या Woodbine Avenue and Denison Street, Markham पर।
2: Don Valley North Hyundai,
1: a proud member of Wayne's Auto Group.
3: वेलकम बैक फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है। द वन एंड ओनली अमन मेहता इंडस्ट्रियल लाइन से हमारे फ्रेंड ऑन एयर हैं। ऑफिस इज लोकेटेड एट 241 क्लेरेंस स्ट्रीट, यूनिट 26 इन ब्रैम्पटन। फाइनेंशियल प्लानर, फाइनेंशियल एडवाइजर विद 20 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। बट आज थोड़ा सा ट्विस्ट है। आज आपके क्वेश्चंस हम नहीं पूछेंगे बिकॉज देर इज दिस बेस्ट इवेंट, बारबेक्यू इवेंट, क्लाइंट अप्रिसिएशन बारबेक्यू इवेंट हैपनिंग हमारे सारे लिसनर्स के लिए। और अब आपने कल पहुंचना है। यू आर इन्वाइटेड टू, ये मोर देन अ बारबेक्यू मैं कहूंगा इसको, बिकॉज यू आर इन्वाइटेड टू सेलिब्रेट, कनेक्ट, मेक अ डिफरेंस। एंड इस बारबेक्यू पर आपको अमन जी की पूरी टीम से मिलने का मौका मिलेगा, अलका जी की ब्रोकर यूनियन से पूरी टीम के साथ मिलने का मौका मिलेगा, कुलविंदर जी, रितेश एंड द होल टीम, एंड ऑन टॉप ऑफ इट अमेजिंग बारबेक्यू स्टफ खाने का मौका मिलेगा परिवार के साथ। लॉट्स ऑफ गिवअवेज एंड रैफल टिकट्स टू बी वन। और 12 बजे से 4 बजे कल। सो बारबेक्यू को लेकर क्या प्रेपरेशन है, बी पार्ट ऑफ आर फैमिली, आई एम गोइंग टू बी देयर एज वेल विद माय फैमिली, एंड आप आए मुलाकात करें हम सबसे। अमन जी आपका स्वागत है।
4: जी, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ द लिसनर्स एंड थैंक यू फॉर टेकिंग मी ऑन सच अ लवली डे। आई नो थोड़ा सा एयर पॉल्यूशन है आज, बट यू नो पार्ट ऑफ लाइफ, कहते हैं कि दुनिया में आए तो ये छोटी मोटी प्रॉब्लम्स को फेस करनी ही पड़ेगी। ओवरऑल इट्स अ ब्यूटीफुल डे।
3: जी बिल्कुल, इट इज अ ब्यूटीफुल डे। आपकी तैयारी बारबेक्यू के लिए कैसे चल रही है, क्योंकि हमारे लिसनर्स जो हैं, बहुत लिसनर्स आएंगे, दिल बी लॉट ऑफ द लिसनर्स विल बी कमिंग फ्रॉम स्कारब्रो, पिकरिंग, एजैक्स, लॉट ऑफ देम इन किचनर, वॉटरलू, मिल्टन। सो कैसी तैयारी चल रही है, क्या एक्सपेक्ट किया जाए? लिसनर्स आर लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग यू बिकॉज रेडियो पर आपकी आवाज़ 10 का दम, इतनी दमदार आवाज़ और इतना दमदार शो इंजॉय किया है। अब पीपल आर लुकिंग फॉरवर्ड टू एक्चुअली मीटिंग यू, अलका एंड द टीम।
4: जी सनी, थैंक यू फॉर दिस नाइस इंट्रोडक्शन। कल जो ये इवेंट होने वाला है, दिस इवेंट इज, थोड़ा सा आइडिया दे दूं इवेंट क्या होता है।
3: जी
4: सनी भाई, जब मैंने अपना करियर शुरू किया ना अपनी कर्म भूमि पे, एक होती है मातृभूमि, एक होती है कर्म भूमि। मातृभूमि वेयर वी बॉर्न एंड कर्म भूमि, यहाँ कनाडा को मैं अपनी कर्म भूमि मानता हूँ।
3: बिल्कुल।
4: व्हेन आई स्टार्टेड माय करियर विद पिज्जा पिज्जा वर्किंग एट अ हायर लेवल, वहां मैंने एक ही चीज सीखी उनके कंपनी के ओनर से, ही वॉज अमेजिंग मल्टी मिलियनेयर। उन्होंने एक ही चीज सिखाई कि यू डोंट सेल फूड, यू सेल सर्विसेज एंड यू ऑलवेज हैव टू से थैंक्स टू द कम्युनिटी। तो अगर आप देखेंगे पिज्जा पिज्जा में हमेशा इवेंट्स चल रहे होते हैं टू सेलिब्रेट, टू से थैंक यू, एंड दैट इज माई बेस ऑफ माई बिजनेस। आज भी आई ओ टू माइकल ओवर, द ओनर ऑफ पिज्जा पिज्जा एंड द प्रिंसिपल्स यू फॉलोड। सो आज जो हम बात करने वाले हैं, सबसे पहले मैं पूरी कम्युनिटी का तहे दिल से, आपका, कार्तिक का, सीएमआर की टीम का, सबका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। सिर्फ मैं नहीं, मेरे साथ कुलविंदर जी, गगन, सहज, जन्नत, सिमरन, और इसके अलावा हमारी टीम में रितेश, अलका।

0: एंड एक चेष्टा, ये सब टीम हमारी जो कल एक्साइटेड आपको मिलने के लिए, दे ऑल वांट टू से थैंक्स टू द कम्युनिटी फॉर ट्रस्टिंग अस। एंड सनी भाई, 19 प्लस इयर्स इन दिस इंडस्ट्री, आज मैं सच्ची ओवरवेलम्ड हूँ इस चीज को बोलते हुए कि इतना प्यार मिला है सनी भाई कम्युनिटी से कि कभी आज तक काम मांगना नहीं पड़ा। थैंक्स टू द पीपल वंस अगेन। दिस एप्रिसिएशन बारबेक्यू जहां पर फ्री इवेंट है, आप आइए, खाइए, पिए, और सिर्फ आप नहीं, आप मेरे क्लाइंट हैं या नहीं है उससे फर्क नहीं पड़ता है। प्लीज डू ड्रॉप बाय, दिस इज अ थैंक्स कमिंग कम्युनिटी इवेंट। तो आप जो भी हैं, जहां से भी हैं, प्लीज पहुंचे। गेम्स होंगी बच्चों के लिए और बहुत सारे प्राइजेज हैं, और इसके अलावा एक रेफल भी हम कर रहे हैं सनी भाई। वी रेज मनी फॉर सिक किड्स एवरी ईयर। दिस इज नॉट यू हैव टू पार्टिसिपेट, ये एक एक्स्ट्रा इवेंट है, उसमें हमने थोड़े से प्राइजेज रखे हुए हैं, तो जो भी पैसा रेज होगा रेफल से, दैट विल बी गिवन टू सिक किड्स। एंड अगेन, द होल कॉज फॉर दिस बारबेक्यू इज a beautiful, big and heartfelt thanks to you and the community.
1: बिल्कुल, 100% of the money collected will be donated to Sick Kids Foundation. दोस्तों, आपने कल पहुंचना है सहज जनरल फाइनेंशियल सर्विसेज की लोकेशन पर, 241 क्लेरेंस स्ट्रीट इन ब्रैम्पटन, और आप वहां पर देख लेंगे कि भैया टेंट लगा हुआ है और गर्मा गर्म बारबेक्यू की जो महक है वो आ रही है, जो आपने खाना है, लॉट ऑफ गिव अवेज, रैफल टिकट्स टू बी वन, एंड ये क्लाइंट अप्रिसिएशन बारबेक्यू है फ्रॉम अमन जी एंड द फैमिली, अलका जी एंड द फैमिली और इनकी। और साथ ही साथ दोस्तों, अगर आप कोई जानकारी भी लेना चाहते हैं, फ्री की एडवाइस जो होती है, बारबेक्यू एंजॉय करें। अमन जी आपको, ही इज़ अ फाइनेंशियल प्लानर, क्लोज टू 20 इयर्स, 20 साल तकरीबन जो है इस फील्ड में पूरे कर लिए हैं। अलका जी ब्रोकर यूनियन के साथ है, उनकी टीम फॉर ऑटो होम कमर्शियल इंश्योरेंस, सो उन चीज़ों के बारे में भी आप वहाँ पे बातचीत कर सकते हैं, दिन को एंजॉय कर सकते हैं। एंड इट इज़ जुलाई 18th, यानी कल सैटरडे, 12 नून टू 4 PM। सो हमारा सबका इंतज़ार होगा कि हमारे लिसनर्स आएँ और इस इवेंट को सक्सेसफुल, बिकॉज इट्स जस्ट अ वे अमन जी, अलका जी वॉन्ट्स टू से थैंक यू टू ऑल आर लिसनर्स एंड ऑल द पीपल दैट हैव गिवन बिजनेस, ऑल द पोटेंशियल फ्यूचर क्लाइंट्स, और जो नहीं भी क्लाइंट्स हैं, अपने परिवार के साथ बस आएँ और इन्जॉय करें। अमन जी, फाइनल कुछ ऐड करना चाहेंगे कोई? शुड आई गिव योर नंबर ऑल्सो फॉर मोर इन्फॉर्मेशन?
0: प्लीज सनी भाई, जिनको इन्फॉर्मेशन चाहिए, अगर बारबेक्यू का फोल्डर चाहिए, वो सॉरी फ्लायर चाहिए, मुझे टेक्स्ट कर दें
1: जी।
0: मेरा नंबर है 4167079900, और आप मुझे टेक्स्ट कर दीजिए, मैं आपको इन्फॉर्मेशन भेज दूंगा। सनी भाई, क्विकली बता दूं, यहाँ पर खाने पीने के लिए वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन, चिकन, ढोकला, समोसे, पिज्जा, बहुत कुछ होगा। बच्चों के लिए ये इवेंट होता है मोस्टली, कि यहाँ पर बहुत सारे प्राइजेस, गेम्स रखी गई हैं बच्चों के लिए, इवेंट रखे गए हैं, एंड दोज आर ऑल जो हमारे गाइडेंस के अंदर, टीम की गाइडेंस होगी, वॉलंटियर्स होंगे वहां पर सारे हेल्प करने के लिए। तो आप आइए, एंड आई कैन प्रॉमिस यू वन थिंग, ये इवेंट विदाउट एनी, कहते हैं ना कि मोटिवेशन होती है, इसमें सिर्फ एक ही मोटिवेशन है, टू से थैंक्स टू यू, लेट अस ऑनर यू टुमारो, मी एंड माई टीम आर एक्साइटेड, एंड सनी भाई, वुड लव टू सी यू टू विद द फैमिली देयर।
1: 100%, 100%, आपको पता है कि मेरे nephew ki ceremonies, wedding and all that stuff is going on, but maine phir bhi aana hai because it's my duty to be there and I am going to be there. So aman ji, bahut bahut shukriya. Main number aapka ek bar phir se de du, 4167079900. Aman Mehta and the entire team is looking forward to seeing you guys tomorrow. So sare hamare listeners pahunche aur is amazing barbecue ka hissa bane, ise successful banaye. Aman ji, bahut bahut shukriya.
0: Thank you, Sunny. Have a wonderful weekend and I'll see you in the evening.
1: Excellent. 416-707-9900. और अमन जी की तरफ से जस्ट चिल, सोनू निगम की आवाज में, मैंने प्यार क्यों किया वॉज द फिल्म। बाहर का तापमान 25 डिग्री सेल्सियस, फील्स लाइक 25. Enjoy.

0: हाइब्रिड के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन क्या एक गैस लेक्सस आपके लिए ज्यादा सेंस बनाता है? डॉन वैली नॉर्थ लेक्सस पर NX 350 और RX 350 प्रीमियम पैकेजेस इमीडिएट डिलीवरी के लिए अवेलेबल हैं। और वेलकम बैक लॉयल्टी ऑफर के साथ आप सेव कर सकते हैं थाउजेंड्स। लीज स्टार्टिंग फ्रॉम जस्ट $657 पर मंथ फॉर 24 मंथ्स विद एन अमेजिंग 0.4% लीज रेट यूजिंग योर रिफंडेबल डिपॉजिट्स। आज ही विजिट करें DonValleyNorthLexus.com, a proud member of Wind Auto Group.
1: This part of the program is brought to you by Win Lifetime Trading. पिछले 15 सालों से successfully online trading से बहुत से परिवारों को side income provide करते आ रहे हैं, जिसमें आप हर महीने $2,000 से $6,000 US कमा सकते हैं. Flexible schedule है, surety with full confidence के साथ minimum $2,000 to $6,000 आप कमा सकते हैं. Free seminars attend करें हर Saturday afternoon. Make sure please make your appointment. Walk in ना करें. 12:30 PM to 3:30 PM होता है seminar, and call करके अपनी seat reserve करवा लें 905-206-1008 905-206-1008. Mittal CPA Professional Corporation for all your tax related matters. 289-748-4040 289-748-4040. काव्या होम्योकेयर, काफी इलाज जहां बेअसर हो जाते हैं वहां से शुरू होता है होम्योपैथी का असर. बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक, नए से लेकर कई पुरानी बीमारियों तक, जैसे एलर्जीज, एस्मा, आर्थराइटिस, हेयर लॉस, स्किन डिसऑर्डर्स, हेडेक्स, माइग्रेन्स, मेल या फीमेल हेल्थ इश्यूज, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स या पाइल्स, मेंटल हेल्थ इश्यूज, हार्ट प्रॉब्लम, डायबिटीज और फॉर एनी काइंड ऑफ अक्यूट और क्रॉनिक डिजीजेस हमारे होम्योपैथ से मिले जिनको 20 साल का ज्यादा तजुर्बा है. काव्या होम्योकेयर, जहां से शुरू होता है हेल्दी लाइफ का सफर. 10 Cotrell Boulevard, Unit 104 in Brampton. 647-760-2779. कमाल है दोस्तों, वो बचपन में खुली छत पर इतने सारे कजिन्स के साथ सोते थे, पर फोटो लेना याद नहीं रहा. ना नानी की पानी पूरी की फोटो ली, ना वो गोला और आम चूसने की रिकॉर्डिंग की. बिना एसी के ट्रेन में जो आलू पूरी लेकर जाते थे, उनकी भी कहां तस्वीर ली हमने. पर हां, एक एक पल की पूरी डिटेल याद है. शायद उस वक्त तस्वीरें दिल पर बनती थी, कैमरों में नहीं.
2: कॉन्डो प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर 5 साल किसको रुकना है. बन जाइए डेवलपर एंड बिल्डर और बनाइए पैसे डे वन से. कॉन्टेक्ट कीजिए अतीक खान एंड बिकम अ ब्रांड टू ग्रो योर ओन वेल्थ. 416-666-2745.
1: वेलकम बैक फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है. लोकल डेवलपर बिल्डर अतीक खान साहब हमारे साथ हैं और कल हम बातचीत कर रहे थे एक स्पेसिफिक चीज़ के बारे में, जहां पर आप इन प्रोजेक्ट्स में, जो प्रोजेक्ट्स लेकर आते हैं अतीक भाई, आप किस तरह से इवन इफ यू आर जस्ट पुटिंग इन $60,000 इन द पूल ऑफ लेट्स से 5 people, 6, 7 people, लेकिन वो अतीक भाई ने कहा कि आमतौर पर ऐसा होता नहीं है, बट 3 installments में आप अपने मनी को दे सकते हैं. लैंड बाय की जाती है, डेवलप की जाती है, उसकी जोनिंग बदली जाती है, एंड राइट व्हेन द जोनिंग चेंजेस, कंस्ट्रक्शन एंड एवरीथिंग स्टार्ट्स ऑफ, एंड दैट्स द टाइम जहां पर एक्चुअल ग्रोथ की परसेंटेज और नंबर्स नजर आने लग पड़ती है. बिकॉज इट्स ऑलमोस्ट लाइक लुकिंग एट अ पीस ऑफ लैंड, एंड देन उस लैंड पर जैसे ही प्लाजा बनना शुरू होता है या कोई बिल्डिंग खड़ी होनी शुरू होती है या समथिंग इज हैपनिंग देयर, इज व्हेन एक्चुअली द प्राइस स्टार्ट्स मल्टीप्लाइंग. और फिर वही बात है कि आपके जो पैसे हैं आपने बचाए हैं, और बचाने के बाद आप किस तरह से किस जगह, चाहे वो स्टॉक्स है, S&P है, या अलग अलग तरीके हैं जहां पर लोग ग्रोथ की तरफ रुख करते हैं, रियल एस्टेट में रुख करते हैं कि भाई कोई प्रॉपर्टी लेके, कॉन्डो लेके रख लिया जाए. दिस कॉन्सेप्ट, दिस बिजनेस कॉन्सेप्ट इज द मोस्ट यूनिक, आउटस्टैंडिंग बिजनेस कॉन्सेप्ट, जिसके बारे में शायद हमारी कम्युनिटी में जानकारी भी कम रही है. एंड इसी वजह से एक प्लाजे को देख राइट अवे दिमाग में आता है, मैं दिस प्लाजा उस प्रॉली $10 million और समथिंग, अपनी औकात से बहुत बाहर है, बंदा ले नहीं सकता. बट देन इस बिजनेस कॉन्सेप्ट को अतीक भाई ने क्रिएट किया है ताकि आप भी ले सकते हैं, हिस्सा बन सकते हैं. इनफैक्ट यू, आपका नाम टाइटल पर होगा, यू विल बी द ओनर ऑफ दैट प्लाजा इटसेल्फ. 416-666-2745. अगर मैं ही सारा बोलता रहूंगा तो अतीक भाई के लिए कुछ फिर आई गेस मैं छोड़ूंगा नहीं, बट ही इज द एक्सपर्ट. सो अतीक भाई, आपका स्वागत है.
3: थैंक यू सो मच जोशी साहब, मेरा काम तो आपने आसान कर दिया।
1: हाँ जी, ज्यादा ही ज्यादा ही मैं बट यू सी एट द एंड ऑफ द डे एक्सपर्ट के मुंह से जब चीज निकलती है तो वो दूर तक जाती है। आप ही शुरुआत से शुरू करें और हमारे लिसनर्स जो आपको सुन रहे हैं उन्हें बताएं क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं।
3: तो जितने भी साउथ एशियंस हैं सनी साहब, वो इस बात को समझते होंगे कि हमारे कल्चर में एक बड़ा कॉमन होता था किटी पार्टी करना। दो चार पांच दस फैमिलियां जमा हो गई, हर कोई अपने घर से कोई डिश बना के ले आया, सबने बैठ के खाना खाया, बातें करी, हल्ला गुल्ला किया और उसके बाद सब अपने अपने घर गए और जो जो अपने घर जा रहा है वो कुछ ना कुछ बचा हुआ फूड आइटम या डिजर्ट आइटम या ड्रिंक्स अपने साथ लेके जा रहा है। एग्जैक्टली यही कॉन्सेप्ट मेरा है। मैं यूं समझ लीजिए कि एक लैंड की किटी पार्टी करता हूँ कि हम सब मिलते हैं, अपना पैसा उसमें लगाते हैं, उस लैंड को डेवलप करते हैं, उस लैंड को सेल करते हैं और फिर उसमें से जो पैसा होता है वो सब में बटता है। हर कोई अपने साथ कुछ ना कुछ प्रॉफिट लेके घर जाता है। ये है एक नटशेल में छोटी सी कहानी। आपने जो उसमें एडिशन किया है और तड़का डाला है, वो डाला है इंस्टॉलमेंट का
1: जी।
3: वो भी हमारे साउथ एशियन की एक पहचान है। जो भी साउथ एशिया से है, वो भले इंडिया से है, पाकिस्तान से, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, जहां जहां मेरी आवाज जा रही है, हर एक ने देखा होगा दुकान के बाहर लिखा होगा उधार बंद है
1: जी।
3: लेकिन मेरे साथ आप बिल्कुल उधार कर सकते हैं। आप $20,000 ईच के तीन चेक मुझे काट के देंगे डिफरेंट डेट्स वाले और कमाना आपका स्टार्ट हो जाएगा आज से। ऐसा कौन सा बिजनेस है सनी साहब कि जो भी आपने पेमेंट भी पूरी नहीं की है और आप कमाना शुरू कर दोगे, वो पैसा जैसा आपने कहा था अपने इंट्रोडक्शन में कि कमर्शियल प्लाजा और उसके ऊपर बिल्डिंग CMU जोनिंग है, सिटी के अंदर है, सर्विसेज वगैरह सारी वहां पे मौजूद है। आइए और पैसे बनाए। फोन कॉल अवे हूं मैं आपसे 416-666-2745
1: 416-666-2745। अतीक भाई, जाने से पहले ये भी बता दीजिए कि हर चीज में जब हम पैसा, जैसे फर्ज करिए TFSA हो गया, GICs हो गए, स्टॉक मार्केट हो गई, डे ट्रेडिंग, हर चीज में जब हम पैसा अपना हार्ड अर्न्ड उसमें डालते हैं, तो सबसे बड़ा फैक्टर हम घर बैठे हुए एज अ फैमिली, द फर्स्ट थिंग, द रिस्क फैक्टर, इसमें कितना रिस्क है ये जाने से पहले बता दीजिए।
3: तो सनी साहब, बहुत शॉर्ट में ये बता रहा हूँ कि जो लैंड आप खरीद रहे हो वो खरीद रहे हो थ्रू ऑक्शन। ऑक्शन का मतलब ये है कि सिटी, म्युनिसिपैलिटी, टाउन, लेंडर, किसी का भी आप नाम ले लें, जो ऑक्शन में सेल कर रहा है वो सिर्फ अपने पैसे निकालना चाह रहा है। उसको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसकी मार्केट वैल्यू क्या है। तो मेरा गेम यहाँ से स्टार्ट होता है कि मैं 40%, 50%, 60% डिस्काउंट में प्रॉपर्टी को खरीदूं, उसकी जोनिंग को और उसके यूजेज को कन्वर्ट कराऊं और जैसे ही ये सब कुछ होता है आपको फोन मार दूं और पूछूं, सनी साहब आप मेरे साथ यहाँ तक सफर कर चुके हो, इतना इसमें प्रॉफिट बना है, अगर आप कहें तो मैं आपको चेक काट दूं, अगर आप आगे चलना चाहते हैं, कंस्ट्रक्शन का पार्ट बनना चाहते हैं तो ये नंबर्स होंगे और जो पैसा आपने डे वन को डाला था वही पैसा आपको एंड तक लेके जाएगा और प्रॉफिट मार्जिन 100% से 200% है। अगेन थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। 416-666-2745।
1: एक्सलेंट, अतीक खान साहब से संपर्क करें, इस वीकेंड ये फायदा लें कि भाई अपॉइंटमेंट बनाएं, गो एंड सी हिम एंड व्हाटएवर क्वेश्चंस यू हैव इन माइंड वो आप उन्हें पूछें, समझें किस तरह से ये पूरी चीज की जाती है। 416-666-2745। बहुत बहुत शुक्रिया अतीक भाई, हैव अ वंडरफुल वीकेंड।
3: यू टू सर, थैंक यू।
1: थैंक यू ब्रदर। 416-666-2745 अतीक भाई का नंबर है। choleBhature.ca पर भी एक वीकेंड को चक्कर लगा लें। चार लोकेशंस है, 2 Brampton, 1 Mississauga एंड दिल्ली वाले ऑथेंटिक छोले भटूरे आपको यहाँ पे मिलेंगे। टेक आउट डाइन इन ऑप्शन अवेलेबल है। एंड अतीक खान साहब की तरफ से एक प्यारा सा गीत प्ले करते हैं, रोमी और निकिता गांधी की आवाज़ में, नचन्नू जी करदा, पर नचना नहीं आंदा, पर भैया जब जी करता है तो फिर रुकना क्यों है। विन लाइफ टाइम ट्रेडिंग 9052061008। फ्री सेमिनार सैटरडे आफ्टरनून यानी कल 12:30 से 3:30 बजे। प्लीज़ अपनी सीट रिजर्व करवा लें, प्लीज़ डोंट वॉक इन। 9052061008। एंजॉय द सॉन्ग, आई विल बी राइट बैक।

0: आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो। एडवर्टाइजिंग के लिए कॉल करें 647-863-1940, 647-863-1940।
1: डॉन वैली नॉर्थ लेक्सस पर कॉन्फिडेंस के साथ इलेक्ट्रिक ड्राइव करें। चूज करें लेक्सस आरजी या ईएस इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और एंजॉय करें प्रीमियम ईवी एक्सपीरियंस मेड सिंपल। बाय ए फ्री लेवल 2 होम चार्जर, इंस्टॉलेशन कोऑर्डिनेशन और फर्स्ट ईयर ऑफ होम चार्जिंग रीइंबर्स्ड अप टू $1,000। प्लस रिसीव करें 1-on-1 ईवी डिलीवरी सेशन एट योर होम और $500 क्रेडिट फॉर एनी प्रोटेक्शन पैकेज वैल्यूड एट $2,500। आज ही विजिट करें DonValleyNorthLexus.com। A proud member of Winch Auto Group.
0: मॉर्गेज का कोई भी काम याद रखें एक ही नाम, मॉर्गेज आर्किटेक्ट्स के सनी जोशी। फर्स्ट मॉर्गेज, सेकंड मॉर्गेज, होम इक्विटी, रिन्यूअल्स, बैड क्रेडिट, इनकम इश्यूज के लिए लेट्स टॉक। बेस्ट रेट्स, बेस्ट सर्विस एंड बेस्ट मॉर्गेज प्रोफेशनल सनी जोशी। 647-863-1940, 647-863-1940।

0: Wow, Mom. Dad is in a jolly good mood today. What is the reason?
1: This is the effects of famous masala chai by Navigator's Cafe.
0: I know this place. They're also famous for delicious snacks like aloo patties, samosa, vada pav, spring rolls, mango lassi and my favorite, samosa chaat and bhel.
2: Navigator's Cafe, located at northwest corner of Queen Street East and Airport Road in Brampton. They are conveniently open 24/7.
3: अपने करीबी को खोने से बड़ा कोई गम नहीं। Brampton Crematorium and Visitation Center and Ajax Crematorium and Visitation Center में आप और आपके परिवार को शांति से इस अवसर पर अफसोस करने का वक्त मिलता है। 8 साल का लंबा तजुर्बा, हर फेथ और हर धर्म और कल्चर के लिए यहाँ कंप्लीट रेंज ऑफ क्रेमेशन एंड मेमोरियल आपके चॉइस की एक्सक्लूसिव फैसिलिटीज भी उपलब्ध है। हर कदम हम आपके साथ। 30 Brampton Court in Brampton, 905-458-2222 or log on to bcvc.info or 384 Finley Ave in Ajax, 289-372-3330 or acvc.info.

0: Antoine at Win Lifetime. Call 905-206-1008.
1: समर ड्राइव का एक्साइटमेंट बढ़ाएं विद टंड्रा एट डॉन वैली नॉर्थ टोयोटा। आपके नेक्स्ट एडवेंचर के लिए बिल्ट और फाइनेंसिंग सिर्फ 3.99% से। बिग सिलेक्शन, बिग समर मोमेंटम, टोयोटा करोला भी इन स्टॉक है आपकी रोजाना ड्राइव के लिए। बुक अ टेस्ट ड्राइव टुडे, वी पे टॉप डॉलर फॉर योर ट्रेन। इट्स टाइम टू टोयोटा एट डॉन वैली नॉर्थ टोयोटा.com। लोकेटेड है 3300 स्टील्स एवेन्यू, ईस्ट मार्कम पर। अ प्राउड मेंबर ऑफ वेन्स ऑटो ग्रुप।
2: वेलकम बैक फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है। अलका जी हमारे साथ हैं और ओसैप को लेकर हम ये लगातार जो है बातचीत कल परसों से कर रहे हैं। एंड पीपल दैट वांट टू गो बैक टू स्कूल, आपके पास ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जहां पर गवर्नमेंट आपकी मदद कर रही है। गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग यू ओसैप ग्रांट, और ये ग्रांट ऐसी होती है जो आपको वापस नहीं करनी होती। व्हाट एग्जैक्टली इट इज, कब तक के लिए आप इस अपॉर्चुनिटी को अवेल कर सकते हैं, उसको लेकर जो है अलका जी से कुछ सवाल करते हैं। अलका जी का नंबर प्लीज नोट कर लीजिए, 4165052735। अलका जी आपका स्वागत है साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो पर।
3: थैंक यू सो मच सनी, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो, एंड अ ह्यूज थैंक्स टू यू एंड योर लिसनर्स। इतनी कॉल्स आ रही हैं सनी, इतनी कॉल्स आ रही हैं, आई एम सो हैप्पी दैट पीपल आर literally they want to study, they want to enhance their careers, and they are getting awake by all this, the opportunity mil rahi hai, to why not?
2: Bilkul, aur dekhiye ye kaam aap ek social service ki tarah kar rahi hain jahan par you're not charging a penny, and jo log hamare pyare listeners aapko call kar rahe hain, technically they are doing a favor on themselves by calling you, so that's a ग्रेट थिंग। अलका जी लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक्स, जिन लोगों को अभी भी शायद नहीं पता है और जो शायद आज आपको पहली बार सुन रहे हैं, व्हाट एग्जैक्टली इज ओसैप?
3: ओसैप एज द टर्म सेज, ओंटारियो स्टूडेंट असिस्टेंस प्रोग्राम, यानी कि ओंटारियो गवर्नमेंट आपको पढ़ाई में थोड़ी सी हेल्प कर रही है फाइनेंशियली, आपकी ट्यूशन फीस में हेल्प कर रही है। अब आप पढ़ेंगे तो आपके थोड़े से जैसे काम है वो कई बार होता है कि नहीं कर पा रहे हैं हम, तो आपके लिविंग एक्सपेंसेस थोड़े एक्स्ट्रा हो जाते हैं, तो ये ग्रांट एज अ हेल्प करती है आपके लिविंग एक्सपेंसेस में। बेसिकली इसके सनी दो पॉइंट्स होते हैं, एक तो होता है ग्रांट और एक होता है लोन। ग्रांट एज द वर्ड सेज, जो हमें वापस नहीं करनी है, लोन जो हमें गवर्नमेंट को वापस करना है
2: जी।
3: अब कई लोग होते हैं जो कहते हैं हम लोन लेना ही नहीं चाहते, वो खाली ग्रांट भी ले सकते हैं, आपको लोन पोर्शन लेने की जरूरत नहीं है। बट अगर आप डिसाइड करते हैं कि मुझे लोन भी लेना है, तो वो लोन आपका कोर्स खत्म होने के 6 महीने बाद 9 से 9.5 साल की इंस्टॉलमेंट में आपको पे करना होता है, रीपे करना होता है।
2: अब जी प्लीज गो अहेड, प्लीज गो अहेड।
3: Which comes to like around very less amount, right?
2: अलका जी, सवाल ये भी उठता है ना कि कौन एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए, क्योंकि कल आपके सेगमेंट के बाद मुझे कई लोगों ने कॉल किया, किसी ने कहा कि आई एम अ 70-year-old सीनियर सिटीजन staying at home, but sometimes I'm thinking of going back to continue my education. कौन है जो अप्लाई कर सकते हैं टेक्निकली?
3: जी सनी, एक तो या तो आप पीआर हो या कैनेडियन सिटीजन हो या प्रोटेक्टेड पर्सन हो, एंड एज फॉर द एज हम प्रेफर करते हैं, इवन द गवर्नमेंट प्रेफर्स कि आपकी 65 तक की एज हो, राइट?
2: या
3: सो देन यू ऑलवेज कैन अप्लाई।
2: जी ठीक है, और अब मैं नंबर एक बार फिर से दे दूं, 416-505-2735, 416-505-2735, and guess what friends, Alka ji is not charging a penny to help you get this OSAP grant. How much financial assistance can someone receive actually, Alka?
3: Sunny, depends on different situations, aapki family income kitni hai, aapke dependent children kitne hai. Dependent children means 24 and under, जो full time studies में enrolled हैं इस time पे. There are so many factors that it depends on. आप single parent हैं, आप married हैं. There are so many factors. हम सारे factors आपसे पूछते हैं, then we give you an estimate. And as जैसे अभी आपने बोला, we don't charge a penny. Even I was surprised yesterday, someone from your show called me and they asked me, Alka ji, like, okay, I want to apply through you and can you help me with the application also? मैंने उन्हें estimate दिया था. I'm like, yeah, sure. And then they're like, how much fee for the application. I said, there is no fee. He's like, I thought only estimate ki fee nahi hai, but fee, there should be a fee for filling the application.
2: Exactly.
3: I'm like, no, I'm just doing it totally free. And then they told me that there are people in the market, those are charging you fee for filling your application. I was surprised to hear that.
2: I guess to each his own, kya keh sakte hain? But the great thing is the way you are dealing with these, you know, through your partner colleges, you're just doing this so that logo ko ye service avail karne ka mauka mile, education continue karne ka mauka mile, aur uske upar se ki bhai unko jo grant jo unka haq hai jo government de rahi hai wo unko maximum se maximum mile what they qualify for. Alka, what kind of courses are available through your partner colleges?
3: Sunny, courses to bahut zyada hain, but jaise ki aapko pata hai Wednesday tak ka time reh gaya hai hamare paas, so seats bahut jaldi fill ho rahi hain.
2: Theek hai.
3: So there are few courses left which are like accounting, payroll, international business administration, hospitality and tourism, community support worker hai, medical office administrator, very very popular course. Hair styling ka course bhi bahut popular hai, medical aesthetics hai, PSW hai. Yeah, early child care assistant ka course hai.
2: Aur ye sare courses jo hain takriban humne courses ko ghar baithe hue online karna hai.
3: Yes, Sunny, bilkul. Most of the courses are online. In fact, courses sabhi online hote hain. There are quite a few courses like jaise aapka PSW ka course hai, right? Jo hair styling ka course hai. Course online hai, lekin jinke practicals hote hain wo in person hote hain, because aapko kaam wo in on hand sikhate hain.
2: ठीक है, got it. And यहाँ पर अलका जी आपको जो है एक absolutely free service provide कर रही हैं. Take advantage of that because a lot of times there are a lot of complications involved और हर चीज के बारे में हमें पता भी नहीं होता है. जिसको पता है वो शख्स आपको आपकी मदद कर रहे हैं, वो भी बिना किसी चार्ज के. Go for it. 416-505-2735. अलका, आपके हिसाब से who should really be paying attention to this segment, this interview that we are doing right now?
3: Ji Sunny, main hamesha kehti hu jo log apna career enhance karna chahte hain, jo kehte hain ki main apni job mein satisfied nahi hu, ya aisi ladies jo abhi bacche chote the to abhi kuch nahi kar payi, so this is the right time for them. Main problem kya hoti hai Sunny? Time and financial. Agar ab aapke paas time hai, aapko online padhna hai, इतनी फ्लेक्सिबिलिटी प्लस फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी आपकी सॉल्व हो रही है बिकॉज आपको ग्रांट्स मिल रही हैं. अगर आप अभी भी इस अपॉर्चुनिटी का फायदा नहीं उठाते हैं, देन आफ्टर वेंसडे द लोन पार्ट विल बी मोर, ग्रांट पार्ट विल बी लेस.
2: तो अभी जो है दोस्तों, मैक्सिमम से मैक्सिमम ग्रांट जो क्वालिफाई आप करते हैं अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट, वो आपको मिलेगी. वो आपका हक है डिपेंडिंग ऑन योर फैमिली इनकम. वो भी अलका जी ने उस दिन बताया भी था कि इट्स नॉट द 2025 बट द 2024 वाले साल की जो आपकी परिवार की इनकम है उसके बुनियाद पर आपको ये ग्रांट मिलेगा. अलका, मैनी पीपल फील द एप्लीकेशन प्रोसेस जो है भैया बहुत कन्फ्यूजिंग है. आप ऑब्वियसली आपने इस चीज को कहा है कि भाई आप उनकी मदद करेंगे, तो इस पर थोड़ी सी रोशनी डाल दें.
3: जी सनी, कंफ्यूजिंग पार्ट मेन एप्लीकेशन का सिर्फ एक चीज आ जाती है, फॉर्म्स. बहुत सारे फॉर्म्स जो उसमें साथ में लगाने पड़ते हैं, एनओएज लगानी पड़ती है, एंड सो मच अदर स्टफ. सो मेनी पीपल गेट कंफ्यूज. और अब ये टाइम सेंसिटिव रह गया है, तो इट्स बेस्ट वे कि आप किसी की हेल्प जरूर लें. क्योंकि आपको एक ही बारी में सारी एप्लीकेशन ठीक ठाक लग जाए, सारे फॉर्म्स ठीक ठाक लग जाए, एंड इट गोज थ्रू बिफोर वेंसडे. सो इट्स बेटर टू आस्क फॉर हेल्प. इसमें हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे. देन अगेन, नो ऑब्लिगेशंस. आप आए हमारे ऑफिस में, इवन फोन पे अगर आप हेल्प लेना चाहते हैं, आई टेल यू ये स्टफ लगाना है, दैट्स ऑल. यू डोंट हैव टू गो थ्रू मी कि अलका आप मेरी एप्लीकेशन भरो या कुछ है. मैं आपको फोन पे इन्फॉर्मेशन दे दूंगी कि आपने ये ऐसे एप्लीकेशन भरनी है, ये फॉर्म लगाने हैं, एंड आई विल इवन चेक इट फॉर यू इन द एंड.
2: क्या बात है दोस्तों, देयर इज नो गिमिक इन दिस. ये ऑन एयर है जो चीज अलका जी शेयर कर रही हैं, एंड शी इज जस्ट ट्राइंग. ये कई बार ऐसा भी होता है कि प्रोफेशनल्स लाइक अलका जी जो हैं, यू नो, दे आर गिविंग बैक टू द कम्युनिटी. दिस इज अ ग्रेट वे टू एक्चुअली गिव बैक टू द कम्युनिटी. एंड अलका जी ऑन वैसे जो है जब भी ऑन एयर आपने उनको पहले भी सुना है, शी इज यू नो ग्रेट मीडिया पर्सनैलिटी, बिन अ ब्रॉडकास्टर अमन जी अलका जी फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम. सो दिस इज एब्सोल्युटली अ वे टू से थैंक यू टू ऑल द लिसनर्स. सम पीपल थिंक अलका, सम पीपल थिंक यू नो दे अर्न टू मच और देयर फैमिली की इनकम जो है बहुत ज्यादा है टू क्वालिफाई, उनको फिर भी अप्लाई करना चाहिए कि नहीं अप्लाई करना चाहिए?
3: बिल्कुल करना चाहिए सनी. जैसे मैंने आपको बताया था, इनकम ही खाली फैक्टर नहीं है, देयर आर अदर सो मेनी फैक्टर्स वी कीप इन माइंड फॉर दैट, राइट?
2: जी.
3: ओके, नुकसान क्या है? आपने मुझे फोन किया, मुझे 2024 की अपने इनकम बताई, मैंने आपको एस्टिमेट दे दिया. क्या नुकसान है इसमें?
2: एब्सोल्युटली नथिंग. या बिल्कुल. और ये अपना ही हमारा फायदा है भाई, हमारी खुद की एजुकेशन है और वो गवर्नमेंट के पैसे मिल रहे हैं, ग्रांट जो है आपको वापस नहीं देनी, तो सोने पे सुहागा है सारी बात. अंत में आप जाने से पहले क्या ऐड करना चाहेंगी अलका?
3: मैं बस यही कहना चाहूंगी सनी सारे लिसनर्स को, वेंसडे तक का टाइम है, प्लीज जरूर फायदा उठाएं इस अपॉर्चुनिटी का. अपने करियर को एनहेंस करना चाहते हैं, गवर्नमेंट आपको फाइनेंशियली हेल्प कर रही है, ग्रांट्स आप उठा सकते हैं, लोन आप अगर नहीं लेना चाहते तो मत लें. डू कॉल मी 416-505-2735-416-505-2735.
2: 416-505-2735 416-505-2735 अलका जी का नंबर है. वेंसडे तक का टाइम है, ऐसा नहीं कि वेंसडे के बाद, अलका जी ने क्लियरली एक्सप्लेन कर दिया, ऐसा नहीं कि थर्सडे से आपको ये ओसा मिलेगा नहीं. ओनली थिंग इज ये कंडीशन फ्लिप हो जाएगी, जो ग्रांट होती है वो आपको वापस नहीं करनी होती है. राइट नाउ द परसेंटेज ऑफ द ग्रांट दैट यू आर गेटिंग टिल वेंसडे इज द मोस्ट एंड द स्टूडेंट लोन इज लेस. वेंसडे के बाद कहानी बदल जाएगी. यहां पर अलका जी इज नॉट इवन चार्जिंग अ पेनी फॉर गेटिंग यू दैट ग्रांट ओसैप. 416-505-2735. बहुत बहुत शुक्रिया अलका जी आपका. अगले हफ्ते फिर होती है मुलाकात.
3: थैंक यू सो मच सनी.
2: थैंक यू जी. 416-505-2735 एंड अनारकली चली डिस्को. और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये ममता शर्मा सुखविंदर सिंह की आवाज़ में हाउसफुल का गीत है, फिल्माया और मलाइका अरोड़ा एंड मैनी अदर एक्टर्स. इन्जॉय, आई विल बी बैक.

आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो। एडवर्टाइजिंग के लिए कॉल करें 647-863-1940, 647-863-1940।

0: अपनी राजधानी।
1: राजधानी स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट के प्योर वेजिटेरियन लजीज खाने, जिसके स्वाद के सभी हैं दीवाने। फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आकर खाइए या फिर केटरिंग करवाइए, मिठाइयाँ ऐसी की मजा आ जाए।
0: ये है राजधानी राजधानी राजधानी।
1: मल्टीपल लोकेशन इन GTA। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट राजधानी स्वीट्स.ca।

0: जी हाँ, यहाँ त्योहार पूजा पाठ और सजावट का सामान, मंदिर, मूर्तियाँ, हवन सामग्री, फेंग शुई वास्तु आइटम्स, रिलीजियस बुक्स,
1: यानी पूरे इंडिया का कल्चर एक ही छत के नीचे।
0: 31 मेलिनी ड्राइव, ब्रैम्पटन। कॉल 905-458-6808
1: और विजिट पूजा हट.com।
2: इंडिया सजावट एंड पूजा हट।
0: जय श्री राम।

0: आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो. एडवर्टाइजिंग के लिए कॉल करें 6478631940 6478631940.
1: हर एक ग्रेट जर्नी शुरू होती है एक सही पार्टनर के साथ. वेन्स ऑटो ग्रुप में हमारे डीलरशिप्स का वाइड नेटवर्क डिवर्स कम्युनिटीज को प्राउडली सर्व करता है. एक्सपर्ट कार बाइंग गाइडेंस, प्रीमियम सर्विस और ऐसा सपोर्ट जो आपकी लैंग्वेज समझे. हर डीलरशिप का प्रॉमिस एक ही है, ट्रस्टेड केयर, कंसिस्टेंट सर्विस और कंप्लीट ऑटोमोटिव सपोर्ट. फ्रॉम फर्स्ट ड्राइव टू लाइफ टाइम केयर, वेन्स ऑटो ग्रुप इज ऑलवेज देयर. विजिट veinsautogroup.com.
2: रियल एस्टेट इज नॉट इजी बिजनेस, और जो इजी नहीं उसे इजी बनाते हैं रियल्टर राज जोशी फ्रॉम रॉयल लिपेज क्रेडिट वैली. घर खरीदना या फिर घर बेचना, फर्स्ट टाइम होम बायर्स या फिर इन्वेस्टर्स, सबकी पसंद का रखते हैं ख्याल. ये है राज जोशी, रियल्टर बेमिसाल. कॉल राज जोशी फ्रॉम रॉयल लिपेज क्रेडिट वैली रियल्टी 6478661086 6478661086. राज जोशी, सिर्फ नाम ही काफी है.
3: Hi अंजू, कैसी हो? How's your son doing?
4: निशा पूछ मत, सारा दिन कंप्यूटर टीवी फोन पर लगा रहता है. आंखें तो खराब होंगी ही, होमवर्क के टाइम बैटरी गुल.
3: मैं समझ गई, उसे चाहिए प्रिस्क्रिप्शन वाले स्मार्ट ग्लासेस फ्रॉम क्लियर ऑप्टिकल.
5: शी इज राइट, चाहे बच्चे हों या बड़े, वेयर स्मार्ट ग्लासेस एवरी डे. ये प्रिस्क्रिप्शन स्मार्ट ग्लासेस आपके खराब होते विजन को स्टेबलाइज करे बिना किसी भी स्ट्रेस एंड फटीग ऑन योर आईज. विजिट 8005 फाइनेंशियल ड्राइव ब्रैम्पटन 9054573232. Clear Optical by Varun Kanda.
6: क्या आपकी होम और ऑटो इंश्योरेंस की रिन्यूअल ड्यू है? क्या आपको तलाश है गुड रेट्स की फॉर द राइट कवरेजेस? तो आज ही कॉल करें गुरविंदर बामरा को फ्रॉम ऑल स्टेट्स मिसागा साउथ एजेंसी एट 289-891-0296. इट्स 289-891-0296. आज ही कॉल करें एंड यू कैन सेव एन एवरेज ऑफ $2,163 व्हेन इंश्योरिंग टू कार्स एंड अ होम.

0: कम्युनिटी का जाना बचाना और भरोसेमंद नाम मनन गुप्ता आपके लिए लाए हैं कैनेडियन इमिग्रेशन की प्रोफेशनल सर्विसेज। कॉल मनन गुप्ता 416-451-0040, दैट इज 416-451-0040, और विजिट skylakeimmigration.com।
1: जेनेसिस मार्कम पर लग्जरी मिलती है एक एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा। लीज कीजिए ब्यूटिफुली डिजाइंड 2026 G70 सिर्फ 1.9% से अप टू 39 months, या लीज कीजिए 2026 GV70 सिर्फ 2.9% से। बुक योर टेस्ट ड्राइव टुडे। विजिट genesismarkham.ca, लोकेटेड एट वुडबाइन एवेन्यू एंड जॉन स्ट्रीट, मार्कम। Genesis Markham, doing luxury your way. A proud member of Vane's Auto Group.
2: You're listening to the Sunny Joshi Show on South Asian Unlimited Radio, CMR 101.3 FM.

0: Hyundai का Next Starts Now सेल्स इवेंट चल रहा है डॉन वैली नॉर्थ Hyundai पर। अब सिक्योर करें साल के लोएस्ट रेट्स। हर कस्टमर क्वालिफाई करता है अप टू 1% रेट रिडक्शन के लिए या कैश परचेस पर $500 का बेनिफिट। ऑफर सिर्फ जुलाई 31 तक है। एट डॉन वैली नॉर्थ Hyundai, वी स्पीक योर लैंग्वेज। विजिट डॉन वैली नॉर्थ Hyundai.com या Woodbine Avenue एंड Denison Street, Markham पर।
1: डॉन वैली नॉर्थ Hyundai,
2: a proud member of Wayne's Auto Group.
3: वेलकम बैक फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो पर। और हम पहुंच चुके हैं ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस, 801 बोवेड ड्राइव वेस्ट ऑफ द कॉर्नर ऑफ बोवेड एंड चिंकूसी इन ब्रैम्पटन। 905-450-2828 इज द नंबर। टीवी अप्लायंस लॉन्ड्री के सुल्तान, सुल्तान जी हमारे साथ हैं। स्टोर इज ओपन 7 days a week, 11 AM to 7 PM। सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन की ओर रुख करते हैं, एंड दैट इज द टीवी सेक्शन। वो इंपॉर्टेंट मैं इसलिए कह रहा हूं, इंपॉर्टेंट आई फील इट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट। सुल्तान जी आपका स्वागत है।
4: थैंक यू वेरी मच जी, बहुत बहुत शुक्रिया सनी भाई। और इंपॉर्टेंट मैसेज आपने इसलिए कहा है या सेक्शन की बात की है क्योंकि टीवीज में बहुत सारे टीवीज ऐसे हैं जो कि इस वक्त डिमांड में है, खासतौर पे बिग स्क्रीन टीवी की अगर बात करें या लेटेस्ट अपडेटेड टेक्नोलॉजी की बात करें। मिनी एलईडी के साथ अगर लेटेस्ट अपडेटेड टेक्नोलॉजी आपको मिले और वो भी डिस्काउंटेड प्राइसेस पे, तो फिर डेफिनेटली दिल करता है कि अपने टीवी को बिग स्क्रीन टीवी के साथ अपग्रेड किया जाए, और वो भी $2300 वाला 85 इंच मिनी एलईडी आपको मिले ओनली 1599 में। तो 1599 भी कस्टमर 6 मंथ में पे करेंगे, कोई इंटरेस्ट नहीं है, $700 की सेविंग भी हो गई और 6 मंथ इजी पेमेंट प्लान भी मिल गया। इसी तरह 75 इंच $1200-1300 वाला सिर्फ 899 में मिलेगा, इसमें $400-500 की सेविंग भी हो गई और 899 6 मंथ में पे करेंगे जी। 65 इंच 699 में मिलेगा और 55 इंच ओनली 399 में ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस बोवेड एंड चिंकूजी वाली लोकेशन पे। फिर जब बिग स्क्रीन की बात करते हैं तो 98 इंच, ये भी सैमसंग का 98 इंच है जो कि $3500 वाला 1999 में मिलेगा, इसमें $1500 कस्टमर सेव भी करेंगे और 1999 6 मंथ में पे करेंगे जी। फ्री होम डिलीवरी है, इसके लिए आपको विजिट करना है BramptonAppliances.com या हमारी वेबसाइट पे, या फिर 801 बोवेड ड्राइव वेस्ट जस्ट ईस्ट ऑफ चिंकूजी ऑन बोवेड है ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस, 905-450-2828 905-450-2828 जी।
3: 905-450-2828 ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंस पर। टीवीज पर अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग डील्स चल रही हैं, फायदा उठाइए, पहुंच जाइए जल्द से जल्द। सुल्तान जी साथ ही साथ टीवीज के साथ साथ हम अप्लायंस लॉन्ड्री सेक्शंस की भी बात करना चाहेंगे जहां पर आपने अमेजिंग डील्स लगाई हैं। कुछ रेंटल प्रॉपर्टीज के लिए कई बार पीपल आर लुकिंग आउट फॉर सम बेस्ट डील्स, और कई बार ऐसा होता है हम अपने घर के लिए सबसे बेस्ट टीवी अप्लायंस लॉन्ड्री में चीजें चाहते हैं, तो मैं चाहूंगा कि ओवरऑल आप इस पे रोशनी डालें।
4: बिल्कुल जी, अगर तो बंडल पैकेज लेने हैं, किसी के घर की क्लोजिंग आ रही है तो उन्हें तो ऑलमोस्ट $2000 की सेविंग किचन अप्लायंसेस में होगी क्योंकि $5000 वाला 36 इंच वाइड फ्रेंच डोर फ्रिज है, स्मूथ टॉप इलेक्ट्रिक स्टोव है, टॉल टॉप की डिशवाशर है, 3 पीस का बंडल पैकेज स्टेनलेस स्टील $2999 में मिलेगा, $2000 कस्टमर सेव भी करेंगे और 2999 6 मंथ में पे करेंगे जी, कोई इंटरेस्ट नहीं है। बंडल पैकेज लेना है जी जिसमें आपको बिल्ट इन कुकटॉप, बिल्ट इन वॉल ओवन, बिल्ट इन माइक्रोवेव, बिल्ट इन डिशवाशर और बिल्ट इन काउंटर डेप्थ फ्रिज चाहिए तो पूरे का पूरा बिल्ट इन किचन $12000 वाला 6900 में लेके आप ऑलमोस्ट मोर देन $5000 की सेविंग करेंगे बिल्ट इन किचन में। इसी तरह हमारे पास लॉन्ड्री में जी जहां टॉप लोड वॉशर एंड ड्रायर $1600-1700 वाला 1099 में पेयर मिलेगा आपको, वॉशर ड्रायर दोनों 1099 में, वहां फ्रंट लोड वॉशर एंड ड्रायर, वॉशर भी स्टीम और ड्रायर भी स्टीम फीचर के साथ प्लैटिनम सीरीज प्लैटिनम कलर में $2,500 वाला $1,799 में लेके आप $800 फ्रंट लोड वॉशर एंड ड्रायर पे सेव करेंगे और $1,799 भी 6 मंथ में पे करना है, कोई इंटरेस्ट नहीं है जी। इसके लिए विजिट करें जी 801 बोवेड ड्राइव वेस्ट, जस्ट ईस्ट ऑफ चंकूजी ऑन बोवेड है। ब्रैम्पटन अप्लाइंसेज डॉट कॉम हमारी वेबसाइट है जी। 9054502828 हमारा नंबर है। सिंगल पीस फ्रिज लेना है 30 इंच अपराइट फ्रीजर के साथ फ्रिज $1,400 वाला $799 में मिल जाएगा। सिंगल पीस वॉशर चाहिए आपको $1,000 वाली $599 में मिल जाएगी। सिंगल पीस ड्रायर चाहिए आपको $900 वाला $499 में मिल जाएगा। फ्री होम डिलीवरी 6 मंथ नो इंटरेस्ट पेमेंट प्लान है जी। पहुंचना है आपको 801 बोवेड ड्राइव वेस्ट, जस्ट ईस्ट ऑफ चंकूजी ऑन बोवेड। ब्रैम्पटन अप्लाइंसेज डॉट कॉम हमारी वेबसाइट जरूर विजिट करें, वहां आपको वेयर हाउस क्लियरेंस सेल का आइकॉन मिलेगा। जब आप उसे क्लिक करेंगे तो आपको कुछ एक आइटम 40% और कुछ एक 50% डिस्काउंट पे मिलेंगी। फॉर एग्जाम्पल डिश वॉशर चाहिए स्टेनलेस स्टील का $1,000 वाला डिश वॉशर, वहां आपको 50% डिस्काउंट पे $499 में मिलेगा। ब्रैम्पटन अप्लाइंसेज डॉट कॉम 9054502828 905-450-2828 जी।
3: बिल्कुल जी 905-450-2828 ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लाइंसेज। सुल्तान जी बहुत बहुत शुक्रिया।
4: थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया
3: जी। 9054502828।
5: हर एक ग्रेट जर्नी शुरू होती है एक सही पार्टनर के साथ। वेन्स ऑटो ग्रुप में हमारे डीलरशिप्स का वाइड नेटवर्क डिवर्स कम्युनिटीज को प्राउडली सर्व करता है। एक्सपर्ट कार बाइंग गाइडेंस, प्रीमियम सर्विस और ऐसा सपोर्ट जो आपकी लैंग्वेज समझे। हर डीलरशिप का प्रॉमिस एक ही है, ट्रस्टेड केयर, कंसिस्टेंट सर्विस और कंप्लीट ऑटोमोटिव सपोर्ट। फ्रॉम फर्स्ट ड्राइव टू लाइफ टाइम केयर, वेन्स ऑटो ग्रुप इज ऑलवेज देयर। विजिट veinsautogroup.com।
6: मस्कोका अंदर 1.5 एकड़ ते 2600 स्क्वायर फुट दी कॉटेज सेल ते आई है। 3 बेडरूम 2.5 वॉशरूम हन। हाई एंड दे फर्नीचर ना फुली फर्निश्ड है। 2 साल दी नवी कॉटेज $100,000 दी इनकम जनरेट कर दी है। 12x30 फुट दा डेक है, प्लस वॉकआउट बेसमेंट भी है। मस्कोका रूम भी फर्निश कीता गया है। पिछे पानी है अते खूबसूरत है। क्लब हाउस बन रहा है जिथे स्विमिंग पूल भी होवेगा। जानकारी लिए कॉल जितेंद्र गंदम 416-265-2222 416-265-2222। July 25 नू ओपन हाउस लगन जा रहा है 1 to 3 बजे तक।
7: मॉर्गेज का कोई भी काम याद रखें एक ही नाम, मॉर्गेज आर्किटेक्ट्स के सनी जोशी। फर्स्ट मॉर्गेज, सेकंड मॉर्गेज, होम इक्विटी, रिन्यूअल्स, बैड क्रेडिट, इनकम इश्यूज के लिए लेट्स टॉक। बेस्ट रेट्स, बेस्ट सर्विस एंड बेस्ट मॉर्गेज प्रोफेशनल सनी जोशी। 647-863-1940 647-863-1940।
8: क्या आपकी होम और ऑटो इंश्योरेंस की रिन्यूअल ड्यू है? क्या आपको तलाश है गुड रेट्स की फॉर द राइट कवरेजेस? तो आज ही कॉल करें गुरविंदर बामरा को फ्रॉम ऑल स्टेट्स मिस्सागा साउथ एजेंसी एट 289-891-0296। इट्स 289-891-0296। आज ही कॉल करें एंड यू कैन सेव एन एवरेज ऑफ $2,163 व्हेन इंश्योरिंग 2 cars एंड अ होम। रिमेंबर, यू आर इन गुड हैंड्स विद ऑल स्टेट।
9: समर ड्राइव का एक्साइटमेंट बढ़ाएं विद टंड्रा एट डॉन वैली नॉर्थ टोयोटा। आपके नेक्स्ट एडवेंचर के लिए बिल्ट और फाइनेंसिंग सिर्फ 3.99% से। बिग सिलेक्शन, बिग समर मोमेंटम, टोयोटा करोला भी इन स्टॉक है आपकी रोजाना ड्राइव के लिए। बुक अ टेस्ट ड्राइव टुडे, वी पे टॉप डॉलर फॉर योर ट्रेड। इट्स टाइम टू टोयोटा एट डॉन वैली नॉर्थ टोयोटा.com। लोकेटेड है 3300 स्टील्स एवेन्यू, ईस्ट मार्कम पर। अ प्राउड मेंबर ऑफ वेन्स ऑटो ग्रुप।
3: वेलकम बैक फ्रेंड्स, एंड इट्स ऑलमोस्ट टाइम टू से गुड बाय। अब हमारी मुलाकात आपसे होगी मंडे यानी नेक्स्ट वीक। मुझे दीजिए इजाजत। CMR 101.3 FM पर साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो, मंडे टू फ्राइडे 12 to 2 PM। टिल देन गुड बाय एंड गॉड ब्लेस लेडीज एंड जेंटलमैन।

0: You're listening to CMR FM 101.3.
1: Listen to us around the universe. www.cmr.fm. The Lovey-Dovey Show, driving you home. A melody above and beyond. Brought to you by Radio Toronto, Canada. Monday to Friday.
2: क्या आप सुन रहे हैं? इसी तरह GTA में लाखों ये आवाज सुन रहे हैं।
3: रेडियो टोरंटो कनाडा पर एडवर्टाइज कराइए, अपने कारोबार का दायरा बढ़ाइए।
2: इस आवाज को अपने बिजनेस की आवाज बनाइए। रेडियो टोरंटो कनाडा पर अपने बिजनेस की प्रमोशन करवाइए।
4: बुक योर एडवर्टाइजमेंट स्लॉट्स विद रेडियो टोरंटो कनाडा। कॉल 416-303-3639। इट्स 416-303-3639।
5: नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, खुश आमदीद। मैं शिवानी आपके साथ, और मेरे साथ है आमिर, और आपके और हमारे साथ है फ्राइडे की ये बहुत खूबसूरत सी दोपहर। और रेडियो टोरंटो कनाडा के ब्रैम्पटन ऑफिस से हम दोनों आपका स्वागत करते हैं, और आपसे कहते हैं TGIF। थैंक गॉड इट्स फ्राइडे, शुक्र है शुक्रवार है।
6: आप सुन रहे हैं अपना मनपसंद रेडियो टोरंटो कनाडा। हवा के दोष पर आप तक पहुंचती हुई ये आवाज आमिर तुफैल की है। कबूल कीजिए मेरा अकीदत बरा सलाम अलैकुम, स्वीकार कीजिए मेरी प्यार भरी नमस्कार, और दिल की अथाह गहराइयों से निकलती हुई सत श्री अकाल। मैं रेडियो टोरंटो कनाडा के स्टूडियो 2 से आपका स्वागत करता हूँ। आपका खैर मकदम है, लेडीज एंड जेंटलमैन, guys and dolls, this is Lovey Dovey Show, and together we will kiss the airwaves of Toronto this afternoon.

0: और साहब बात करते हैं आपको मिलने वाली ग्रांट के हवाले से। दो हिस्से हैं इसके, एक है ग्रांट और दूसरा है इंटरेस्ट फ्री लोन, और जिसको वापस करने के लिए आपके पास साल हा साल होंगे। ग्रांट कौन दिलाएगा और कैसे दिलाएगा ये जानेंगे नागपाल जी से। वेलकम करते हैं सर आपको।
1: थैंक यू वेरी मच, सभी को सलाम।
0: मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ इनकम रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए जिसने अप्लाई करना उसके लिए।
1: हाँ जी, जिनकी इनकम लेस देन $70,000 है, फैमिली इनकम 2024 के नोटिस ऑफ असेसमेंट पे, वो इसके लिए एलिजिबल हैं। 30,000 to 100,000 की फंडिंग है, जिसके अंदर हाफ पोर्शन तो ग्रांट्स है, गवर्नमेंट दे रही है। बैंक इतने इतने काइंड नहीं है कि बैंक दे रहे हैं आपको, गवर्नमेंट दे रही है। तो कोई कुंडी नहीं है इसके अंदर, कोई कैच नहीं है, कुछ हिडन नहीं है, कोई चलाकी नहीं है। ऑफिस आए, कॉल करें, असेसमेंट कराएं एंड बेनिफिट लें।
0: बिल्कुल ठीक। दूसरी बात मैं ये जानना चाहता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट, कौन अप्लाई कर सकता है? आज जरा डिटेल में बताइए, हु कैन अप्लाई फॉर दिस ग्रांट?
1: जो जो पीआर सिटीजन प्रोटेक्टेड पर्सन है, हुकूमत अपनी आवाम के लिए ये चीजें लाती है, राइट? आप पीआर सिटीजन है, प्रोटेक्टेड पर्सन है, इनकम आपकी कम है 2024 के नोटिस ऑफ असेसमेंट पे, कहीं भी रहते हैं ओंटारियो में आप एलिजिबल हैं। क्यों? आसान से कोर्सेज हैं, फुली ऑनलाइन कोर्सेज करें, तालीम भी हासिल करें और फंडिंग भी हुकूमत से हासिल करें। हुकूमत आपकी फीस भी पे कर रही है कॉलेज की, अलग से आपको आपके खाते में फंडिंग दे रही है 30,000 to 100,000 की। जैसे चाइल्ड बेनिफिट है, डेंटल बेनिफिट है, हॉस्पिटल बेनिफिट है, वैसे एजुकेशन का बेनिफिट है। इस बेनिफिट को छोड़िए मत, क्योंकि ये पैसा नहीं तो बाहर ही चला जाएगा यूक्रेन को फिर से, तो इसलिए लीजिए, बेनिफिट लीजिए।
0: बिल्कुल ठीक। अगली बात मैं जानना चाहता हूं, आपका क्या कैच हो सकता है इसमें? व्हाई आर यू डूइंग दिस? आपके पास काम कर रहे हैं लोग, 8 to 10 लोग हैं, हाउ डू यू जनरेट इनकम?
1: और ऑफिस का रेंट भी बहुत ज्यादा है, 1,000 square feet का ऑफिस है, हाई क्लास जगह पे।
0: यस।
1: तो इसे मेरी वाइफ भी ये पूछती है क्यों काम करें, लोगों का ज्यादा फायदा हमारा कम है। मैंने कहा ठीक है, वॉल्यूम में काम करेंगे और शोर मचाएंगे तो क्लाइंट आ जाएंगे, भगवान के पास बड़ा तरक्की है, उनकी तरफ टचवुड बड़ा आशीर्वाद है। ओके, हमारी फीस $199 or $499 है काम होने के बाद। खाते में किसकी फंडिंग आ रही है? आपके। किसकी ईमानदारी चेक हो रही है? आपकी। पैसे कब देने? काम होने के बाद। तो अपनी ईमानदारी पे कंट्रोल रखें, हमारी तो ईमानदारी चेक हो ही नहीं सकती क्योंकि पैसे हमने लेना नहीं, तो अपने पे कंट्रोल रखें, हमारे पे नहीं।
0: अच्छा, दूसरी बात मैं टाइम सेंसिटिविटी की आपसे पूछना चाह रहा हूँ। मुझे लगता है कि जिसको ग्रांट चाहिए वो आज के आज ही अप्लाई करें।
1: देखिए, रश तो हम कर नहीं रहे, किसी को जो एलिजिबल है तो मिस ना करें। क्यों? क्योंकि ये एक सैटरडे तक दिन रह गया है, एक बैच सैटरडे को क्लोज हो जाएगा, एक और बैच 29 तारीख को कॉलेज ने नया लॉन्च करा है, तो उसमें मतलब एक हफ्ता ही रह गया है, क्योंकि 1 अगस्त के बाद तो ग्रांट्स गवर्नमेंट बंद कर रही है। मेरी कुछ की दुकान नहीं है सर, गवर्नमेंट का प्रोग्राम है, आज है तो है, कल नहीं है तो नहीं है, कोई चलाकी नहीं है इसके अंदर।
0: बिल्कुल ठीक। अगली बात मैं जानना चाहता हूं, जैसे उबर ड्राइवर्स हैं, घरों में लेडीज हैं, बैक होम से उन्होंने 10 जमातें पास किए हैं, प्लस टू किया है, बीए किया है, तो उनके लिए कैसा रहेगा ये प्रोग्राम और ग्रांट उनको क्या मिल सकती है अगर 70,000 से नीचे है उनकी इनकम? तो
1: सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों के लिए, अनएम्प्लॉयड लोगों के लिए ये चीज ब्लेसिंग है। इतने लोगों को असिस्ट कर चुके हैं, 8 साल से काम कर रहे, ज्यादातर क्लाइंट्स हमारे यही है, सेल्फ एम्प्लॉयड, उबर ड्राइवर, ट्रक ड्राइवर, हाउस वाइफ, अनएम्प्लॉयड, उनके खाते में फंडिंग जाती है। आसान से कोर्सेज करते हैं, कोई हार्ड कोर्सेज नहीं है, बेसिक इंग्लिश आपको आनी चाहिए, कहीं से आपने 10वीं करी नहीं करी वो भी मैटर नहीं करता, क्योंकि पॉलिसी गवर्नमेंट की इजी है एजुकेशन के लिए, हार्ड नहीं है। आपको बेसिक इंग्लिश आनी चाहिए, कॉल करें, फुली ऑनलाइन कोर्स है, असाइनमेंट्स है, एग्जामिनेशन नहीं है। अब आप मान के चले हमारे ऑफिस में एटलीस्ट एवरी डे हमारे 3 to 4 क्लाइंट जो प्रीवियस क्लाइंट है आते ही हैं, सर लॉगिन कैसे करना है, असाइनमेंट कैसे करनी है, राइट? तो देयर इज नो कैच इन इट, आपके सपोर्ट के लिए हम बैठे हैं, आइए। कुछ अंकल आंटी ये भी कहते हैं हमारे देयर इज नो एज लिमिट, तो हमारे अंकल आंटी बड़े हैं हमारे क्लाइंट्स, कहते हैं फोन यूज करना नहीं आता था, ये करके फोन यूज करना भी आ गया, लॉग इन करना। मेरे का बढ़िया यार, ये भी स्किल सीख ली आपने।
0: वेरी नाइस। यहाँ है नंबर नागपाल जी का, यही मिलाएंगे, ग्रांट मिल जाएगी। और अगर 70,000 से कम है, हस्बैंड वाइफ ही दोनों ही ये कोर्स करते हैं, आसान सा बिल्कुल सीधा सा कोर्स है जिसमें सिर्फ असाइनमेंट्स हैं, ये नंबर मिलाएं, 70,000 to 80,000 की ग्रांट और लोन इकट्ठा लें, 437-264-3175। नंबर दोबारा बता रहा हूं, ये नोट कर लें, खुद भी कर लें, यार दोस्त रिश्तेदार जानने वाले सबको दें, हो सकता है आपकी वजह से किसी और का भी भला हो जाए। 437-264-3175 3175 437 264 31 75. बहुत बहुत शुक्रिया नागपाल आपके टाइम.
1: थैंक यू. थैंक यू.
2: रेडियो टोरंटो कनाडा, आप हैं शिवानी और आमिर के साथ. आमिर, फ्राइडे आ चुका है, सैटरडे संडे आने वाला है. और वैसे भी जब समर का टाइम होता है, लंबी लंबी शामें होती हैं, बहुत सारा मौका होता है आप लोगों के साथ ज्यादा वक्त बिताने का, बाहर जाने का, आउटडोर एक्टिविटीज करने का. लेकिन वीकेंड इन सब पर भारी पड़ता है. वीकेंड वीकेंड है, राइट? तो इसीलिए कहते हैं कि अगर हम खुश होते हैं, अगर हम हैप्पी होते हैं, तो हम हर दिन को एंजॉय करते हैं, मंडे हो या संडे हो. लेकिन आजकल के डिफिकल्ट टाइम्स में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, डिफिकल्ट टाइम्स है, और लोगों को डिप्रेशन है, लोगों को थोड़ा सा मायूसी रहती है. तो ऐसे में जो हमारे हैप्पीनेस के जो हॉर्मोन्स होते हैं वो कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं, हम अपने हॉर्मोन्स को एक्टिवेट नहीं कर पाते. तो इसीलिए कैसे अपने हैप्पीनेस हॉर्मोन्स को एक्टिवेट करना चाहिए. एक डोपामाइन रिवॉर्ड केमिकल होता है जो हमारी खुशी के लिए जरूरी होता है, हमारी हैप्पीनेस के लिए जरूरी होता है. उसको एक्टिवेट तब होता है वो जब आप काफी सारी चीजें अपनों के साथ वक्त बिताने के अलावा बहुत सारी चीजें करते हैं, जैसे अपने घर को डीक्लटर करना, अपने ऑफिस टेबल को साफ करना, और कुछ सेल्फ केयर एक्टिविटीज करना, मसाज करना, या फिर अपने आप को कुछ ग्रूमिंग के लिए चले जाना. लेडीज पार्लर जा सकती हैं, सैलून जा सकती हैं, अपने आप को पैम्पर कर सकती हैं, छोटी छोटी सी अपनी जो विन्स होती हैं उनको सेलिब्रेट करना. आज आपने कुछ भी ऐसा कर दिया जो छोटी सी विन है उसको बहुत बड़ा बना दीजिए, तभी आपके पास बड़ी विन्स आएंगी. दूसरी चीज, एक लव हार्मोन होता है जिसको हम ऑक्सीटोसिन कहते हैं.
0: वो मुझे मुझ में बहुत ज्यादा है.
2: माय लिसनर्स कॉल करके पूछ सकते हैं 416-303-3639 पर. और ये जो ऑक्सीटोसिन है, लव हार्मोन, ये एक्टिवेट होता है जब हम किसी अपने के साथ वक्त बिताते हैं. और अगर आपके पास कोई पपी है, कोई डॉग है, कोई कैट है, उसके साथ खेलते हैं,
0: और अगर आपने किसी का नाम कैट रखा है उसके साथ भी वक्त गुजार सकते हैं.
2: एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली. आपने बहुत फास्ट लर्नर है, आपने बड़ी जल्दी समझ गए. और अगर अपने बच्चों के साथ खेलना, प्लेइंग विद द बेबीज, होल्डिंग हैंड्स, और उसके अलावा किसी को कुछ कॉम्प्लीमेंट देना, वो भी अपने आप में बड़ा अच्छा ये हार्मोन होता है. और एक सेरोटोनिन होता है जो मूड स्टेबलाइजर होता है. मेरे जैसा इंसान जो बहुत जल्दी इधर उधर मूड कर दे, उसको स्टेबलाइज करने के लिए मेडिटेशन जरूरी है, कुछ फिजिकल एक्टिविटी जरूरी है, सन में वक्त बिताना बड़ा जरूरी है, नेचर में वॉक करना बेहद जरूरी है, और कोई भी एक्टिविटी ले लीजिए.
0: सन में वक्त गुजारना और सन के साथ वक्त गुजारना भी मुझे लगता है बहुत जरूरी.
2: हाँ, सन के साथ वक्त करना, जी बिल्कुल सही. और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पेन रिलीफ का जो हार्मोन है वो है एंडोर्फिन. ये जो है वो लाफिंग एक्सरसाइज, आजकल लाफिंग एक्सरसाइजेस होती है, लोग पार्क में जाकर हंसते हैं। एक ट्रेनर हंसाता है उन्हें.
0: आई एम नॉट गेस्ट के किसी पे नहीं हंस रहे हैं,
2: घर से लड़के आते हैं लेकिन फिर भी हंसते हैं. और एसेंशियल ऑयल्स, डार्क चॉकलेट खाना भी पेन रिलीफ देता है. इसके अलावा कुछ भी चीज जो आपको अच्छा लगता है वो आप करते हैं तो उससे पेन भूल जाते हैं. और उसमें म्यूजिक भी शामिल है, हमें बहुत प्यारा सा गाना फ्रॉम द मूवी मोर.

0: रेडियो टोरंटो कनाडा और आप हैं शिवानी और आमिर के साथ। 2:13 का वक्त है और हमारे साथ एक बहुत ही एक्सपीरियंस्ड, बहुत ही तजुर्बेकार इंश्योरेंस प्रोफेशनल जुड़ चुकी हैं और ये फाइनेंशियल प्रोफेशनल हैं और आपकी पूरी की पूरी जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है वो इनके हाथों से अगर होकर जाएगी तो डेफिनेटली आपकी ज़िंदगी सुकून में जाएगी। वैसे भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, उनको इजाफा क्यों किया जाए, जो प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती हैं प्रोफेशनल के हाथों उन्हीं को उसी प्रोफेशनल के हाथों में सौंप देना ही अच्छा है। और शबाना पिछले एक महीने से ज्यादा हो गया हमारे साथ, हर थर्सडे जुड़ती हैं, बहुत अच्छी अच्छी इंफॉर्मेशन लेकर आती हैं और आप उनकी बातें पसंद करते हैं, उनकी बातों को सुनते हैं और अपने घर में इंप्लीमेंट करते हैं। नंबर जरूर बता दूं क्योंकि शबाना जब बात करेंगी तो आपको इस नंबर की जरूरत डेफिनेटली पड़ेगी। 647-997-7224। शबाना, गुड आफ्टरनून, प्लेजर हैविंग यू विद अस, कैसी हैं आप?
1: थैंक यू सो मच शिवानी। मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताएं।
0: जी बिल्कुल ठीक ठाक। और आज जिस टॉपिक पर हम आपसे बात करने वाले हैं शबाना, वो मेरे ख्याल से लोग बताएं या ना बताएं हर घर से जुड़ी हुई प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर घर है, बच्चे हैं, फैमिली है, बिजनेसेस हैं, जॉब्स हैं, तो इंश्योरेंस भी है। और इंश्योरेंस लोग कई बार बिजी होने की वजह कह लीजिए या कोई और कह लीजिए या फिर एक केयरलेसनेस भी कह सकते हैं आमिर, इतनी ज्यादा इंश्योरेंस ले लेते हैं और कभी कभी डर के मारे भी ले लेते हैं कि ये भी ले ले वो भी ले लिया जाए। उनको खुद नहीं पता होता कि उनकी कवरेज क्या है, वो किस चीज के लिए कवर्ड है और जिसके लिए होना चाहिए उसके लिए है भी या नहीं है। तो इस बारे में थोड़ा सा जरूर बताइए, हमारे लिसनर्स की बहुत काम आएगा।
1: जी शिवानी, मैं आज एक्चुअली फाइनेंशियल वेलनेस के ऊपर बात करने वाली हूँ, क्योंकि जो
0: अच्छा
1: फाइनेंशियल वेलनेस है वो आपके मेंटल एंड फिजिकल वेलनेस से जुड़ा हुआ है। जितना आप
0: जी
1: फाइनेंशियली वेल होते हैं, आपने अपनी प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग कराई हुई होती है, उतना ज़्यादा आप मेंटली जो होते हैं ना, वो पीस ऑफ माइंड होता है आपके पास।
0: सही
1: तो इसी से रिलेटेड मैं आपको एक स्टोरी अपनी शेयर करूंगी कि रिसेंटली जो है वो मुझे किसी की कॉल आई और उन्होंने मुझे बताया कि जो उनकी वाइफ है उनको क्रिटिकल इलनेस डायग्नोज हुआ है, उनको कैंसर डायग्नोज हुआ है। तो उन्होंने क्रिटिकल इलनेस तो ली हुई है, तो आप एक काम करें कि आप,
0: हाँ
1: मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि क्लेम कैसे फाइल करना है और पॉलिसी में कहीं नज़र नहीं आ रहा, तो मैंने सोचा मैं आपसे हेल्प ले लूँ। मैंने कहा ठीक है आप मुझे रिव्यू के लिए भेजें, बल्कि मैं उनके घर पर ही चली गई। तो जब मैंने उनकी पूरी पॉलिसी रिव्यू की तो मैं देखा कि उनकी तो क्रिटिकल इलनेस है ही नहीं उसके अंदर, वो तो लाइफ इंश्योरेंस ली हुई है उन्होंने। तो उन्होंने कहा नहीं
0: जी
1: नहीं मैंने ली थी, यू नो इट्स बिन अ वाइल, लेकिन बहुत टाइम हो गया उनको लिए हुए। तो मैंने कहा बीच में आपने किसी के साथ बैठ के रिव्यू नहीं किया, देखा नहीं क्या? लेकिन मैं और मेरी वाइफ हम दोनों ही काम में बिजी रहते थे तो कभी हमने देखा नहीं। मैंने कहा इतने सालों में अगर आप एक दफा रिव्यू कर लेते कि आपके पास क्या है
0: ओ
1: क्या नहीं है, तो वो बेसिकली डिसेबिलिटी वेवर था जिसको वो क्रिटिकल इलनेस समझ रहे थे। तो
0: हाँ
1: उस बात से वो बड़े सैड हो गए। दूसरे नंबर पे मैंने कहा आपने अपने लिए क्या लिया हुआ है? तो उन्होंने कहा हाँ हमारी मॉर्गेज इंश्योरेंस भी, आप उसमें चेक कर लें शायद उसमें कुछ हो। जब मैंने उनकी मॉर्गेज इंश्योरेंस देखी तो उनमें सिर्फ हस्बैंड का नाम था, क्योंकि घर सिर्फ हस्बैंड के नाम पे था
0: अच्छा
1: और हस्बैंड के भी नाम पे था, और वो भी कई सालों से मॉर्गेज इंश्योरेंस की पेमेंट कर रहे थे, प्लस उनके हाउस के अंदर उनका आउटस्टैंडिंग बैलेंस 50,000 रह गया था। तो मैंने उनसे पूछा
0: ओ
1: कि ये 50,000 तो अब आप अगले 1-2 साल में अगर आप पे कर देते हैं तो उसके बाद तो आपके पास किसी भी तरह की कोई इंश्योरेंस नहीं है और मॉर्गेज इंश्योरेंस भी खत्म हो जाएगी आपकी। तो उन्होंने कहा हाँ, तो हम तो समझ रहे थे कि ये चलेगी लंबा अर्सा। उस पर फिर बैठ के मैंने
0: ओ
1: उनसे कहा आप मुझे टाइम दें, हम बैठते हैं मिलके। फिर मैं उनके पास दोबारा गई, उनकी पूरी मैंने प्रॉपर प्लानिंग की, उनको मैंने बताया कि आप गॉड फॉरबिड जॉब लॉस की सूरत में अपना इमरजेंसी फंड रखें, 3 to 6 month प्रॉपर अपनी लाइफ इंश्योरेंस, क्रिटिकल इलनेस ये सारी चीज़ें लें, और हर कुछ अर्से बाद 2-3 साल पे या एवरी ईयर अपने जो है एडवाइजर से उनके साथ इन टच रहें, ताकि आपको
0: जी
1: पता चले आपने क्या लिया हुआ है क्या नहीं लिया हुआ है, प्रॉपर एक दफ़ा और समझें। तो वो कहने लगे कि मैं और मेरी वाइफ तो हम जल्दी जल्दी काम करके घर को पे ऑफ कर रहे थे कि हमारे घर की एक लाइबिलिटी है वो ख़त्म हो जाएगी। अचानक से मेरी वाइफ को जो क्रिटिकल इलनेस डायग्नोज हुआ तो उससे तो हम हिल के रह गए कि
0: जी
1: हमने तो ये सोचा भी नहीं था, क्योंकि कोई भी चीज़ बताकर तो आती ही नहीं है।
0: बताती
1: लेकिन और
0: नहीं
1: हमने सोचा कि हमारी तो कोई लाइबिलिटी भी नहीं है, अब घर तो पेड ऑफ हो जाएगा और बाकी इंश्योरेंस वगैरह लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन हम ये फिर बार दफा ये चीजें हम इग्नोर कर देते हैं कि हमें नहीं समझ में आता कि ये कितनी जरूरी है।
0: क्या बात है।
2: शबाना, आपका नंबर है, मैं अपने सुनने वालों से कहना चाहता हूं, शबाना से बात करना चाहते हैं। शी इज अ वंडरफुल फाइनेंशियल एडवाइजर। एक बार आप बात करेंगे, आप कि जिंदगी में आपको एक नुमाया तब्दीली नजर आएगी, एक बदलाव नजर आएगा। ये नंबर मिलाएंगे आप 6479977224। नंबर दोबारा बता रहे हैं, शबाना को कॉल कीजिए क्योंकि शबाना आपकी जिंदगी में बहुत सी चेंजेस ला सकती हैं, टैक्स सेव कर सकती हैं, आपको इंश्योर कर सकती हैं, आपको सिक्योर कर सकती हैं, अगली जनरेशन तक ये सिलसिला जारी रहेगा। 6479977224। शबाना, यहां एक स्टडी हुई है उसके मुताबिक लोग आपसे इंश्योरेंस जरूरत की वजह से तो लेते हैं, एक और वजह भी है कि आप इतना मीठा बोलती हैं उनको लेनी ही पड़ जाती है।
1: अल्लाह करे ऐसा हो। बहुत शुक्रिया।
0: और लोगों को लगे नहीं नहीं नहीं ये जो इंश्योरेंस अब तक ली थी वो बिल्कुल बेकार है, अभी अभी जो बताई गई है वही है।
1: एग्जैक्टली।
2: आप ऐसे ही खूबसूरत बोलती रहिए और लोगों में ये भलाई बांटती रहिए और ये काम करती रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया,
0: बहुत बहुत शुक्रिया शबाना। नंबर आपका एक बार फिर से बता दूं, 6479977224। थैंक यू जी,
1: थैंक यू सो मच। ओके,
3: अगर आप लंबे वक्त से किसी हेल्थ प्रॉब्लम से परेशान हैं और एक नेचुरल आयुर्वेदिक सोल्यूशन की तलाश में हैं, तो आइए सहज आयुर्वेदिक हर्बल कंसल्टेशन सेंटर पर। यहाँ खानदानी परंपरा के अनुसार नब्ज देखकर कई तरह की बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से किया जाता है। इलाज से बहुत सारे लोगों को राहत और फायदा मिला है, चाहे एस्मा, एलर्जी, स्किन प्रॉब्लम्स, कमर या घुटनों का दर्द, आर्थराइटिस, हेयर प्रॉब्लम्स, गैस, अल्सर, लेडीज प्रॉब्लम्स, वेट लॉस, सोराइसिस या फिर किसी अन्य हेल्थ इश्यू की बात हो, बीमारियों का जड़ से इलाज करने में मदद मिलती है। आज ही कॉल करें वैद्य रत्न पीवी राज को, लोकेटेड इन ब्रैम्पटन, 6473278111, 6473278111।
4: की तो हानू इलेक्ट्रिशियन की लोड़ है, सानू हाई रिस्क इलेक्ट्रिकल ते कॉल करो। हाई रिस्क क्यों? क्योंकि साडे कोल लाइसेंस नहीं है ते सी इलेक्ट्रिकल परमिट नहीं लेंदे। जाने की तुसी पक्का नहीं कह सकते कि साडा काम किन्ना कु सुरक्षित जां कानूनी है, पर एक गल पक्की है कि जदों भी असी आवांगे असी तुहाडा टॉयलेट जरूर वरतांगे। इसलिए हुणे कॉल करो, असी वादा करदे हां कि तुहाडे घर नूं आग नहीं लगेगी। शायद
5: अपने परिवार की रक्षा करो, सिर्फ लाइसेंस्ड इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर ही वरतो अते यकीनी बनाओ कि वो ईएसए परमिट हासिल करन। होर जानन लई highlicense.ca ते जाओ। इलेक्ट्रिकल सेफ्टी अथॉरिटी वल्लों एक सुनेहा।
6: ख्वाब पूरा हो सकता है, आपका बच्चा भी अब डॉक्टर बन सकता है।
7: अपने बेटे या बेटी को मोस्ट अफोर्डेबल रिकॉग्नाइज्ड ऑल सेंट्स यूनिवर्सिटी डोमिनिका में इनरोल करवाएं,
6: उसे डॉक्टर बनाएं। 20 इयर्स ऑफ प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड, नो एमकैट रिक्वायर्ड,
7: 90% पास रेट।
6: कॉल नाउ 416-743-9222,
7: 416-743-9222।
6: और विजिट allsaintsuniversity.org। All Saints University से डॉक्टर बनने के बाद आपका बच्चा अमेरिका, कनाडा, यूरोप और किसी भी मुल्क में एज अ डॉक्टर काम कर सकेगा।
8: भाई मैं कहना भी पैना है, तो सुनना भी पैना है। डिजाइनर फ्रेम ते ब्रांडेड सनग्लासेस दे बथेरे स्टोर देखे, पर जिन्नी वैरायटी कांडा ऑप्टिकल दे कोल है ओदा ता जवाब है नहीं। सोने फेस वाली है, उच्ची हील वाली है, गुच्ची वाला सच पावे दिल ते थवारी है। फॉर अमेजिंग डिजाइनर फ्रेम्स एंड डिजाइनर सनग्लासेस विजिट kandaoptical.com और कॉल 416-922-5263। कांडा ऑप्टिकल, द नेम यू कैन ट्रस्ट।
9: मम्मा, व्हाई डोंट यू गो टू वर्क नाउ?
10: बेटा तुझे क्या बताऊं कि मेरी जिंदगी ही रुक गई है, एक महीने से काम पर नहीं गई और अब इंश्योरेंस कंपनी क्लेम डिनाई कर रही है।
11: जिंदगी रुकती नहीं, बस रास्ता बदलना पड़ता है। कॉल सैयद एम रजा, आर कम्युनिटी इंजरी लॉयर, इंजरी लॉ के एक्सपर्ट लॉयर।
10: क्या वो मदद करेंगे?
11: मदद करेंगे, उन्होंने एक क्लाइंट को $2 मिलियन की एग्रीगेट सेटलमेंट दिलवाई, तुम्हारे लिए भी लड़ेंगे। इनके पास 12 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस and no fee until victory.
12: Car accident ya slip and fall? Don't call any third party agent. Directly call Sayyed M. Raza of Sayyed Law. Sayyed Law se Sayyed M. Raza.
11: Jahan sirf vaade nahi, result mile.
12: Call Sayyed M. Raza 416-937-5046. That is 416-937-5046.
2: Music
0: रेडियो टोरंटो कनाडा और ये दोपहर का सफर आपके और हमारे साथ फ्राइडे है और जब फ्राइडे के बाद सैटरडे संडे आता है तो हम बहुत सारी चीजें जो है हम सैटरडे संडे पे छोड़ते हैं क्योंकि ज्यादातर लोगों के पास वीकेंड फ्री होता है, फैमिली के लिए वक्त निकालते हैं, जरूरी काम करते हैं और सबसे जरूरी चीज है जो अक्सर हम कभी कभी नेग्लेक्ट कर देते हैं वो हमारी हेल्थ होती है। और हेल्थ के लिए भी हम कभी कभी वीकेंड का इंतजार करते हैं, ऐसा करना तो नहीं चाहिए लेकिन क्या करें, यहाँ इस कंट्री में कुछ ऐसा ही रिवायत है। लेकिन वीकेंड पे अगर आप अपनी हेल्थ का ख्याल रखना चाहते हैं तो एक जगह है जहां पे आप हर तरीके की बीमारियों से बिल्कुल नेचुरल तरीके से छुटकारा पाते हैं और ये नाम है जाना पहचाना आयुर्वेद एंड हर्ब गुरुजी। और जो हमारे साथ जुड़ते हैं 9 जनरेशन से गुरुजी के पूर्वज, उनके बड़े यही काम कर रहे थे, राजा महाराजाओं के राज्य वैद्य हुआ करते थे और गुरुजी ने भी वहीं से सीखा है और लोगों को सेवा दे रहे हैं और लोगों को अच्छा कर रहे हैं, लोगों को स्वस्थ कर रहे हैं। नंबर है 4374383399। आज कल परसों यानी संडे तक गुरुजी ब्रैम्पटन में मिलेंगे, 4 दिन ब्रैम्पटन में होते हैं, 3 दिन स्कारब्रो में होते हैं, मंडे ट्यूसडे वेंसडे। कंसल्टेशन बिल्कुल फ्री होता है 4374383399। मेरी तरह आप भी आमिर उनकी अब गुरुजी की आवाज सुन के हेल्दी हो जाते हैं और बिल्कुल डिजीज फ्री हो जाते हैं।
2: बिल्कुल
0: नमस्कार।
13: नमस्ते नमस्ते बहन जी, नमस्ते, थैंक यू फॉर दैट।
2: बहुत बहुत शुक्रिया गुरुजी। बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दा, बहुत अहम इशू, बहुत से लोगों ने मुझसे कांटेक्ट किया इस बारे में और ये बहुत लोग परेशान हैं इस बारे में। यहाँ बहुत से क्लिनिक्स खुले हैं आईबीएफ के हवाले से, पीपल आर ट्राइंग टू हैव देयर चिल्ड्रन, देयर किड्स, देयर बेबीज, बट दे कैन नॉट परसीव, दे कैन नॉट हैव वन, तो उसके लिए उन्हें आईवीएफ कराना पड़ता है जो बहुत महंगा है और अंदाजे के मुताबिक $25,000 से $30,000 लग जाता है एक बार आईवीएफ कराने के लिए। तो इस सिलसिले में आप क्या मशवरा देते हैं?
13: हाँ जी हाँ जी, मेरे बारे में आप ये बात हमारे रेडियो में बहुत बार बताया था, वो सुन के मेरे को कम से कम 10 लोगों को आईवीएफ बिना हमारे पास बेबी उनको पॉजिटिव हो गया था।
2: वेरी नाइस।
13: क्या होता है भैया, वो दोनों लोगों को देखना है। पहले औरत में प्रॉब्लम होता है, औरत में प्रॉब्लम होता है, उसको बच्चा नहीं होता है, वैसा बता के औरत को महसूस करता है। वैसा नहीं है, औरत में नहीं है, आदमी को भी प्रॉब्लम होता है। आदमी पे क्या होता है, बॉडी को एनर्जी लेवल्स कम हो जाता है और उसको सेमन में काउंटिंग डेथ सेल्स बाहर आ जाता है, मूवमेंट नहीं होता है, अच्छा सेल्स आता, अच्छा सेमन नहीं होता है और उसको ताकत में स्ट्रेस वगैरह से और इधर का क्लाइमेट, इधर का वो खाना पीना के व्यवस्था से उसको अंदर में वीकनेस हो जाता है, इसलिए बेबी होने के लिए कम हो जाता है। और औरत के लिए यूट्रस में पीसीओडी

0: 99 नंबर दोबारा बता रहे हैं, 437 438 3399।
1: जी, नंबर है 437-438-3399। और जब गुरुजी के पास बहुत सारे मिठाइयों के डिब्बे और बहुत सारे लोगों की एक दिन हम गुरुजी के पास गए हमें,
0: जी
1: तो
0: जी
1: उनके पास बहुत सारे स्वीट बॉक्सेस थे, वो
0: बिल्कुल
1: सबको
0: बिल्कुल
1: गुरुजी सबको दे रहे थे।
0: यस
1: तो तब हमें पता चला कि लोगों की इतने सालों की जो तपस्या है वो रंग लाई गुरुजी के मेडिकेशन से, गुरुजी की जड़ी बूटियों से, और उनका जो खुशी था वो गुरुजी के चेहरे पर भी नजर आ रहा था।
0: बिल्कुल
1: गुरुजी
0: बिल्कुल
1: जब लोगों को आप मुस्कुराते हुए देखते हैं और लगता है कि आप उसकी उसकी रीजन है, तो कितना अच्छा लगता है आपको, राइट?
0: हाँ जी, हाँ
1: जी,
0: जी, हाँ जी, मुख्यमंत्री
1: सवाल
0: जी।
1: मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि IVF के हवाले से अगर हम बात करें,
0: हाँ
1: तो कुछ लोग लेटर एज में, मान लीजिए 35+ या 40+ या 45+ की लेडी हो जाती है, या जेंट्स में भी उम्र के हिसाब से बहुत ज्यादा उम्र के हो जाते हैं, तो क्या उस उम्र में भी बच्चे की पैदाइश मुमकिन होती है?
0: हाँ जी, मैं उसके लिए मैं आपको एक्सप्लेन करना पड़ता है। पहले भैया एक आपको पहले देखिए, 45 उम्र में भी पहले वो प्रेग्नेंट हो गया था पहले
1: अच्छा,
0: पहले,
1: पहले
0: अभी
1: ठीक है।
0: या पहले पहले, और 65 लोगों को, वो बुढ़ा को भी बच्चा हो गया था, उसको एनर्जी वैसा है, वो उसका खाना वैसा, हमारे इंडिया में वैसे उसको खाना वैसा है, वो हेल्थी वैसा है। बट अभी आजकल कैसा होता है, मैं एक ही सजेशन बताता है, 35 को अंदर बच्चा होना है,
1: अच्छा, 35 से नीचे की उम्र हो तो वो बेहतरीन है उसके लिए।
0: बेहतरीन है। 35 को बाद क्या होता है, वो वैसे IVF भी वो उसको लेयर्स बढ़ जाता है, यूट्रस यूट्रस में लेयर्स थोड़ा मोटा मोटा हो जाता है, उसको एग्स रिलीज होने के कारण में थोड़ा कम हो जाता है, एग्स अच्छा से बढ़ा नहीं जाता है लेडीज को, औरतों को।
1: आखिरी
0: तो
1: सवाल पूछना चाहता हूं, ये जिन लोगों को बच्चा पैदा नहीं होता है उसमें प्रॉब्लम्स आते हैं, मसले होते हैं, तो मर्द के लिए टेंशन, डिप्रेशन या हर वक्त ऑक्यूपाइड रहना या स्ट्रेस में रहना कितना डेंजरस हो सकता है?
0: भैया ये इम्पोर्टेंट है, मेन बच्चों नहीं होता है उसको स्ट्रेस कम करना, स्ट्रेस हो जाए तो बच्चों में प्रॉब्लम हो जाता है। हार्मोनल, हम एस्ट्रोजन हार्मोन अच्छे से नहीं उत्पत्ति होता है, इसी कारण से क्या होता है, यूट्रस में अच्छे से नहीं काम करता है। स्ट्रेस जितना कम करके वो हमारा ट्रीटमेंट ले तो उतना अच्छे से हो गया हमारा। बस भैया आपने बताया था 42 एज को औरत को वो बच्चा हो गया था
1: अरे वाह,
0: लास्ट वीक को पे वो थे, मैं सारा दवा खत्म वो बंद करके उसको अच्छा हो गया, वो स्वीट बॉक्स लेकर आके गया था। 42 उम्र है उसको, कम से कम चार छह छह बार IVF किया था, 6 बार फेल हो गया, इंडिया में भी जाके IVF करके आया था, वो भी फेल हो
1: बिल्कुल
0: गया
1: सही। यहां नंबर है
0: हमारा।
1: गुरुजी का, ये मिलाएंगे, आप खुद हैं, रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, जानने वाले हैं, उनको बताएं, गुरुजी का ये नंबर दें, जाके मिलें, इनके हाथ में बड़ी शिफा है, काम हो जाएगा। 437-438-3399 नंबर दोबारा बता रहे हैं गुरुजी, कहते हैं एक बार कांटेक्ट जरूर कीजिए, 437-438-3399। गुरुजी बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम के लिए, थैंक यू वेरी मच।
0: थैंक यू भाई।
2: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
3: कल किसने देखा है जी, लाइफ कभी भी बदल सकती है, इसलिए आज प्लानिंग कीजिए ताकि कल आप टेंशन फ्री रहें। जॉब लॉस, डिसेबिलिटी या फिर लाइफ की कोई भी अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन, शबाना की फाइनेंशियल प्रोटेक्शन प्लान इज द सॉल्यूशन। लाइफ इंश्योरेंस, क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस, सुपर वीजा इंश्योरेंस, RESP RDSP, सब कुछ एक ही जगह। शबाना
4: अवार्ड विनिंग इंश्योरेंस प्रोफेशनल शबाना के लंबे एक्सपीरियंस से अब होगी आपकी फैमिली की कंप्लीट केयर, क्योंकि शबाना इज ऑलवेज देयर। 6476427997742।
1: रेडियो टोरंटो कनाडा, वक्त हो चला है 2:31। एक बहुत प्यारा सा थॉट है आमिर, जो कहता है कि जो हैप्पीनेस होती है ना, वो बटरफ्लाई की तरह होती है। हम खुशियों को जब बहुत ढूंढते हैं, किसी चीज के बारे में बहुत सोचते हैं, तब वो हमें नहीं मिलती। द मोर यू चेज इट, द मोर इट विल
5: इल्यूड यू, तुम्हें वो आपको बरगलाती रहती है। बट इफ यू

0: turn your attention to other things, it will come and sit softly on your shoulder.
1: बिल्कुल.
0: आपको अंदाजा भी नहीं होता कब आपकी चीज आपको मिल गई. और जब आप बहुत ढूंढते हैं तो आपको नहीं मिलती. ऐसा होता है आपके साथ, मेरे साथ बहुत होता है.
1: सही कहा आपने. लेकिन मेरा नजरिया थोड़ा सा और भी है.
0: अच्छा.
1: कि जिसको आप ढूंढ रहे होते हैं वो भी आपको तलाश कर रहा होता है.
0: हाँ.
1: So it's a mutual feeling always. तो जो चिंगारी आपके दिल में जलती है वही उसके दिल में भी जल रही होती है जिसको आप तलाश कर रहे होते हैं. इस यकीन से लोगों को ढूंढना शुरू कीजिए.
0: क्या बात है. 416-303-3639.

0: और साहब, हादसा हो जाना बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है कि हादसे के बाद कंपनसेशन के लिए किस वकील से कांटेक्ट किया है और उसने आपको कितनी कंपनसेशन दिलाई है। जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं, इन्होंने एक ही क्लाइंट को up to $1 million तक की कंपनसेशन दिलाई है। ये रिकॉर्ड है, मोर देन फुल टाइम इन टू पर्सनल इंजरीज, वन एंड ओनली सैयद एम रजा बैरिस्टर। वेलकम करते हैं सर आपको।
1: जी, तो फैल भाई, आपका और आपके रेडियो प्रोग्राम का बहुत बहुत शुक्रिया मुझे ये टाइम देने का कि आपके लिसनर से मैं अपने एक्सपीरियंस से शेयर करूं और हम उन्हें ऐसी टिप्स दें जो उनके काम आए। सैयद लॉ ऑफिस एक एक्सक्लूसिव पर्सनल इंजरी लॉ फर्म है जिसका
0: जी
1: एरिया ऑफ प्रैक्टिस कार एक्सीडेंट, स्लिप एंड फॉल, ट्रिप एंड फॉल, डॉग बाइट है, कॉस्मेटिक इंजरी है। लास्ट 13 ईयर्स से हम कम्युनिटी को सर्व कर रहे हैं एंड वी वांट टू मेक श्योर कि हमारी कम्युनिटी के लोग जो सैयद लॉ ऑफिस को रिटेन करते हैं, हम उनको उनकी इंजरीज का मैक्सिमम कंपनसेशन दिलवाएं और उनके जो वीकली मंथली बेनिफिट्स हैं उनको एक्सपेडिशियसली प्रोसेस करके उनको वो तमाम बेनिफिट्स दिलवाए जाए जिसकी उनको नीड है और वो उसके लिए एलिजिबल है। ये लास्ट 13 ईयर से सैयद लॉ ऑफिस इसी एरिया में प्रैक्टिस कर रहा है। वी डोंट डू एनीथिंग एल्स अदर देन गेटिंग अवर क्लाइंट्स क्लेम फॉर देयर पर्सनल इंजरी क्लेम। जब भी
0: बिल्कुल
1: कार
0: ठीक।
1: एक्सीडेंट होता है तो उसमें पोटेंशियली दो क्लेम्स होते हैं। एक होता है एक्सीडेंट बेनिफिट्स का क्लेम जो कि
0: जी
1: आपको अपनी इंश्योरेंस कंपनी पे करती है, ये आपको ट्रीटमेंट देती है, आपको आपका इनकम लॉस पे करती है, आप पर्सनल केयर लेंगे कर सकते हो तो उसके लिए आपको एक्सपेंसेस प्रोवाइड करती है, या आपको जो है कोई PSW की सर्विसेज प्रोवाइड करती है। उसके अलावा आप घर का काम नहीं कर सकते उसके लिए आपको जो है वो हेल्प प्रोवाइड की जाती है। अगर आप जो है आपको कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में आप रजिस्टर्ड थे एक्सीडेंट की वजह से, अब आप उसको कंटिन्यू नहीं कर सकते हो तो उसकी फीस का जो आपको लॉस हुआ है वो पे करेगी। यानी देर आर अ लॉट ऑफ बेनिफिट्स।
0: बिल्कुल ठीक।
1: उसके अलावा जो दूसरा क्लेम होता है वो उस पार्टी के अगेंस्ट होता है जिसने आपका एक्सीडेंट किया है यानी जो गलती पर है। वो
0: जी
1: क्लेम जो होता है उसको टॉर्ट क्लेम कहते हैं, यानी क्लेम इन नेग्लिजेंस। यानी जो दुनिया भर के ज्यादातर मुल्कों में यही लॉ है का कि जो भी नेग्लिजेंट पार्टी है वो जिसके साथ जो है वो टॉर्ट हुआ हो, यानी जिसके साथ जो है वो एक्शन हुआ हो, उसको पे
0: जी
1: करती है फॉर द डैमेजेस। इसमें
0: बिल्कुल ठीक।
1: मॉनेटरी डैमेज भी है, फिजिकल डैमेजेस भी हैं, साइकोलॉजिकल डैमेजेस भी आएंगे और इकोनॉमिक लॉस के डैमेजेस वगैरह भी आएंगे, सारे ये आएंगे। लेकिन
0: बिल्कुल
1: इस
0: सही
1: चीज को स्टार्ट करने के लिए आपने एक्सीडेंट बेनिफिट्स का क्लेम पहले स्टार्ट करना होता है ताकि
0: जी
1: वहां से सारी एविडेंस जब आए। एक्सीडेंट बेनिफिट्स का क्लेम बेसिकली इस बात का सबूत होता है कि यू आर इन्वॉल्व इन एन एक्सीडेंट, यू रिक्वायर दिस दिस दिस ट्रीटमेंट एंड नाउ बिकॉज योर ट्रीटमेंट हैज वर्क्ड बट यू हैव सस्टेन लॉन्ग लास्टिंग इंजरीज एज अ रिजल्ट ऑफ दिस एक्सीडेंट, तो आपको
0: बिल्कुल
1: जो है
0: ठीक।
1: वो ट्रीटमेंट की अब ज्यादा जरूरत है कि जो कि आपकी इस इंश्योरेंस कंपनी का जो बजट हैगा ये पूरा
0: जी
1: नहीं कर सकता हैगा। लिहाजा आपको जो है वो टॉट इंश्योरर यानी उस बंदे का इंश्योरर जिसने आपको हिट किया है वो पे करे।
0: बिल्कुल ठीक।
1: यही काम सैयद लॉ ऑफिस करता हैगा। वी लास्ट 13 ईयर्स वी गॉट मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ डॉलर्स टू पीपल फॉर देयर इंजरी क्लेम्स। और जैसा
0: यस
1: मैंने आपके लास्ट प्रोग्राम में कहा था, पर्टिकुलरली वो लोग जो कमर्शियल ड्राइवर्स होंगे और जो ट्रक्स चलाते होंगे वो जब एक्सीडेंट में इन्वॉल्व होते हैं तो उसमें थोड़ी सी लीगल कॉम्प्लिकेशन होती है।
0: आ
1: पहली ये
0: जाती है।
1: होती है कि आया उनका जो है वो WSIB का क्लेम है या दे कैन ऑल्सो क्लेम अंडर देयर मोटर व्हीकल इंश्योरेंस पॉलिसी, या क्या वो सू कर सकते हैं अदर ड्राइवर को या सू नहीं कर सकते हैं। तो एक बात जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, अगर आपकी गलती नहीं है यानी किसी और ने आपको हिट किया है तो आप अदर ड्राइवर को सू कर
0: नहीं हो
1: सकते,
0: पाती। बिल्कुल ठीक।
1: चाहे आप जो है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ योर एम्प्लॉयमेंट ही क्यों ना हो।
0: बिल्कुल
1: जनरली
0: सही।
1: अगर किसी फैक्ट्री में किसी वर्कर के साथ जो है कोई इंजरी होती है किसी फैक्ट्री में या किसी वर्क प्लेस पे जनरली, तो वो एम्प्लॉयर को सू नहीं कर सकता है। फॉर
0: बिल्कुल
1: एग्जाम्पल,
0: ठीक।
1: फैक्ट्री वर्कर एक मशीन पे काम कर रहा था, उसका कोई फिंगर जो है उसका डैमेज हो गई या वो कट गई थोड़ी सी या पुल,
0: बिल्कुल सही।
1: तो वो इम्प्लॉयर को सू नहीं कर सकता है। उसके लिए WSIB में जो बेनिफिट्स हैं उसको वो मिलेंगे। लॉ ने
0: बिल्कुल
1: ये
0: सही।
1: क्लियर रखा है कि अगर इम्प्लॉयर को सू किया जाने लगे तो फिर इम्प्लॉयर काम करना छोड़ देंगे और
0: बिल्कुल
1: इकोनॉमिक
0: ठीक
1: साइकिल नहीं चलेगा, उससे प्रोडक्शन रुक जाएगी। तो
0: जी।
1: इसलिए इम्प्लॉयर को जो है वो इम्यूनिटी दी है, मगर वो क्या करते हैं, वो WSIB में कंट्रीब्यूट करते रहेंगे और WSIB उनको जो भी डेथ क्लेम हो गया, एम्पुटेशन का क्लेम हो गया, उसके अलावा उनको जो फैमिली का अगर कोई डेथ का क्लेम है
0: जी
1: तो उनकी फैमिली को जो बेनिफिट्स हैं वो सारे WSIB वाले पे करते हैं इन द कोर्स ऑफ
0: बिल्कुल ठीक।
1: एम्प्लॉयमेंट। लेकिन ट्रांसपोर्टेशन के केस में अगर जो है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट डेथ भी होती है और गलती नहीं है डिसीज की, डिसीज ड्राइवर की, तो यू कैन सू द अदर ड्राइवर और वहां से आप मिलियंस
0: बिल्कुल
1: एंड
0: सही
1: मिलियंस ऑफ डॉलर्स की रिकवरी आप जो है वो कर
0: कर
1: सकते हैं।
0: सकते हैं। बिल्कुल
1: ये सब
0: ठीक।
1: काम करने के लिए आपने सैयद लॉ ऑफिस को कॉल करना हैगा। एक और बात जाते जाते, जो आपके प्रोग्राम में कह रहे हैं कि ऑप्शनल बेनिफिट जो 1 जुलाई से आपकी पॉलिसी में जो है ऑप्शनल बेनिफिट्स हो गए हैं, जो भी जो रिन्यू होगी पॉलिसी जुलाई 1 से, आपको ऑप्शनल बेनिफिट्स इनकम रिप्लेसमेंट जो पहले स्टैंडर्ड था वो आप बाय करें, इससे जो भी आज का प्रीमियम। आजी मेरे एक क्लाइंट से मेरी बात हो रही थी, उसने कहा मेरी पॉलिसी रिन्यू हो रही है तो मैं क्या करूं। मैंने कहा इनकम रिप्लेसमेंट जरूर बाय करो। तो उसने कहा, मैंने कहा कितने का डिफरेंस आ रहा है, कह रहा है $15 पर मंथ का डिफरेंस आ रहा है। मैंने कहा देखो अभी तुम्हारे पास ये बेनिफिट था तो तुम्हें,
0: जी
1: चूंकि वो ऑलरेडी एक्सीडेंट हुआ हुआ है, मैंने कहा कि
0: जी
1: देखो तुम्हें बेनिफिट था तो तुम्हें इनकम रिप्लेसमेंट $400 पर वीक मिल रहा है। अगर अभी
0: बिल्कुल
1: तुम्हारे
0: सही।
1: पास ये नहीं होता तो तुम्हें ये 1600, और ये बाकी से एक सीरियस केस आएगा जिसमें मल्टीपल फ्रैक्चर इन्वॉल्व है, उसमें वो काम कर
0: जी
1: ही नहीं सकता है बंदा। तो
0: बिल्कुल सही,
1: जो
0: बिल्कुल
1: है
0: ठीक।
1: वो कहने का मतलब ये हैगा कि इंश्योरेंस नाम है रिस्क कवर का। कनाडा
0: जी
1: में जितना आप रिस्क कवर को करके चलेंगे, वरना क्या होगा, कोई आपके पास डिसेबिलिटी पॉलिसी नहीं है,
0: जी
1: आपको क्या
0: जी
1: करना पड़ेगा सर्वाइव करने के लिए, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा ना। आप होम
0: बिल्कुल
1: इक्विटी
0: बिल्कुल
1: लोन लेंगे, आप जो है
0: जी हाँ
1: कर्जे लेंगे, क्रेडिट कार्ड
0: जी
1: आप पुल करेंगे अपने, उसका असर क्या होगा आपका जो है वो, शायद आप पे ना कर सकें, आपको जो है वो डिफरेंट जो है
0: जी
1: वो उसमें फाइनेंशियल डिफिकल्टीज डेवलप हो सकती हैं। लिहाजा
0: बिल्कुल ठीक।
1: आपने इनकम रिप्लेसमेंट, नॉन अर्नर बेनिफिट और उसके साथ साथ आपने फ्यूनरल बेनिफिट, डेथ बेनिफिट, ये जरूर आप ऑप्शनल बाय करें ताकि आपकी पॉलिसी कंप्लीट पॉलिसी हो और
0: बिल्कुल
1: आपको इन
0: ठीक
1: केस ऑफ
0: ठीक
1: एक्सीडेंट ये सारे बेनिफिट मिले।
0: बिल्कुल
1: कोई भी
0: सही।
1: छोटा बड़ा कार एक्सीडेंट, स्लिप एंड फॉल, ट्रिप एंड फॉल, डॉग बाइट, कॉल करें सैयद लॉ ऑफिस को, तो फैल भाई नंबर आप बताएंगे ताकि आपके लिस्ट पर हमारा नंबर नोट कर लें। थैंक यू।
0: यहां रहेगा नंबर 416-937-5046। नोट कर लीजिए नंबर, दोबारा बता रहे हैं 416-937-5046। बहुत शुक्रिया सैयद अमरजा, थैंक यू वेरी मच।
1: जी
0: और साहब बात करें आपको मिलने वाली ग्रांट के हवाले से, लोन के हवाले से, और यकीन कर लीजिए इस बात पर कि ये जेन्युइन है, ओरिजिनल है। स्किल भी मिलेगा, पैसा भी मिलेगा, लोन भी मिलेगा, ग्रांट भी मिलेगी, सुख राहत इत्मीनान की जिंदगी जिएंगे। बात करेंगे नागपाल जी से। वेलकम करते हैं सर आपको।
2: थैंक यू वेरी मच, सभी को सलाम।
0: जी मैं ये जानना चाहता हूं, एक बार नटशेल में बता दीजिए कि जिसको ये ग्रांट या लोन चाहिए उसको करना क्या है।
2: उसने हमें फोन करना है, असेसमेंट
0: जी
2: चेक करानी है, उनके पास उनकी नोटिस ऑफ असेसमेंट 2024 की टोटल इनकम लाइन 15,000 होनी चाहिए। अगर
0: जी
2: 70,000 से कम है उनकी फैमिली इनकम तो ही वो हमें कॉल करें, नहीं तो कॉल ना करें। क्योंकि तो हमें लोग कॉल करते हैं जिनकी इनकम लाख होती है, 2 लाख होती है, सर कॉल ना करें प्लीज, हम यही भी कहते हैं। इनकम जिनकी कम है, जो सेल्फ एम्प्लॉयड उबर ड्राइवर, ट्रक ड्राइवर, हाउस वाइफ है, उनको अच्छा फायदा है, बच्चे ज्यादा है अच्छा फायदा है, रिटायर्ड है कपल है अच्छा फायदा है, सिंगल है कॉल ना करें क्योंकि तो आपको एडवांटेज नहीं है, सिर्फ लोन ही आएगा आपको, दैट्स इट। तो इसलिए कॉल करें, ग्रांट लें 30 से 100,000 डॉलर की।
0: बिल्कुल ठीक। जिंदगी में पहली बार बच्चे ज्यादा होने का बेनिफिट भी मिल रहा है, देखिए नागपाल
2: बिल्कुल, ये गवर्नमेंट की
0: जी
2: फंडिंग डिपेंड करती है लिविंग एक्सपेंसेस पे, बच्चे ज्यादा,
0: जी
2: खर्चे ज्यादा, फंडिंग ज्यादा,
0: जी
2: ग्रांट ज्यादा।
0: बिल्कुल बिल्कुल ठीक। मैं ये जानना चाहता हूं कि स्टेटस क्या होना चाहिए कनाडा में ये अप्लाई करने के लिए।
2: पीआर सिटीजन प्रोटेक्टेड पर्सन हो, कहीं पे ओंटारियो में रहते हो, और लाइक आसान से फुली ऑनलाइन कोर्सेज है, असाइनमेंट्स है, एग्जामिनेशन नहीं है सर। आपको 40-50 साल की उम्र में बैक पैक टिफिन बॉक्स डाल के एक स्कूल नहीं भेज रहे, आसान से कोर्सेज है ऑनलाइन, रील की जगह क्लास अटेंड करें और फंडिंग 30 से 100,000 डायरेक्ट गवर्नमेंट से अपने खाते में ले। हम 8 साल से पता नहीं कितनों को असिस्ट कर चुके हैं, कोई कुंडी नहीं है। अभी 3 बजने वाले हैं, अभी 8 बंदों की फंडिंग उनके खाते में आज के दिन गिर चुके जिन्होंने मई और जून में बैच को ज्वाइन करा था।
0: यहाँ बहुत से लोग थोड़े से शक्को शुभों में मुबतला हो जाते हैं कि यार इतना पैसा है, $70,000-80,000 जिसमें लोन और ग्रांट दोनों शामिल हैं, तो आप क्या बताना चाहेंगे ऐसे लोगों को जो डाउट में पड़ के अपॉर्चुनिटी जाया कर देते हैं?
2: आपके स्कॉर्पियो से लोग आते हैं, अगर 10 आ रहे हैं तो 3 शक्की मिजाज के होते हैं, वो आते हैं ऑफिस में 1 महीना पहले जैसे आएंगे और फिर से आ जाएंगे। मैंने कहा सर आप क्या हुआ, हृदय परिवर्तन कैसे हो गया आपका? कहते हैं बंद होने वाला है ना। मैंने कहा पहले तो अब हृदय परिवर्तन हो गया। हाँ जी आदि हो गया तो पूरा जगह 3-4 जगह होके पहले हमारे पास आते हैं, 3-4 जगह जाते हैं, फिर से हमारे पास आते हैं। बाकी बंद ना सही से कुछ मीठी बातों में फंसाते हैं, बाद में अपनी एजेंटी मांगते हैं। हमारा साफ काम है सर, हम तो $200-500 आपसे वन टाइम लेते हैं काम होने के बाद। बाकी बंदों से करा लो काम, 3500 पहले लेंगे, 2000 पहले लेंगे, उनके पास एक दिन में आता है एक क्लाइंट, हमारे पास एक दिन में आता है 15 क्लाइंट। हमें अब हम ठगी मारने में विश्वास ही नहीं करते।
0: बिल्कुल ठीक। हम आपको बता दें कि आप नागपाल जी से इस नंबर पर कॉन्टेक्ट करें, ये जेन्युइन है, ये ओरिजिनल है, पैसा मिल जाएगा। मैं खुद ऐसे लोगों से मिला हूं जिन्हें पैसा भी मिला है, स्किल भी मिला है, तालीम भी मिली है, इल्म भी मिला है और पैसा भी मिला है, ग्रांट भी मिली है। एक बार कॉल करेंगे आप डिसअपॉइंट नहीं होंगे, दैट इज फॉर श्योर। हियर इज द नंबर टू डायल, 4372643175। अगर बच्चे ज्यादा हैं, फैमिली ऑफ 5 है या इससे ज्यादा की फैमिली है, और भी ज्यादा ग्रांट बड़ी वाली मिल सकती है, 4372643175। 437-264-3175, 437-264-3175। बहुत बहुत शुक्रिया नागपाल, थैंक यू वेरी मच।
3: और अब सुनिए वीकेंड स्पेशल लवी डवी सॉन्ग ब्रॉट टू यू बाय राइट विंडो फोर्ड्स, हाई क्वालिटी कैनेडियन मेड विद जर्मन लॉक्स एंड अमेरिकन थर्मल ग्लास, एनर्जी स्टार विंडोज एंड डोर्स। विंडोज बदलो, बिल घटाओ, बचत करके खुशियां बढ़ाओ, यानी कॉल घुमाओ 6474705909, 6474705909।

0: इट्स 247 रेडियो टोरंटो कनाडा, और इसी के साथ हमारे मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं. दोस्तों, जब हम अपने हमारा घर जहाँ पे हमारा दिल बसता है, वहाँ पे अगर विंडोज अच्छे हैं, डोर्स अच्छे हैं, इंटीरियर्स अच्छे हैं, तो हमें खुशी देते हैं. हम क्या कुछ नहीं करते अपने घर के लिए. और अगर वो घर में वो काम कराने से घर की लुक अच्छा होता है, उसी के साथ साथ अगर हमें फ़ायदा भी मिलता है, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी, हाइड्रो के बिल में फायदा मिलता है और बाकी चीजें, और ठंड से हमें बचाता है, विंड से हमें बचाता है, और कहना चाहिए और ज्यादा जो परेशानियां है उससे हमें बचाता है, तो बस और भी सोने पे सुहागा. इस कहते हैं ना, का आइसिंग ऑन द केक, चेरी ऑन द केक. तो ये सारी चीजें आपको मिलती हैं जब आप राइट नंबर घुमाते हैं, राइट इंसान से बात करते हैं, और साथ में राइट विंडो 4 से सुभानु जी से बातचीत करते हैं. 416-206-3200 बहुत जरूरी इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर करते हैं जब भी हमारे साथ जुड़ते हैं. सुभानु, गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप?
1: गुड आफ्टरनून शिवानी जी, ऑल वेल, थैंक यू. गुड आफ्टरनून टू ऑल योर लिसनर्स.
0: गुड आफ्टरनून जी. 416-206-3200 नंबर एक बार फिर से बता रही हूँ, जिससे कि आप ज्यादा से ज्यादा इसको नंबर को नोट कीजिए और इसका फायदा उठाइए. तो सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे कि आप एक हमेशा एक वर्ड यूज करते हैं सुभानु, एनर्जी स्टार विंडोज एंड डोर्स. और इस अगर एनर्जी स्टार विंडोज एंड डोर्स हैं तो फिर नॉन एनर्जी स्टार विंडोज एंड डोर्स भी होंगे. दोनों में क्या डिफरेंस है और क्यों आप एंडोर्स करते हैं कि एनर्जी स्टार विंडोज एंड डोर्स पर ही जाना चाहिए?
1: तो बेसिकली आपने बहुत अच्छी बात कही कि एनर्जी स्टार विंडोज और नॉन एनर्जी स्टार विंडोज में फर्क क्या है, कि गवर्नमेंट जो है ये जितनी भी एनर्जी स्टार प्रोडक्ट्स हैं, चाहे वो विंडो हो, रेफ्रिजरेटर हो या एसी हो, उसको गवर्नमेंट सर्टिफाई करती है, लैब में ले जाके टेस्ट करके उसके ऊपर प्रेशर टेस्टिंग होती है, ग्लास की क्वालिटी, लॉक की क्वालिटी, हर चीज चेक करके फिर उसको एनर्जी स्टार सर्टिफाई किया जाता है. तो एनर्जी स्टार का मतलब ये होता है कि अगर कोई, फॉर एग्जांपल, आपने मलेशिया से, चाइना से, कहीं से विंडो मंगाई, इट इज नॉट, इट मे नॉट बी करेक्ट फॉर कैनेडियन वेदर. तो अगर जी, अब +40 और -40 में हम डील कर रहे हैं, तो इतने एक्सट्रीम वेदर्स के अंदर आपको विंडो भी कैनेडियन वेदर के मुताबिक ही चाहिए. एनर्जी स्टार सर्टिफाइड विंडो होने का एक बहुत बड़ा फायदा है. और एक चीज मैं और ऐड करूंगा शिवानी जी, कि बहुत सारी कंपनीज हैं मार्केट के अंदर जो कह रही हैं कि जी हम एनर्जी स्टार विंडोज देते हैं और हम, आप हमसे खरीदिए. पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये, क्या जो आपको दे रहे हैं, मोस्टली क्या होता है कि इसमें डीलर्स काफी होते हैं, तो वो ना उनका ऑफिस है ना उनका कोई शोरूम होता है. आप हमारे शोरूम पे आइए, हमसे आगे मिलिए, हम आपको दिखाते हैं कि एक्चुअली टच एंड फील करके क्या विंडो होता है. अगर सिर्फ कोट पे ही करना है और आपने घर भेज देना है आगे 4 महीने 3 महीने में, देन इट इज अ डिफरेंट इशू.
0: और दूसरी चीज ये भी है ना सुभानु, की क्रेडिबिलिटी भी होती है कि अगर आप कहीं से भी ले लिया, उसके बाद कुछ प्रॉब्लम होती है, तो ये बार बार तो हम चेंज कराते नहीं है, ये एक टीडियस जॉब है, और उसके बाद कहाँ कहाँ हम ढूंढेंगे, उन्हें कभी नंबर नहीं मिलता, तो देयर इज लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स और इससे परेशानी होती है.
1: जी जी जी बिल्कुल. तो इसीलिए हमारा एक स्पेशल डिपार्टमेंट है जो सिर्फ सर्विस कॉल्स को एड्रेस करता है, और हमने एक सर्विस डेस्क बना रखा है जहाँ पे कोई भी कॉल्स आती है तो हम एड्रेस करते हैं सारी प्रॉब्लम्स को. तो ये बहुत बड़ी चीज़ है कि अगर आपके पास कोई एक जगह है जहाँ पे आप जाके आप देख सकते हैं, चीज़ को फील कर सकते हैं, बजाय कि यू नो जस्ट कोई आके आपको कोट दे जाए और उसके बाद पता ही नहीं, फोन ही नहीं उठा रहे वो विंडो लगाने के बाद. ऐसा बहुत हो रहा है हमारे कस्टमर्स के साथ, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ ये बात. और उसके बाद फिर वो 2 साल 1 साल बाद वापस आते हैं कि जी विंडोज जो लगी थी वो अच्छी क्वालिटी की नहीं थी. तो इट्स बेटर कि कॉशियस होना बेटर है. जी
0: जी बिल्कुल सही. तो इसके लिए आपको नंबर तो एक ही डायल करना होगा. इन सारे जो सवाल हैं, सारी जो बातचीत है, उसका सोल्यूशन जो है एक ही है. 416-206-3200 416-206-3200. सुभानु, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस.
1: थैंक यू शिवानी, थैंक यू सो मच.
0: थैंक यू जी.
2: अगर आप लंबे वक्त से किसी हेल्थ प्रॉब्लम से परेशान हैं और एक नेचुरल आयुर्वेदिक सोल्यूशन की तलाश में हैं, तो आइए सहज आयुर्वेदिक हर्बल कंसल्टेशन सेंटर पर. यहाँ खानदानी परंपरा के अनुसार नब्ज देखकर कई तरह की बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से किया जाता है. इलाज से बहुत सारे लोगों को राहत और फायदा मिला है, चाहे एस्मा, एलर्जी, स्किन प्रॉब्लम्स, कमर या घुटनों का दर्द, आर्थराइटिस, हेयर प्रॉब्लम्स, गैस, अल्सर, लेडीज प्रॉब्लम्स, वेट लॉस, सोराइसिस, या फिर किसी अन्य हेल्थ इश्यू की बात हो, बीमारियों का जड़ से इलाज करने में मदद मिलती है। आज ही कॉल करें वैद्य रत्न पीवी राज को, लोकेटेड इन ब्रैम्पटन, 6473278111, 6473278111।
3: लवी रवी सॉन्ग ऑफ द डे इज ब्रॉट टू यू बाय रूहानी कॉलेज। आंखों में बसा है डॉक्टर बनने का सपना या सोच रहे हैं मसाज थेरेपिस्ट का शानदार करियर हो अपना, तो बस आपको है रूहानी कॉलेज ही चुनना। बेहतरीन पढ़ाई से शानदार कमाई वाले करियर के सफर में आपका हम सफर, रूहानी कॉलेज। रूहानी कॉलेज, यहाँ सपने सच में सच होते हैं। 9057312555, 9057312555, रूहानी कॉलेज।

0: और रेडियो टोरंटो कनाडा का ये सफर चल रहा है आपके और हमारे साथ। 253 इज द टाइम। और एक शानदार कमाई से, शानदार पढ़ाई से लेकर शानदार कमाई तक का जो सफर है, और एक ऐसा सफर है जहां सपने आपके सच होते हैं। सपने तो बहुत सारे लोग देखते हैं, सच होने की उम्मीद भी करते हैं, लेकिन मायूसी होती है जब उस जगह पर जाके आपके पता चलता है कि सपने जो है शैटर्ड हो जाते हैं। लेकिन एक जगह है जहां आपको हाथों हाथ लिया जाता है, आपको प्यार किया जाता है, आपको एक से एक स्टेप बाय स्टेप एक बच्चे की तरह आपको सिखाया पढ़ाया जाता है। और उसके बाद जब आप अपने करियर की तरफ जाते हैं, आपकी खुशी, आपके घर वालों की खुशी, और इन सबसे ज्यादा खुशी उनको होती है जो आपको इस सफर की तरफ ले जाते हैं। यही खासियत है रूहानी कॉलेज और उनके ओनर ओम जी और उनकी अनु जी की। ये दोनों की हर जगह बातचीत इसलिए होती है आमिर कि जब इनके चेहरे पर खुशी ऐसी होती है जैसे खुद का बच्चा कोई करियर
1: बिल्कुल
0: लेता जाता
1: बिल्कुल
0: है ना।
1: बिल्कुल बिल्कुल। थैंक
0: तो ओम जी वेलकम करेंगे आपका, कैसे हैं आप?
2: यू सोनी जी, अमित जी, वेरी गुड। और जैसे आपने बोला कि वाकई में हमें बहुत ज्यादा खुशी होती है कि जब कोई बच्चा सक्सेस मिलती है, उनको एक लाइसेंसिंग हो जाती है। तो देखो, रिसेंटली बहुत सारे हमारे बच्चे अभी RMT बने हैं, अभी ऑस्टियोपैथ का हमारा ग्रेजुएशन होने वाला है। तो एक हमें इतनी सेटिस्फेक्शन मिलती है कि जो बच्चा हमारे यहाँ से कर गया, एक अच्छी करियर में लैंड हुआ, उसको आगे का सोचना नहीं है। जॉब पहले रेडी है, जबकि उनका ग्रेजुएशन थोड़ा हफ्ते मान लो कि बाद में होता है, तो
0: क्या
2: पहले से
0: बात
2: उनके
0: है,
2: पास में जॉब ऑफर्स होती है। तो ऐसा प्रोफेशन जिसमें कि पहले से ही आपको पता है कि मेरा जॉब जैसे ही पास होगा उसके बाद मेरा जॉब रेडी है, तब इससे बड़ी
0: वाह
2: एक सेटिस्फेक्शन क्या हो सकती है। जी
0: क्या बात है, क्या
2: जी
0: बात है। और ये बात हम कर रहे हैं अभी मसाज थेरेपिस्ट बनने का। देखिए, हम जब किसी मसाज थेरेपिस्ट के लिए अपॉइंटमेंट बुक करते हैं तो पता नहीं कितने ही हफ्तों के बाद की डेट मिलती है। साफ साफ है कि जो डिमांड है उसके कंपैरिजन में सप्लाई अच्छे मसाज थेरेपिस्ट की कम है। तो आपके इंस्टीट्यूट से निकल के जो इतने अच्छा पे स्केल उनका होता है, और उसके लिए क्या करना होगा? बहुत सारे लोग हैं जो उस करियर में जाना चाहते हैं, आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, तो क्या ये मुमकिन है कि बड़ी जल्दी ये करियर उनको मिल जाए और एक अच्छे मसाज थेरेपिस्ट वो बन जाए?
2: बिल्कुल, हमारा भी बैच चालू होने वाला है और इसमें सिर्फ 1 ईयर चाहिए, और कोई हेल्थ केयर का बैकग्राउंड नहीं भी है तो चलेगा। कभी मान लो कोई रियल्टर है, कोई फिजियोथेरेपिस्ट इंडिया में था, चाहे कोई नर्स है, कोई भी जॉब में है, IT में है, आर्ट्स है, कोई काम नहीं भी कर रहा, व्हाटएवर। और जो जिनकी जॉब चलेगी उनके लिए तो और भी एक हमारे पास अच्छा, हम उनको हेल्प करते हैं कि उनकी पूरी की पूरी ग्रांट मिल जाती है। तो ग्रांट मीन्स को पे बैक भी नहीं करना, तो पूरा फी हमें उनको
0: बिल्कुल
2: ग्रांट मिल जाती है। जी, कोई भी
1: सही।
2: कर सकता है।
1: ये नंबर मिलाएंगे आप अभी के अभी, अगर आप रजिस्टर्ड मसाज थेरेपिस्ट बनना चाहते हैं, $12,000 से $15,000 महीना राइट अवे कमाना शुरू कर देंगे। चेंज ऑफ करियर करना चाहते हैं, घर में बैठे हैं, कुछ काम करने के लिए नहीं है, 1 साल लगेगा और महीने का $12,000 से $15,000 बनना शुरू हो जाएगा राइट अवे। ये नंबर मिला है 9057312555। बात करते हैं उन लोगों की जिन्होंने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पढ़ा है और 12 साल की क्वालिफिकेशन है, तो कोई चांस है कि वो आसान तरीके से डॉक्टर बन जाए ओम जी?
2: जी बिल्कुल, 4 साल पहले बल्कि बन सकते हैं, जो कि नॉर्मल रूट में BSc करने की जरूरत होती है, जो कि नहीं करना, सिर्फ
1: अच्छा
2: 12th के बाद में 1 साल का हमारे पास में जो प्री मेडिकल प्रोग्राम वो करें, ना तो BSc करनी ना MCAT करनी है, डायरेक्ट उनका मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हो जाता है, जहां से कि 4 साल पहले वो डॉक्टर बन जाते हैं।
1: बिल्कुल ठीक। और उसके लिए क्या प्रोसेस रहता है, इन नटशेल हमें बताइए कि यहाँ पे कोई इंटरव्यू करना होगा, आपसे बात करनी
2: जी जी
1: होगी,
2: हमारे पास
1: व्हाट
2: आना
1: इज द
2: होगा एक
1: प्रोसेस
2: साल
1: लाइक?
2: का जी, 1 साल का प्रोग्राम हमारे पास में, तो उसको करने के बाद में एक प्रोग्राम करते कि उनके एडमिशन ऑलरेडी हो चुका होगा।
1: अच्छा, 1 साल यहाँ कनाडा में पढ़ेंगे और
2: जी
1: उसके बाद फिर दूसरा एडमिशन उनका हो चुका होगा। और आखिरी सवाल मैं पूछना चाहता हूँ कि ये जो डॉक्टरी करेंगे, डॉक्टर बन जाएंगे, तो ये
2: जी जी
1: डिग्री जो है डॉक्टरी की, वो कहाँ कहाँ वैलिड होगी और कहाँ कहाँ वो प्रैक्टिस कर पाएंगे उसके बाद?
2: मोस्टली हमारे US का होता है, तो अगर US का है तो ऑलमोस्ट अगर कनाडा में आना है तो भी आ सकते हैं एग्जाम दे करके, तो पूरी वर्ल्ड वाइड ही वैलिड होती है।
1: वेरी
0: क्या
1: नाइस।
0: बात है,
1: यहां से मेडिकल कीजिए, पूरी दुनिया में कहीं भी प्रैक्टिस कीजिए, अमेरिका, कनाडा, यूरोप, कहीं भी, ये नंबर मिलाएंगे आप 9057312555। 2555 905 731 25 55। बहुत बहुत शुक्रिया ओम जी आपके टाइम
0: थैंक
1: के
0: यू
1: लिए।
0: ओम जी, प्लेजर हैविंग यू
2: थैंक
0: विद
2: यू
0: अस।
2: थैंक यू थैंक
0: थैंक यू जी।
2: यू।
0: और इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़े रहने के लिए। मंडे को फिर आपसे मुलाकात होगी और आपसे जुड़ेंगे आमिर और मैं शिवानी। अब हमें जी इजाजत, हैव अ नाइस वीकेंड, नमस्कार।
1: अपना ध्यान रखिए और इस ख्याल के साथ इख्तिताम करते हैं कि हमेशा हाई स्पिरिट्स में रहिए, हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ, पॉजिटिव अप्रोच के साथ, मुस्बत रवैये के साथ, मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ जिंदगी का सामना कीजिए। याद रखिए, अगर आप कमजोर पड़ जाएंगे, नातवां हो जाएंगे, रवैये को नेगेटिव कर लेंगे, होगा वही जो होना है, लेकिन आप अपना नुकसान जरूर कर बैठेंगे। अपना ध्यान रखिए। रेडियो टोरंटो कनाडा के स्टूडियो 2 से, ब्रैम्पटन ऑफिस से, शिवानी और आमिर को इजाजत दीजिए। हैव अ वंडरफुल रेस्ट ऑफ द डे अहेड, एंड हे यू, आई लव यू।

0: आज है फ्राइडे, अपने आप को छोटी सी हाई फाई जरूर दीजिए क्योंकि आपने एक और हफ्ता पूरे हौसले के साथ पूरा किया है। आज का पॉजिटिव विचार कहता है, सफल इंसान वो नहीं जो कभी थकता नहीं है, सफल वो है जो हर बार थककर भी फिर से उठकर खड़ा हो जाता है। दोस्तों, मंजिलों का इंतजार क्यों करें, सफर का भी अपना मजा होता है। जो हर दिन मुस्कुरा कर जी ले वो ही जिंदगी का असली बादशाह होता है। तो अगर आप जिंदगी खुली बाहों के साथ जीने के लिए तैयार हैं तो आप सवार हो जाइए मस्ती की रेलगाड़ी पर। 4 बजे तक चलेगा प्यारा सा सफर, बहुत सारे एंटरटेनमेंट और बहुत सारी इंफॉर्मेशन के साथ। डायरेक्ट नंबर टू रीच अस ड्यूरिंग और आफ्टर द शो 416-569-7812, 416-569-7812। शुरुआत करते हैं आज की ताजा लोकल खबरों के साथ, स्टे ट्यून्ड।
1: शॉन एक्सप्रेस न्यूज बुलेटिन ब्रॉट टू यू बाय शॉन मीडिया।
2: सबसे पहले नजर डालते हैं एयर क्वालिटी अपडेट की तरफ। टोरंटो लगातार तीसरे दिन एयर क्वालिटी वार्निंग ऑरेंज अलर्ट के तहत है। वाइल्ड फायर स्मोक की वजह से शहर की हवा अभी भी काफी खराब बनी हुई है। हालांकि आज दोपहर कुछ घंटों के लिए धुआं थोड़ा कम हुआ, लेकिन आज शाम तक एयर क्वालिटी फिर से खराब होने की संभावना है। खराब हवा के चलते सिटी ऑफ टोरंटो ने लगातार दूसरे दिन भी कई आउटडोर पूल्स बंद रखे हैं और कई आउटडोर रिक्रिएशन प्रोग्राम्स में बदलाव किया गया है। हेल्थ एक्सपर्ट्स लोगों से अपील कर रहे हैं कि खासकर बच्चे, बुजुर्ग या सांस या दिल की बीमारी से जूझ रहे लोग जितना हो सके घर के अंदर रहें और आउटडोर एक्टिविटीज से बचें। स्कार्बरो में आज सुबह कई गाड़ियों की टक्कर के बाद इमरजेंसी क्रूज मौके पर पहुंची। यह हादसा हाईवे 2A और मीडोवेल रोड के पास पोर्ट यूनियन इलाके में हुआ है। पुलिस फिलहाल पूरे मामले की जांच कर रही है। चलेंगे नायग्रा फॉल्स, जहां कल रात हुई शूटिंग अब होमिसाइड इन्वेस्टिगेशन बन चुकी है। दो संदिग्ध थोरॉल्ड रोड, स्टोन रोड और डॉरचेस्टर रोड के पास एक घर पहुंचे और एक व्यक्ति पर गोली चला दी। घायल व्यक्ति को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस दोनों सस्पेक्ट्स की तलाश में जुटी है और लोगों से किसी भी जानकारी के साथ आगे आने की अपील कर रही है। ऑन्टारियो के टूरिज्म, कल्चर और गेमिंग मिनिस्टर स्टैन शो ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने माना कि टोरंटो में होटल अकोमोडेशन एक्सपेंसेस क्लेम करना एक गलती थी। हाल ही में कई जीटीए के प्रोग्रेसिव कंजर्वेटिव एमपीपीज द्वारा टैक्सपेयर्स फंडेड होटल क्लेम्स सामने आने के बाद ये विवाद बढ़ा था। अब ऑन्टारियो सरकार इस पुराने एक्सपेंस रूल को पूरी तरह खत्म करने जा रही है। स्टोनी क्रीक में वेंसडे को मिला शव अब ब्रैम्पटन के 29 साल के तरनप्रीत सिंह सिद्धू का बताया जा रहा है। सिद्धू ब्रैम्पटन और हैलिफैक्स दोनों जगह रहते थे और ट्रक ड्राइवर के तौर पर काम कर रहे थे। हैमिल्टन पुलिस ने उनकी मौत को होमिसाइड घोषित कर दिया और मामले की तेज जांच कर ली गई है। अंत में वेदर अपडेट। आज भी एयर क्वालिटी वार्निंग ऑरेंज अलर्ट जारी है, हाई ऑफ 27 डिग्रीज। आपको महसूस हो सकता है ह्यूमिडेक्स 32 डिग्री सेंटीग्रेड के साथ और आज का ओवरनाइट लो जा सकता है 22 डिग्री सेंटीग्रेड। धुएं की वजह से अगर बाहर जाना जरूरी ना हो तो इंडोर रहना बेहतर रहेगा और मास्क पहनने की भी सलाह दी जा रही है। अब तक की खबरों में इतना ही। सुनते रहिए शॉन एक्सप्रेस, मस्ती की रेलगाड़ी, शाम के 4 बजे तक। गुड आफ्टरनून
1: Dear sponsors, for fast, effective and result-oriented ride, get on board Shaun Express. For info, call 416-569-7812, 416-569-7812 or email info@shaunmedia.com, shonmedia.com.

0: टाइम।
1: जी हाँ, विन लाइफ टाइम के सॉफ्टवेयर के जरिए आप दुनिया में कहीं से भी जितना चाहो पैसा बना सकते हो। एवरी सैटरडे 1 PM इनका सेमिनार अटेंड तो करें, इट कैन चेंज योर लाइफ। कॉल 9052061008, दैट इज 9052061008, और विजिट winlifetime.com। विन लाइफ टाइम।
2: जी दोस्तों, एक ह्यूमन टेंडेंसी होती है किसी चीज के बारे में बार बार जब हम सुनते हैं तो हमारा दिल करता है कि हाँ, शायद ये चीज हमारे लिए बनी हुई है, और एक्शन लेने में हम जरा देरी करते हैं, लेकिन जब लास्ट डे आता है बिफोर द बिग अपॉर्चुनिटी, तब हम सभी एक्शन लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो आज वो दिन है दोस्तों, अब तक तो आपने सुना, लेकिन आज करने का दिन है, आज एक्शन लेने का दिन है, क्योंकि कल बहुत बड़ा एक फ्री सेमिनार है जिसका हिस्सा आपको बनना है, और ये सेमिनार आप तक प्रेजेंट कर रहे हैं विन लाइफ टाइम, यानी जीतो जिंदगी भर। जॉइनिंग अस नाउ ऑन एयर इज राफी जी, रेनाउंड ट्रेडर एंड ट्रेनर। राफी जी, गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप?
3: ठीक ठाक जी, गुड आफ्टरनून टू यू एंड योर लिसनर्स।
2: बहुत बहुत शुक्रिया राफी जी फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। और यू नो, एक कलर्स की बड़ी अहमियत है, सुना है विन लाइफ टाइम के सॉफ्टवेयर में, कभी लाल तो कभी हरा, कभी उतार तो कभी चढ़ाव जिंदगी में, लेकिन ये सॉफ्टवेयर है उससे लोग जो है हरा रंग जरा ज्यादा पसंद करते हैं देखना। तो कैसा रहा इस हफ्ते का परफॉर्मेंस आपके स्टूडेंट्स का?
3: जी एब्सोल्युटली, सारी की सारी हमारी ट्रांसपेरेंट होती हैं स्ट्रीम। आप जाके पुराने पिछले 3 सालों की स्ट्रीम जब से हमने सोशल मीडिया शुरू किया है देख सकते हैं, तो आज भी बहुत जिस तरह की हमारे सॉफ्टवेयर ने प्रेडिक्शन दी उसी से सारा काम चला। तो वंस अगेन इट्स हैज बीन, ऑफ कोर्स हमारा क्लेम ये है कि हम 100% नहीं है, बट 87% हमारी प्रेडिक्शन बिल्कुल ठीक होती है।
2: Wonderful. That's a very honest opinion. 87%, which is very, very high, I would say. और जिन लोगों ने कभी ट्रेडिंग नहीं की राफी जी, क्या आपको लगता है कि उनको पिकअप करने में आसानी होती है?
3: अगर आप इंस्ट्रक्शन सुन सकते हैं हिंदी में, उर्दू में, पंजाबी में, इंग्लिश में, तो आपने सिर्फ 2 बटन देखने हैं, एक बाय का, एक सेल का, बाकी सारा काम हमारे सॉफ्टवेयर का है।
2: ओके, वंडरफुल। और राफी जी, इसके अलावा जो लाइव ट्रेनर्स होते हैं आपके साथ, लोगों के साथ जो मेंटर्स रहते हैं फ्लोर पर रोजाना, उनसे भी लोगों को बड़ी मदद मिलती है, और यू नो, गलती करने से अक्सर लोग बच जाते हैं।
3: जी एब्सोल्युटली, मोस्ट ट्रेडर्स लूज मनी बिकॉज अकेले ट्रेड कर रहे होते हैं, अकेले एनालिसिस कर रहे होते हैं, तो इसलिए हमने मेंटर सामने बिठाए होते हैं, और उनका आपके पास नंबर होता है, आपकी उनकी कम्युनिकेशन चल रही होती है, ऑडियो वीडियो ट्रांसमिट हो रही होती है, तो यू आर नेवर अलोन। और मेरी जिस तरह पर्सनल भी मैं करता हूँ, मेरी जूम की स्क्रीन आपके टीवी तक, आपके फोन तक पहुँच रही होती है, आपके कंप्यूटर तक, तो जो मैं एक्शन कर रहा होता हूँ वो सारे का सारा आपको नजर आ रहा होता है।
2: जी, अब राफी जी बताएं, इसमें रोजाना हमें कितना वक्त देना पड़ता है, और अगर कुछ लोगों की टूरिंग जॉब होती है, एक जगह नहीं रहते, अलग अलग जगह से काम करते हैं, तो कैन दे कनेक्ट विद यू लाइक फ्रॉम एनीवेयर?
3: एनीवेयर इन द वर्ल्ड, इंटरनेट चाहिए आपको, दैट्स इट, और लैपटॉप, नथिंग एल्स। उसके बाद मार्केट 23 आवर्स डे को लिए, कुछ लोग मॉर्निंग में नहीं कर सकते, इवनिंग में कर सकते हैं, मंडे टू फ्राइडे आपको नो मोर देन कपल ऑफ आवर्स अ डे में काम होता है। बहुत सारे लोग हमारे लॉजिस्टिक्स में हैं, रियल स्टेट में हैं, पार्ट टाइम शुरू करते हैं, और जब इनफ इनकम आ जाए तो वो अपने को फुल टाइम ले आते हैं इसमें।
2: वंडरफुल। अब कल का सेमिनार बड़ा इंपॉर्टेंट है राफी जी, बताएं कि क्या डिटेल्स हैं, कहां पर हमारे लिसनर्स आ सकते हैं, और कितनी देर का रहेगा सेमिनार?
3: 1 PM दोनों लोकेशंस पे है, मैं खुद भी सेमिनार करूंगा, आप आए, आप आके जो भी क्वेश्चंस हैं, हमारे रिजल्ट्स हैं, हमारी इंफॉर्मेशन सेशन सारा कुछ ले सकते हैं। 1 PM मिसिसागा 9052061008 आप कॉल कर सकते हैं, या winlifetime.com पे चले जाएं तो सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाती है हर सैटरडे 1 PM।
2: जी वंडरफुल, सो बिल्कुल फ्री सेमिनार है, नो ऑब्लिगेशन है, इस नंबर को डायल करें और अपनी सीट बुक करें फॉर टुमारोज 1 PM सेमिनार इन द हार्ट ऑफ मिसिसागा, 9052061008, दैट्स 9052061008, या विजिट करें winlifetime.com। राफी जी, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट वीकेंड, टेक केयर।
3: थैंक यू, टेक केयर।
2: थैंक यू मसल।
4: पुराना गाना बनाए दीवाना, शोर एक्सप्रेस पर खोले यादों का पिटारा।
2: ये सेगमेंट आप तक पहुंचा रहे हैं यश विंडोज एंड डोर्स,
0: दोस्तों अगर आप ढूंढ रहे हैं वर्ल्ड क्लास क्वालिटी के विंडोज एंड डोर्स रीजनेबल प्राइस में, तो यश विंडोज एंड डोर्स सर्विसेज देते हैं ऑल ओवर ऑन्टारियो। खुद ही विंडोज एंड डोर्स मैन्युफैक्चर करते हैं और उनकी एक्सपर्ट इंस्टॉलर टीम ही प्रोफेशनली इंस्टॉल करती है। नो मिडलमैन, नो कॉम्प्रोमाइज, सीधे फैक्ट्री से आपकी प्रॉपर्टी तक। स्टाइल, लुक्स, क्वालिटी, सिक्योरिटी, ड्यूरेबिलिटी, एनर्जी एफिशिएंसी, सब कुछ माइंड ब्लोइंग। स्टाइल, सेफ्टी, सेविंग एक साथ। और अब सुनिए बड़ी खबर, फ्रेंचाइज ऑप्शन भी अवेलेबल है। अगर आप बिजनेस अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं, ज्वाइन द ग्रोइंग टीम ऑफ यश विंडोज एंड डोर्स 416-732-3600। दैट्स 416-732-3600।

0: drive with Sean Express. Masti ki rail gaadi. Apne business ko dijiye express speed. For advertising, call 416-569-7812. 416-569-7812.
1: You work hard, manage to make both ends meet. Right combinations do miracles. If tax and accounting is your need, think Rajiv Madan. Depth of experience, passion for accounting. Tajurba wahi jo kaam aaye, aapko fayda pahunchaye. Certified General Accountant, Rajiv Madan. Tax accounting ke sabhi pehluon par paini nazar. Farq aazmane pe pata chalega. Call CGA Rajiv Madan, 905-362-2200.
0: 2970 Drew Road, Suite 214B, Mississauga.
1: CGA Rajiv Madan. Thoughts become things.
2: Hashtag Homes and Rahul Kashyap aapke liye lekar aaye hain Brampton and Caledon border par at Mayfield and Gore, freehold towns from mid 700s, semis from mid 800s and detached homes from mid 900s. Master plan community of 2500 homes with cricket pitch, tennis, basketball and pickleball courts, dog park and kids splash pads as neighborhood amenities. Only 10% deposit over 365 days and closing later 2027 to early 2028. To book your lots, call Rahul Kashyap 647-993-4844. 647-993-4844. ध्यान से सुनिए, आपके लिए एक अच्छी खबर है. गवर्नमेंट आपको स्टडी करने के लिए फंडिंग प्रोवाइड कर रही है जो ग्रांट और लोन के कॉम्बिनेशन में मिलेगी. अगर आप पीआर या कनेडियन सिटीजन हैं, आपकी मिनिमम एजुकेशन ग्रेड 12 है, नो बैंक्रप्सी और क्रिमिनल रिकॉर्ड है तो आप एलिजिबल हो सकते हैं. नो क्रेडिट चेक. अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंगली आप ऑनलाइन स्टडी भी कर सकते हैं. ग्रांट और लोन का कॉम्बिनेशन 31 जुलाई तक अवेलेबल है. देर ना करें, आज ही कॉल करें 416-315-2020. That's 416-315-2020.
3: भाई मैंनू कहना भी पैना ते तुहानू सुनना भी पैना. डिजाइनर फ्रेम ते ब्रांडेड सनग्लासेस दे बथेरे स्टोर देखे, पर जिन्नी वैरायटी कांडा ऑप्टिकल दे कोल है ओदा ता जवाब है नहीं. सोने फेस वाली है, उच्ची हील वाली है, गुच्ची वाला सच पावे दिल ते थवारी है. फॉर अमेजिंग डिजाइनर फ्रेम्स एंड डिजाइनर सनग्लासेस विजिट kandaoptical.com और कॉल 416-922-5263. कांडा ऑप्टिकल, द नेम यू कैन ट्रस्ट.
2: अगर आप लंबे वक्त से किसी हेल्थ प्रॉब्लम से परेशान हैं और एक नेचुरल आयुर्वेदिक सॉल्यूशन की तलाश में हैं, तो आइए सहज आयुर्वेदिक हर्बल कंसल्टेशन सेंटर पर. यहाँ खानदानी परंपरा के अनुसार नब्ज देखकर कई तरह की बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से किया जाता है. इलाज से बहुत सारे लोगों को राहत और फायदा मिला है. चाहे एस्मा, एलर्जी, स्किन प्रॉब्लम्स, कमर या घुटनों का दर्द, आर्थराइटिस, हेयर प्रॉब्लम्स, गैस, अल्सर, लेडीज प्रॉब्लम्स, वेट लॉस, सोराइसिस या फिर किसी अन्य हेल्थ इश्यू की बात हो, बीमारियों का जड़ से इलाज करने में मदद मिलती है. आज ही कॉल करें वैद्य रत्न पीवी राज को, लोकेटेड इन ब्रैम्पटन, 647-327-8111, 647-327-8111.
4: वीरे वधिया फर्नीचर ली किथे जावा?
5: भाई चार लोकेशन तो देन सेवावा, बस ऐसे करके ही मैं ता मिड्डा फर्नीचर ते ही जावा.
6: लेटेस्ट डिजाइन एंड हाई एंड फर्नीचर विद बेस्ट सर्विसेज, मार्केट डे प्राइस नालो 10-30% सस्ती प्राइस दा दावा कर देने.
5: मिड्डा फर्नीचर आओ, घर दफ्तर नु सजाओ. ब्रैम्पटन, स्कारब्रो, मिसिसागा ते कैम्ब्रिज लोकेशन ते आओ ता सही,
6: आजमाओ ता सही, अपना बनाओ ता सही. मिड्डा फर्नीचर, कॉल करो 416-901-2810, 416-901-2810. 10 मिड्डा फर्नीचर.
2: जी दोस्तों, मिड्डा फर्नीचर गैलरी बड़ी इंपॉर्टेंट, आज कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट हो गई है. क्यों? क्योंकि आज है नेशनल लॉटरी डे. अगर दोस्तों हमारी करोड़ों की लॉटरी लग जाए तो सबसे पहले क्या करेंगे आप? कोई दुनिया घूमेगा, कोई नया घर खरीदेगा, कोई लग्जरी कार लेगा. लेकिन मैं तो यहाँ पर यह कहूंगी कि जिंदगी की सबसे बड़ी लॉटरी सिर्फ पैसा नहीं है, बल्कि अच्छी हेल्थ, अच्छा परिवार और अच्छे दोस्त हैं. और अच्छे दोस्तों में, अच्छे परिवारों में शामिल है मिड्डा फर्नीचर गैलरी, हु इज ऑलवेज रेडी टू पैम्पर यू विद वंडरफुल वंडरफुल डील्स एंड लॉट्स ऑफ अफेक्शन. हमारे साथ पवन मिड्डा जी जुड़ने जा रहे हैं. पवन जी, गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप?
7: गुड आफ्टरनून जी, और रेडियो सुनने वाले सभी बहन भाइयों को भी मेरी गुड आफ्टरनून, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल. मिड्डा फर्नीचर हाजिर है आपकी सेवा में, पांच लोकेशन से आपकी सेवा करते हैं, ब्रैम्पटन से, मिसिसागा से, स्कारब्रो से, कैम्ब्रिज से और लंदन से। आपके लिए घर में मिड टू हाई एंड फर्नीचर पहुंचाते हैं, बचत भी उसी में ही है और मिटा फर्नीचर जाना जाता है, हमें वॉल्यूम डिस्काउंट मिलता है, डायरेक्ट कंटेनर बाइंग है बजाय लोकल होलसेलर से लेने के, या एक एक आइटम लेने से हम बल्क बाइंग करते हैं, उसकी वजह से हमें 10% तो हमें वॉल्यूम डिस्काउंट मिलता है और कंटेनर आइटम में 30% तक सस्ते हैं। पहला स्टोर है, आई थिंक, मैं तो ऐसे ही मान रहा हूँ क्योंकि हम भी दूसरों की जो एड और सुनते देखते हैं, वी आर अवेयर एंड केयर ऑफ कॉम्पिटिशन प्रोफेशनली कहें, वहां पे मॉडल नंबर नहीं बोला जाता, वहां पे बोला जाता है 6000 वाले को 600 कर दिया, 8000 वाले को आज कर दिया, लिक्विडेशन कर दी, मतलब मैं माफी मांगते हुए बोल रहा हूँ, लेकिन अपना तरीका बता रहे हैं। तो कल से हमने एक नायाब तरीका ढूंढा आपके लिए, क्योंकि खुद शालिनी जी कंफ्यूज हैं कि आज किस किस मॉडल की एडवर्टीज करें। हमने मॉडमैक्स की ऐड करी, कल आपको बी जो 680 का बेड की ऐड करी, तो आज मैं आपको अपने बहन भाइयों को कहते हैं ना कह रहा हूं कि जो आप ढूंढ रहे हैं, क्योंकि हर बहन भाई की मैं समझा कि हर बहन की जरूरत हो सकती है, हो सकता है आप वो 299 वाला ढूंढ रहे हैं और हो सकता है आप वो 10000 वाला ढूंढ रहे हो। 97% देखो रेडियो पे डिस्क्लेमर दे रहे हैं, 3% आइटम ऐसी होती हैं कि जो बड़े स्टोरों के पास, हमारे पास भी कुछ एक आइटम होंगी, हमारे से आप पिक्चर खींच ले जो हमारे पास ही होगी, किसी के पास
8: राइट
7: सही लेकिन बात है। 97% तो फर्नीचर की आइटम है ना जो आप ढूंढ रहे हैं। तो जो हम बार बार कहते हैं कि हम सस्ते हैं, आप हमें अजमाएं कि सस्ते हैं, 10% तो बिना सोचे समझे ही अपने आप ही कम कर लें। पहले नंबर आप कंपेयर करें, आप 10 स्टोरों की कोई एडवर्टीज चेक करें जो लोएस्ट प्राइस आपको मिली हुई है, उसके बाद हम 10% सस्ते हैं। ऐसे ना सोच लें कि हम वो बोल नहीं रहे, हम लिक्विडेशन नहीं बोल रहे, हम बिलियन डॉलर की सेल इन्वेंट्री नहीं क्लियर कर रहे, लेकिन हमारी प्राइस सस्ती है और वजह बता रहे हैं कि हम वो कंटेनर बाइंग ना करें तो फिर सस्ते नहीं हो सकते, फिर हम भी वैसे बोलते, फिर हो सकता है 1% 2% किसी के $2 लीगली, तो वो भी है ना 499 वाला 498 हो गया तो हमने बीट कर दी, नहीं, हम 10% हमारी मिनिमम आपको कम देंगे और 10 से 30 वाली जो है वो हमारी कंटेनर बाइंग में होगी तो वो भी आपको कम करके देंगे। हम आपका प्यार चाहते हैं, आपका वैल्यूएबल बिजनेस चाहते हैं, आप बड़ों का आशीर्वाद चाहते हैं, बच्चों का, मतलब मैं तो कहता हूँ ना रिश्ता है, जब आपसे बहन भाई वाला रिश्ता है तो बच्चों का मामा ताया चाचा वो वाला रिश्ते से प्यार कर रहे, हमें प्यार मिल रहा है तो बजाय वो शोर मचाने के हमें वो प्यार जब मिल रहा है तो तभी ये ताकत मिल रही है कि हमें जो आप ढूंढ रहे हैं हमें आए अजमाए और आपके हाथ पर कंपेयर कर। वैसे आज एक कस्टमर भी, मैंने भी कुछ लेना हो अगर फर्नीचर को छोड़ तो कंपेयर तो करेंगे ना अपना, मतलब कंपेयर भी करेंगे, क्वालिटी भी चेक करेंगे और बड़ा इजी है आजकल तो पिक्चर डाल के भी कंपेयर हो सकता है। कुछ कस्टम मेड बनाना चाहते हो, एशले का हाई एंड लेना चाहते हो, या कोई डिजाइनर फर्नीचर बनाना चाहते हो, या वो मैंने प्राइस रेंज वाला भी कुछ चाहते हो तो आप आए, जब आपको डिफरेंस बताया जाएगा कि एक बेड 399 का क्यों है, उसी जैसा सिमिलर बेड 599 का क्यों है, फर्क है कंस्ट्रक्शन में, फर्क है हार्डवेयर में, फर्क है मटेरियल में, फर्क है पिक्चर, हो सकता है दोनों की सेम हो, कलर दोनों का सेम हो, तो हम चाहते हैं जब बहन भाई है फिर पर्दा खाएगा, बिल्कुल दो पैसे कमा के देते हैं और वो आपके मतलब रीजनेबल मार्जिन हर दुकानदार कमा के देता है, तो आप आए हमें सेवा का मौका देके देखें। हमें मिड्डा फर्नीचर पांच लोकेशन से आपकी सेवा करते हैं, ब्रैम्पटन, मिसिसागा, स्कारबरो, कैम्ब्रिज और लंदन। एक ही फोन नंबर से आप कॉल कर सकते हैं 416-901-2810 थैंक यू वेरी मच जी।
8: बहुत बहुत शुक्रिया पवन जी हमसे जुड़ने के लिए, फिर आपसे जुड़ेंगे बहुत जल्द विद मोर एंड मोर डील्स एंड ऑफर्स। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।
7: थैंक यू जी
8: जी। और दोस्तों अपने घरों का हम रुख करते हैं, कहते हैं कि दुनिया की सबसे खूबसूरत जगह कोई होटल, कोई रिजॉर्ट, कोई महल नहीं है बल्कि अपना घर होता है, और घर सिर्फ चार दीवारों का नाम नहीं है, ये हमारी यादों का खजाना है, बच्चों की हंसी है, अपनों की मुस्कान है, सुकून का दूसरा नाम है। अब सुकून की तो बात कर ली आपने, लेकिन जरा सोचिए कि अगर उसी घर में सर्दियों में ठंडी हवा आने लगे, गर्मियों में एसी पूरी मेहनत करे लेकिन कमरा ठंडा ना हो, हर महीने हाइड्रो बिल देखकर आपका माथा ठनक जाए, तो समझ लीजिए कि वक्त आ गया है अपने घर को थोड़ा बेहतर बनाने का। और इसी मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं, इन स्टूडियो हमारे साथ मौजूद हैं यश विंडोज एंड डोर्स से, धर्म जी जो जीटीए के हजारों लाखों लोगों के घरों को एक सही मायने में घर बना रहे हैं, और ज्यादा ब्यूटीफुल और ज्यादा एनर्जी एफिशिएंट और ज्यादा सिक्योर्ड। धर्म जी आपका वेलकम है, हाउ आर यू?
9: फैंटास्टिक, मैं आपको और सारा श्रोताओं को नमस्कार करता हूँ।
8: थैंक यू वेरी मच हमसे जुड़ने के लिए धर्म जी. और बहुत सारे हमारे लिसनर्स सोचते हैं कि विंडोज तो बस विंडोज ही होती हैं, दरवाजे तो बस दरवाजे होते हैं, लेकिन एक अच्छी क्वालिटी की विंडोज एंड डोर घर की कंफर्ट, टेम्परेचर, वैल्यू में कितना बड़ा फर्क ला सकती है. मैं चाहूंगी आप थोड़ा इस बारे में बताएं हमें.
9: सेमी डिटेच घर या टाउन होम हो या बड़ा घर हो, आपका 30-40% विंडो एंड डोर ही आपके दीवार में कवर अप करते हैं. तो ये अगर ठीक ठाक नहीं है, अगर आपकी विंडो की फ्रेम सही नहीं है, ग्लास सही नहीं है, आपके मल्टीपॉन लॉक सिस्टम सही नहीं है, तो आपकी पूरे घर की 30-40% जो चीज जो आप डे टू डे यूज करें, जिसकी इम्पैक्ट विंटर में सबसे ज्यादा आती है, वो आपको इफेक्ट करती है. यस विंडो सेंडोर 2012 से विंडो डोर की मैन्युफैक्चरिंग करती है. अक्रॉस ऑन्टारियो हमारी 2 फैक्टरियां और 34 इंस्टॉलर्स अक्रॉस ऑन्टारियो में हम विंडो डोर जो बनाते हैं हमारे लोग इंस्टॉल करते हैं.
8: अब क्या बात है,
9: यस विंडो दूसरे से फर्क क्या है? यस फर्स्ट ऑफ ऑल ये फैमिली ओन कंपनी है. हम लोग

0: आंखों से देखा है जब मैंने आपकी फैक्ट्री को विजिट किया, और शायद उससे पहले मुझे नहीं पता था कि इतनी तमाम तरह की विंडोज एंड डोर्स मौजूद हैं, और जो आपने लोग अपग्रेड एक्स्ट्रा पैसे देकर लेते हैं वो आपके तरफ से बाय डिफॉल्ट लोगों को मिलता है. तो व्हाट अ वंडरफुल आइडिया. दोस्तों यहाँ पर आप नंबर जरूर लिख लें एक बार, यश विंडोज एंड डोर्स का जो डायरेक्ट नंबर है जिस पर आपसे रब्ता कायम हो सकता है, 416-732-3600, 416-732-3600. धर्म जी हमारे साथ जुड़े हैं जो करता धरता है यश विंडोज एंड डोर्स के. अब धर्म जी, आजकल बड़ी सारी चोरी और ब्रेक-इन्स की खबरें सुनने को मिल रही हैं, तो मैं चाहूंगी बताएं कि आपकी विंडोज एंड डोर्स जो होते हैं उसमें कौन कौन सी ऐसी सिक्योरिटी फीचर्स आते हैं जो पुराने सिस्टम में नहीं होते.
1: सबसे बड़ा तो मल्टीपॉइंट लॉक सिस्टम है। मल्टीपॉइंट लॉक
0: अच्छा
1: सिस्टम एक ऐसी चीज है कि जो खुलता है बंद करता है विंडो को।
0: अच्छा
1: तो सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट चीज ये है कि ये इजीली खुलता है, इजीली बंद कर पाते हैं। अगर सिक्योरिटी सिस्टम की बात करें तो हमें R&D में चल रहे हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। तो हमारी एक फिल्म डेवलप कर रहे हैं जो किसी से कंपनी से हम डायरेक्टली बाय करने वाले हैं, वो
0: अच्छा
1: ग्लास में बिल्ट इन होके ही आएगी।
0: अरे वाह, क्या बात
1: वो
0: है,
1: ग्लास
0: दैट्स
1: के ऊपर अब
0: अमेजिंग.
1: लगा के ही दे देंगे, लगा के ही दे देंगे वो। अब तो 10 दिन 15 दिन में ये बात खत्म हो जाएगी। हम थोड़ा और करेक्शन चाहते हैं। वो करेक्शन के बाद वो फिल्म
0: क्या
1: ऐसे
0: बात
1: लग
0: है,
1: जाएगी कि अगर ग्लास बाहर से कोई तोड़ना चाहे तो ग्लास तो टूटेगा लेकिन अंदर घुस नहीं पाएगा बिकॉज ऑफ दैट फिल्म।
0: ओह दैट्स अमेजिंग, वाओ वंडरफुल. और सबसे बड़ा प्रैक्टिकल सवाल ये है धर्म जी कि अगर किसी का बजट लिमिटेड हो तो क्या पूरा घर एक साथ करवाना जरूरी है कि स्टेप बाय स्टेप भी लोग विंडोज एंड डोर्स रिप्लेस करा सकते हैं.
1: विंडो डोर में सबसे विंडो डोर अगर पेटियो डोर सब बदलवाना चाहते हो तो मेरी एडवाइस होती है कि विंडो पहले करवा दो,
0: अच्छा
1: उसके बाद डोर करवाओ, इसके बाद पेटियो डोर करवाओ।
0: वंडरफुल, क्या बात है.
1: लेकिन
0: और
1: विंडो, हाँ जी,
0: जी नहीं नहीं आप कंटिन्यू करें.
1: विंडो में अगर आप आधी विंडो करवाते हो और आधी अभी नहीं करवाते हो तो एनर्जी एफिशिएंस में इतनी इम्पैक्ट नहीं आती।
0: ओके इंटरेस्टिंग. और हमारे तमाम लिसनर्स जो बिजनेस ओनर्स हैं वो अगर आपका साथ जुड़ना चाहें एक ग्रोइंग टीम के साथ, तो किस तरह के फ्रेंचाइज ऑप्शंस अवेलेबल हैं.
1: फ्रेंचाइज ऑप्शन में ये है कि विंडो में विंडो की मेजरमेंट, सेल्स, इंस्टॉलेशन एंड गार्बेज डिस्पोजेबल एंड सबसे बड़ी सेल्स सर्विस, आफ्टर सेल्स सर्विस। आपके केस में आपके पास खाली सेल्स सेल्स एंड सेल्स ही आएगा, बाकी का सारा काम मेजरमेंट, इंस्टॉलेशन, गार्बेज डिस्पोजेबल एंड लास्ट में सेल्स एंड सर्विस हम लोग ही प्रोवाइड करने वाले हैं। तो आपके
0: ओ
1: केस
0: वाह,
1: में सेल्स सेल्स एंड सेल्स, आपके शोरूम में बैठ के आराम से सेल्स करो, हमारी जो जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है उसको अटेंड करो और सीखते जाओ सीखते जाओ सीखते जाओ। विंडो डोर एक ऐसा सेगमेंट है जिसमें कभी रिसेशन नहीं आई है, नंबर वन। नंबर टू, ये सेगमेंट ऐसा है कि कंसिस्टेंट ग्रो करता है। जैसे जैसे आप उस टाउन में लंबे अरसे से जुड़े रहते हो आपकी सेल्स बढ़ती जाती है बढ़ती जाती है बढ़ती जाती है।
0: वंडरफुल. तो भाई आप नहीं चाहेंगे इतनी ग्रोथ हो आपकी जिंदगी में, तो कॉल कीजिए इस नंबर पर 416-732-3600 टू गेट द विंडोज एंड डोर्स इंस्टॉल्ड इन योर होम और टू गेट द फ्रेंचाइज ऑप्शन. 416-732-3600 यश विंडोज एंड डोर्स. धर्म जी थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट वीकेंड, ऑल द
1: यू
0: बेस्ट.
1: टू मैम, थैंक यू थैंक यू
0: ठीक
1: थैंक यू।
0: है, ओके जी, बाय बाय. जी दोस्तों, इट्स 3:31, मस्ती की रेलगाड़ी पर आप लोगों का स्वागत है. और अब खोलते हैं बॉलीवुड का पन्ना, और कौन सी कलाकार हैं जो आज अपना बर्थडे मना रही हैं. और आपको बता दें कि कुछ एक्ट्रेसेस ऐसी होती हैं जो ग्लैमर से नहीं बल्कि अपनी नेचुरल एक्टिंग और सिंप्लिसिटी से दिल जीत लेती हैं. हम बात कर रहे हैं बेहद सादगी और शानदार अभिनय की मिसाल जरीना बहाव की. और इन्होंने फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से पढ़ाई की और वहीं से उनकी फिल्मी सफर की शुरुआत हुई. 70 और 80 के दशक में जब ग्लैमर का दौर था तब जरीना बहाव ने अपनी नेचुरल एक्टिंग और इनोसेंट स्क्रीन प्रेजेंस से अलग पहचान बनाई. इन्हीं को डेडिकेट करते हैं ये बहुत प्यारा सा गाना, और अमोल पालेकर के साथ ये इस फिल्म में थी. और बहुत ही खूबसूरत सा गाना है, गोरी तेरा गाँव बड़ा प्यारा, मैं तो गया मारा. आपकी नजर मस्ती की रेलगाड़ी पर.

0: थैंक यू वेरी मच दोस्तों, गाना पसंद करने के लिए. मस्ती की रेलगाड़ी पर आप लोगों का फिर से स्वागत है ऑन CMRFM 101.3. और अब चलते हैं हम डील्स की तरफ और स्पेक्स एक्सप्रेस का मजा उठाते हैं, वहां की डील्स का मजा उठाते हैं. राजन जी का बड़ी देर से इंतजार था, चलिए उनसे पूछते हैं कि क्या स्पेशल है इस वीकेंड के. राजन जी, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम.
1: गुड आफ्टरनून शालिन जी और मस्ती की रेलगाड़ी के सभी लिसनर्स को, और आपको भी प्यार भरी नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब एंड वेरी गुड आफ्टरनून.
0: थैंक यू वेरी मच हमसे जुड़ने के लिए राजन जी. तो क्या है स्पेशल इस हफ्ते के?
1: बिल्कुल जी, सो स्पेशल में बताते चले कि जैसे आप देख रहे हैं बाहर गर्मी बहुत है, हमारे सभी लिसन जो घूमने के लिए जाते हैं अपनी आईज को प्रोटेक्ट करने के लिए, दोस्तों आपको बढ़िया ब्रांडेड सनग्लासेस चाहिए, तो हमारे पास 2026 की समर कलेक्शन के सभी लेटेस्ट मॉडल पहुंच चुके हैं. चाहे आपको गुची के चाहिए हों, प्राडा के, टॉम फोर्ड के, टिफनी के, ब्लेंसियागा, वर्साची या फिर बर्बरी, इन सभी ब्रांड्स के ब्रांडेड फ्रेम्स एंड ब्रांडेड सनग्लासेस के ऊपर आपको आज फ्लैट 30% डिस्काउंट दिया जा रहा है. सो मैं रिपीट कर दूं कि ये फ्लैट है, ये अप टू नहीं है. कई बार हमारे मन में होता है कि जब हम वहां पर जाएंगे तो शायद 10% ही मिलेगा, नहीं, आपको पूरा 30% डिस्काउंट मिलेगा. इसके अलावा आपको अगर अरमानी के चाहिए, माइकल कोर्स के, कोच के, टॉरी बर्ज के या फिर मार्क जेकब के, ये सभी के सभी ब्रांडेड फ्रेम्स के ऊपर एंड ब्रांडेड सनग्लासेस के ऊपर आपको आज फ्लैट 50% ऑफ दिया जा रहा है. सो जब हमारे लिसन स्टोर के अंदर एंटर करेंगे जी, तो लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर हमारे पास तकरीबन 300 से 400 ब्रांडेड सनग्लासेस एंड ब्रांडेड फ्रेम डिस्प्ले के ऊपर लगे हैं. आप कोई भी फ्रेम चूज करें और सनग्लास चूज करें, इन सब के ऊपर प्राइस टैग लगा. जो भी प्राइस टैग लगा आपको सिंपली उसको हाफ कर लेना है और हाफ प्राइस के ऊपर ही आपको सभी ब्रांडेड बढ़िया फ्रेम्स एंड सनग्लासेस मिलेंगे. और एक शाली जी हमारा क्लियरेंस सेक्शन है, इसमें हम आपको टॉमी हिल फिगर के फ्रेम, कैल्विन क्लाइन के फ्रेम, फैंडी के फ्रेम एंड वेलेंटिनो के फ्रेम फ्लैट 75% ऑफ करके दे रहे हैं. तो ये
0: क्या
1: बहुत बढ़िया सेल है जी. एग्जांपल अगर आप टॉमी हिलफिगर का फ्रेम लेते हैं या सनग्लासेस लेते हैं, तो अगर ये 399 की प्राइस रेंज में है तो 75% ऑफ करके सिर्फ $99 में आपको ये फ्रेम घर लेके जा सकते हैं. और
0: क्या
1: बढ़िया बात ये है कि ये सभी लेटेस्ट मॉडल भी हैं इसमें और दूसरे मॉडल भी हैं, तो बहुत बढ़िया सेल है जी, 75% ऑफ. साथ के साथ जिन्होंने आई एग्जाम करवाना है, डॉक्टर हमारे पास जी आज शाम को 4 बजे से लेकर 7 बजे तक अवेलेबल है. अगर आप आज नहीं आ सकते तो कल भी हमारे पास डॉक्टर 10 बजे से लेकर तकरीबन 2 बजे तक रहेंगे जी.
0: जी,
1: और हमारा एक जो वैली पैकेज है जी, उसके बारे में बताना चाहूंगा. ये वैली पैकेज ही ऐसा पैकेज है जी जो हमारे डिस्टेंस को दूर दूर से खींच के लाता है, क्योंकि उसमें सेविंग बहुत ज्यादा होती है. तो वैली पैकेज में हमने सभी ब्रांडेड फ्रेम्स इंक्लूडेड किए हुए हैं, वो है जी लंडन फॉग, लिवाइस, रैंगलर, वैन ह्यूस्टन, एडी बावर, रूट्स, आइजॉट. और ये कोई 10-20-50 फ्रेम नहीं है, तकरीबन 700 से 800 फ्रेम डिस्प्ले पे लगे हैं. हमारे लिस्ट से आकर कोई भी फ्रेम चूज कर लें, $300 की कीमत का फ्रेम है जी. एक तो ये फ्रेम इंक्लूडेड है, दूसरा $100 की कीमत के सिंगल विजन लेंसेज वो भी इंक्लूडेड है. सो कुल मिलाकर ये 400 का पैकेज होता है जो कि हम अपने लिसनर्स को सिर्फ $129 में दे रहे हैं. सो इट्स अमेजिंग प्राइस, बहुत ज्यादा सेविंग है जी. ऐसे ही जिनको प्रोग्रेसिव ग्लासेस चाहिए तो एसएलआर कंपनी के हाई डेफिनेशन डिजिटल प्रोग्रेसिव लेंसेज हैं, $300 की कीमत के लेंसेज हैं जी, एंड $300 की कीमत का फ्रेम, 600 का पैकेज है जो कि हम अपने लिसनर्स को सिर्फ $258 में दे रहे हैं. और ऑन टॉप ऑफ इट, अगर आप अपने ग्लासेस के ऊपर कोई भी कोटिंग ऐड करवाते हैं तो सभी कोटिंग्स फ्लैट 50% ऑफ दी जा रही है जी. और अगर किसी ने दो पेयर बनवाने हैं तो पहले पेयर के ऊपर कोटिंग 50% ऑफ है और दूसरे पेयर के ऊपर कोटिंग आपको 100% ऑफ यानी कि एब्सोल्युटली फ्री मिल रही है जी.
0: अमेजिंग.
1: तो ये सारी अमेजिंग डील्स लेने के लिए हमारे लिसनर्स पहुंचे जी स्पेक्स एक्सप्रेस के ऊपर, 35 रेजोल्यूशन ड्राइव ब्रैम्पटन में, 410 एंड स्टील्स कैले या कैनेडियन स्टील्स के इंटरसेक्शन, वॉलमार्ट वाला प्लाजा. एंड फोन नंबर एक बार फिर से जी 905-460-8888. और जिन लिसनर्स के पास बेनिफिट्स है, बताते चले कि मोस्ट इंश्योरेंस कंपनीज को डायरेक्ट बुक करते हैं, चाहे आपका आई एग्जाम हो, आपके प्रिस्क्रिप्शन ग्लासेस हो या फिर प्रिस्क्रिप्शन सनग्लासेस. और जाते जाते एक स्पेशल डील मस्ती की रेलगाड़ी के लिसनर्स के लिए जी.
0: जरूर,
1: इसका दिन है, वीकेंड है, तो हमारे लिसनर्स बहुत एक्साइटेड की कोई स्पेशल मिले. स्पेशल
0: बिल्कुल
1: टॉम फोर्ड के ब्रांडेड सनग्लासेस, जो भी पहले 5 कॉलर कॉल करेंगे टॉम फोर्ड के ब्रांडेड सनग्लासेस उनको मिलेंगे फ्लैट 50% ऑफ.
0: वेरी नाइस.
1: फ्लैट 50% ऑफ टॉम फोर्ड के सनग्लासेस लेने हैं तो हमारे लिसनर्स अभी कॉल कर लें 905-460-8888 905-460-8888.
0: क्या बात है राजन जी, आप तो बिल्कुल एक गुडी बैग लेकर आते हैं एवरी थर्सडे एंड फ्राइडे एंड वी आर ऑल सो हैप्पी. और मुझे लगता है सब लोग, या तो वैल्यू पैकेज अच्छा तो सब कुछ होता है लेकिन वैल्यू पैकेज में भी मजा जरा ज्यादा आता है, और जो लास्ट वाली जो आपका शॉट होता है ना, दैट इज सुपर शॉट. तो टॉम फोर्ड के ब्रांडेड सनग्लासेस 50% ऑफ, अप टू तो बात ही नहीं करते राजन जी, ही ऑलवेज गो टू द नंबर, नेवर सेज अप टू, दैट इज अ ब्यूटी. 905-460-8888, दैट्स 905-460-8888, स्पेक्स एक्सप्रेस. थैंक यू वेरी मच राजन जी, विल टॉक टू यू सून, ऑल द बेस्ट, टेक केयर.
1: थैंक यू, टेक केयर
0: जी. और दोस्तों, देओल ट्रैवल की लेटेस्ट डील्स आ चुकी हैं, आप नोट कर लें. एडमिंटन टू अमृतसर वन वे इन द मंथ ऑफ सितंबर स्टार्टिंग फ्रॉम $1,070. राउंड ट्रिप लगा है सितंबर टू अक्टूबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1,850. लिमिटेड सीट्स हैं, राइट अवे बुक कर लें. इटोबिको ब्रैम्पटन टू लोकेशंस टू सर्व यू. देओल ट्रैवल 905-588-5100 and 905-588-4200. Tiny sa break lenge. We'll be right back on Masti Ki Rail Gaadi. Stay tuned.
2: Aap sun rahe hai Shaun Express on CMR FM 101.3. Shaun Express. Music jo kare aapko impress.
3: Our loan and credit card bills keep piling up. We have no money to pay them with our limited income.
4: I'm afraid we are going to go bankrupt and lose our house, business and all assets. Is this why we immigrated to Canada?

0: Help is just one call away. No need to file bankruptcy. We can save your assets, stop collection calls and make one monthly interest-free installment for maximum debt relief. Call Aisha Munawwar, Debt Solutions Specialist and Insolvency Counselor with Rumanek & Company Limited, a company with licensed insolvency trustee. Call Aisha Munawwar at 416-428-2165. That's 416-428-2165.
1: Hum honge aapke saath hamesha.
2: Great investment opportunities available. Oshawa mein 4 bedrooms and 4 washrooms ka town home. Brampton mein Chinguzi aur Wanless ke paas 3 bedrooms ka semi-detached home with 1 bedroom ki basement apartment with separate entrance. And dusra ghar 5 bedrooms ka detached home with 3 bedrooms ki legal basement with separate entrance. All the properties are rented. For more information, call 647-309-5100. 647-309-5100.
3: संजीव पुरी ऑफ स्टार लाइफ इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट इंक एक ब्रोकर है और डील करते हैं सारे मेजर कंपनीज के साथ. ही कैन शॉप अराउंड फॉर यू फॉर द बेस्ट प्लान्स ऑफ इंश्योरेंस दैट विल सूट योर बजट एंड नीड्स. संजीव पुरी इंश्योरेंस प्लान्स में तो माहिर है ही, लेकिन हाई रिस्क इंश्योरेंस प्लान्स के बेस्ट रेट्स दिलाने में बहुत ही माहिर है. तो अगर किसी को ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, हार्ट अटैक, बाईपास सर्जरी, लिवर या किडनी के इश्यूज हो या इंश्योरेंस कंपनी ने आपकी इंश्योरेंस डिक्लाइन की है, तो संजीव पुरी को आप कॉल करेंगे फ्री कोट के लिए. और अगर आपको लगता है कि आप इंश्योरेंस पॉलिसी के बहुत हाई प्रीमियम पे कर रहे हैं, तो पॉलिसी रिव्यू करवाने के लिए भी संजीव पुरी 416-890-3232
4: घर या बिजनेस के लिए चाहिए पैटियो कवर, परगोला, बेसमेंट कैनोपी या रिट्रैक्टेबल ऑनिंग्स,
5: तो कॉल करें कैलिफोर्निया ऑनिंग एंड कैनोपी, ब्रैम्पटन का ट्रस्टेड नाम फॉर रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रोजेक्ट्स.
4: बेस्ट क्वालिटी, स्टाइलिश डिजाइंस और ग्रेट प्राइसिंग, चाहे सनरूम हो या हो कस्टम कैनोपी, सब कुछ मिलेगा यहाँ.
5: फ्री कोटेशन के लिए अभी कॉल करें 416-831-4790, दैट्स 416-831-4790, या पहुँचो 24 रीगन रोड ब्रैम्पटन.
4: कैलिफोर्निया ऑनिंग एंड कैनोपी, बनाए आपकी स्पेस सुंदर और फंक्शनल.
2: ध्यान से सुनिए, आपके लिए एक अच्छी खबर है. गवर्नमेंट आपको स्टडी करने के लिए फंडिंग प्रोवाइड कर रही है जो ग्रांट और लोन के कॉम्बिनेशन में मिलेगी. अगर आप पीआर या कनेडियन सिटीजन हैं, आपकी मिनिमम एजुकेशन ग्रेड 12 है, नो बैंक्रप्सी और क्रिमिनल रिकॉर्ड है, तो आप एलिजिबल हो सकते हैं. नो क्रेडिट चेक, अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंगली आप ऑनलाइन स्टडी भी कर सकते हैं. ग्रांट और लोन का कॉम्बिनेशन 31 जुलाई तक अवेलेबल है. देर ना करें, आज ही कॉल करें 416-315-2020. That's 416-315-2020.
6: आप सुन रहे हैं शॉन एक्सप्रेस ऑन CMRFM 101.3. शॉन एक्सप्रेस म्यूजिक जो करे आपको इम्प्रेस.
2: Joining us now is जिनको मैंने नाम दिया है मिरेकल गुरुजी. सो आयुर्वेदा एंड हर्ब्स गुरुजी हमारे साथ जुड़ेंगे 9 पीढ़ियों के अनुभव के साथ और बिल्कुल स्ट्रेस फ्री आप हो जाते हैं, क्योंकि ये रहती हैं आयुर्वेदिक दवाइयां जो आपको ठीक करती हैं विद नो साइड इफेक्ट्स. और नंबर बहुत आसान सा है गुरुजी का, 437-438-3399. गुरुजी नमस्कार, कैसे हैं आप?
7: नमस्ते नमस्ते बहन जी, मैं बहुत अच्छा है भगवान को आशीर्वाद से. आप कैसा है बहन जी?
2: बिल्कुल ठीक हूँ गुरुजी, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस टुडे. आप इतने बिजी रहते हैं और इतने सारे लोग आपसे मिलने आते रहते हैं हमेशा, तो ग्रेट टू हैव यू विद अस.
7: यस यस यस जी. क्या जी, मेरा पास लोग आता है, आप बताया था वो दुख से कष्ट से आता है, एक वन वीक 10 दिन में उसको हैप्पी हो जाता है.
2: Right.
7: ये सारा ऊपर वाला को आशीर्वाद है. हमारा हाथ में कुछ भी नहीं है. क्या है, बीमार आता है हमारा कर्मा से.
2: That's right.
7: Yes, हमारा कर्मा से बीमार आ जाता है. बीमार को लिए क्या होता है, कौन सा बीमार कब कब आता है हमको नहीं मालूम पड़ता है. उसमें क्रोनिकल या उसके क्रोनिकल भी डिसीज होता है. ये क्रोनिकल डिसीज जल्दी जल्दी ठीक नहीं हो जाता है. एक बार आया तो उसमें आर्थराइटिस एक बहुत क्रोनिकल डिसीज है और एक शुगर भी क्रोनिकल डिसीज है. ये जल्दी ठीक नहीं हो जाता है, वैसा रहता है शरीर को अंदर. ये पहले ये बीमार किसके लिए आ रहा है, बीमार किसके लिए आ रहा है उसको जड़ को लिए दवा देना है. मेरा दवा मेरा हर्बल तो सारा हिमालय से लेकर आता है, हिमालय एंड फुल मनाली काठमांडू और बद्रीनाथ का बद्रीनाथ केदम वैसा वैसा जगह के जाके मैं सारा मेरा हर्बल सारा उधर से आता है। इसलिए क्या होता है हमारा दवा में हवा हमारा हर्बल में साइड इफेक्ट बिल्कुल नहीं होता है, साइड बेनिफिट्स होता है, उससे हम हमारा शरीर में बीमार सारा सारा में सारा ठीक हो जाता है, बिल्कुल साइड इफेक्ट विदाउट साइड इफेक्ट अच्छा हो जाता है।
8: ओके,
7: और बहुत
8: है?
7: लोगों को बहुत लोगों हमारा हमारा शो सुन के आ गया था जॉइंट पेन वाला और आर्थराइटिस वाला नी पेन वाला और लोअर बैक पेन के लिए लोअर बैक पेन के लिए और वो पैरों में सूजन आता है सुन आ जाता है नमनेस आ जाता है उसके लिए बहुत लोग आ गया था। ये लोग सारा सारा को सारा भगवान आशीर्वाद से हमारा दवा लेकर ठीक हो गया था। और ये हमारा दवा सारा उन्हें दे रहा है नाड़ी देखता है सारा ट्रेडिशनल है हमारा हमारा वो 60-70 साल के पहले इंडिया में डॉक्टर MBBS डॉक्टर बहुत कम था। वो लोग तब बीमार होने के टाइम में लोग किधर जाता है वो गुजर जाता है वो वकीम को पास जाता है वेद को पास जाता है वैसा वेद मेरा फैमिली है वैसा वेद में कर रहा है। वो लोग क्या करता है नाड़ी देखता है नाड़ी को मतलब पल्स देखता है पल्स में क्या क्या बीमार होता है वो देख के उसको लिए क्या करना है क्या वो वाता पित्त कफ दोष तीन दोष होता है बॉडी में ये तीन दोष के लिए कौन सा जड़ी बूटी से दिए तो ठीक होता है बता करके देता है उससे 100% पक्का पक्का पक्का ठीक हो जाता है विदाउट साइड इफेक्ट से।
8: जी दोस्तों, और गुरु जी की फैमिली बता दें आपको पिछले 9 जनरेशन से आयुर्वेदिक प्रैक्टिस में हैं, यानी ट्रेडिशनल नॉलेज एंड मॉडर्न अंडरस्टैंडिंग के साथ वो पर्सनलाइज्ड हर्बल गाइडेंस देते हैं जिसका फोकस होता है बॉडी को अंदर से बैलेंस करना। कोई भी आपको प्रॉब्लम है, इम्यूनिटी इंप्रूव करनी है, डाइजेशन स्ट्रांग करना हो, ओवरऑल जो आपकी हेल्थ है बेटर बनानी हो, तो गुरुजी से जरूर बात करें। ब्रैम्पटन एंड स्कार्ब्रो दो जगह से आपको सर्व करते हैं, मंडे ट्यूसडे वेंसडे रहते हैं स्कार्ब्रो में, और थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे ब्रैम्पटन में आप लोगों से मुलाकात होती है। और दोस्तों नंबर नोट करें गुरुजी का 4374383399। और दोस्तों गुरुजी से जरूर मिलिए और देखिए कि किस तरह से आपकी हेल्थ में सुधार आता है। CMRFM 101.3 पर एक बार फिर से शालिनी आप लोगों का वेलकम करती है मस्ती की रेलगाड़ी पर, और एक बहुत ही खूबसूरत सा ट्रैक बहुत जल्दी आपकी नजर करेंगे, और एक मेहमान हमारे साथ और जुड़ने लगे हैं एक बड़ी इंटरेस्टिंग बातचीत लेकर। इसके अलावा बता दें कि बॉलीवुड का अगर मैं कैलेंडर खोलूं तो एक और आज बर्थडे मना रहे हैं, स्पेशल कलाकार हैं जिनका नाम है रवि किशन। इन्होंने 700 से ज्यादा फिल्मों में काम किया है, जैसे हिंदी, भोजपुरी, तेलुगु, कन्नड़ा, तमिल लैंग्वेज की फिल्मों में, और इसके साथ साथ इन पर कोई खैर इतने कोई इम्पोर्टेंट गाने नहीं फिल्माए गए, लेकिन इन्होंने जो भी रोल किया है बहुत ही दमदार रोल किया है। इनका जन्म हुआ था यूपी में बड़े साधारण से परिवार में, लेकिन बचपन से ही इन्हें एक्टिंग का शौक था, तो बहुत ही वर्सेटाइल एक्टर हैं, और साथ ही इज ऑल्सो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रवि किशन। शानदार डायलॉग डिलीवरी, देसी स्टाइल और नेचुरल एक्टिंग की वजह से उन्होंने करोड़ों दिलों में जगह बना ली। वो सेलिब्रेट कर रहे हैं आज अपना बर्थडे, और चलिए डील्स को सेलिब्रेट करते हैं मिडा फर्नीचर गैलरी के साथ। पवन मिडा जी हमारे साथ जुड़ेंगे कुछ और डील्स लेकर इस फ्राइडे को फैंटास्टिक बनाने के लिए। पवन जी वेलकम बैक।
9: थैंक यू वेरी मच जी, और रेडियो सुनने वाले सभी बहन भाइयों को अभी मेरी गुड आफ्टरनून, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मिडा फर्नीचर आपकी सेवा में हाजिर है और 5 लोकेशन से आपकी सेवा करते हैं, ब्रैम्पटन, मिसिसागा, स्कारब्रो, कैम्ब्रिज और लंदन से हाई एंड फर्नीचर आपको देते हैं। मॉडल नंबर बता के आपको डील देते हैं। क्यों देते हैं उसके एक वजह बताते हैं। आपके आशीर्वाद से 1 से 2, 2 से 3, 4, 5 लोकेशन हुई। वॉल्यूम डिस्काउंट हमें आपकी वजह से मिलता है, जैसे है ना वो तेरा तुझको अर्पण, वही आपकी वजह से मिलता है, आपको वापस दे रहे हैं। नॉट ओनली मी, हर दुकानदार, चाहे वो कोई किसी जो भी किसी का मोड हो एडवर्टीज करने का, आप किसी के बारे में क्या कह सकते हैं। हर दुकानदार ने जो बिजनेस करा हुआ है दो पैसे कमाने के लिए करा हुआ है, रीजनेबल प्रॉफिट, और प्रोफेशनली आप कोई भी, हम सारे सारे पढ़े लिखे एजुकेटेड फैमिलीज, हम सारे सभी को पता है कि कोई दुकानदार जेब से डाल के तो नहीं देगा। हाँ, फ्लोर मॉडल, फ्लोर मॉडल कुछ होते हैं, हम एडवर्टीज नहीं करते, लेकिन जब आप स्टोर में पूछते हैं कि फ्लोर मॉडल, हम बिलो टू कॉस्ट भी दे देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करते कि हजार वाले को आपको 200 में ही दे देंगे, हजार वाले को 10-15% का, मतलब हजार की कॉस्ट है, नया 1200 में बेच रहे थे तो फ्लोर वाला 800 में बेच रहे होंगे। वो भी गलत है कि हजार वाले का आपको 300 में बेच रहे हैं। अगर 300 में बेच रहे हैं तो इसका मतलब समथिंग रॉन्ग है, टूटा फूटा कोई बेकार की चीज है, तब आपको कोई बंदा ऐसे बोल रहा है। हमने आपको ये पारदर्शिता क्यों ला रहे हैं, ट्रांसपेरेंसी ला रहे हैं, ताकि आपका विश्वास जो हमारे पे बना हुआ है वो और स्ट्रांग हो सके। दिस इज माय मोटिव, नॉट, मेरा मोटिव ये नहीं है कि किसी को क्रिटिसाइज करें। तो हमने, मैंने पिछले लिंक में भी कहा था कि आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप फर्नीचर अगर ढूंढ रहे हैं तो एक बार स्टॉप करें, और मतलब आप जहां से, वैसे तो आपका जी चाहे जहां से आपको अच्छा लगता है लें, लेकिन एक बार इस भाई को, इस अंकल को, इस बड़े भाई को, इस छोटे भाई को, जो भी रिश्ता आप मेरे से प्यार से रखें, एक बार मौका देके देखें, हमारा टेस्ट लें, और फिर अगर आपको लगे कि वाकई हम सस्ते हैं, जो रेडियो पे बोला जा रहा है, जो मेरी शालिनी बहन जिसकी एक विटनेस बन रही है, तो हम इतने सालों से आपका प्यार है, और मैं एक दूसरा प्रोफेशनली आपको कह रहा हूँ कि आपके पास कोई भी आइटम, आपने किसी भी एडवर्टीज के मोड से आपके पास कोई वो है, हमें फोन करके पूछ लें जी ये हमारी आइटम है, व्हाट्सएप नंबर भेज दें, 10% तो खुद ही कम कर लेना, कोई नो इफ नो क्वेश्चन आस्क, कि 10% मिनिमम कम करके देते हैं, और अगर वो हमारे कंटेनर में आती है तो फिर 10 के बाद 15-20 जो हमारा मार्जिन होता है वो भी आपको और कम करके भी आपसे रिश्ता बनाने की कोशिश की जाती है। इवन रिलेशनशिप हमें कामयाबी मिल रही है, हमें एक के बाद दो, दो के बाद तीन, चार, पांच, वो कामयाबी का सेहरा जो है आपके सर माथे पे है, आप प्यार ना देते, साथ ना देते तो ये होता ना, क्योंकि झूठ बहुत देर तक नहीं टिकता, झूठ बहुत देर तक नहीं टिकता, और सच जो है स्लो हो सकता है लेकिन लंबा चलता है। तो हमने ये आप सभी से सीखा है, और हम चाहते हैं कि आप सेवा का मौका देके देखें, जहां भी आप रहते हैं, आप जीपीएस में डालेंगे तो मिड्डा फर्नीचर, आप तो कहते हैं ना, नाम ही काफी है, चाहे वो आप जहां रहते हैं आपकी क्लोज लोकेशन आपके पास चली आएगी, ब्रैम्पटन, मिसिसागा, स्कारबरो, कैम्ब्रिज, लंदन, और जहां भी आप आए, हाँ फोन से बातचीत करते हैं 416-901-2810 पे, आप हमें पांचों लोकेशन पे बात कर सकते हैं, कोई कोटेशन हमारे से चाहिए, कुछ पिक्चर्स चाहिए, कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो हर स्टोर का अलग व्हाट्सएप नंबर भी है, आप जो हर स्टोर आपसे बातचीत करने को तैयार हैं, और हर वीकेंड कुछ ना कुछ स्पेशल लगाते हैं, कॉस्ट पे लगाते हैं, उसके लिए भी आप आए, स्वागत है आपका, इंतजार में, कहते हैं ना भी इंतजार आज भी रहेगा, कल भी रहेगा, परसों भी रहेगा, तो इन दिनों का फायदा उठाने के लिए आप मिड्डा फर्नीचर को विजिट करें। थैंक यू वेरी मच, फोन नंबर दोबारा बता देता हूँ 416-901-2810 416-901-2810 थैंक यू वेरी मच जी।
8: थैंक यू सो मच पवन जी। दोस्तों middafurniture.com जरूर विजिट कीजिएगा, और आप जाएंगे भी स्माइल के साथ और लौटेंगे भी स्माइल के साथ। ऑल द बेस्ट, हैव अ ग्रेट वीकेंड, टेक केयर।
9: थैंक यू जी
8: जी। और दोस्तों कुछ गाने ऐसे होते हैं जो सुनते ही मूड बदल देते हैं, और कहते हैं कि जिंदगी की किताब में खुशियों के पन्ने जोड़ते चलो, जिंदगी की किताब में खुशियों के पन्ने जोड़ते चलो, हर गम को हंसकर पीछे छोड़ते चलो, मंजिल तो मिल ही जाएगी एक दिन, आज बस मुस्कुराते हुए सफर का मजा लेते चलो। Let me hear you say.

0: Dear sponsors, for fast, effective and result-oriented drive, get on board Sean Express. For info, call 416-569-7812, 416-569-7812, or email info@seanmedia.com, seanmedia.com.
1: मेडिकल इंश्योरेंस फॉर न्यू इमिग्रेंट्स, विजिटर्स इंश्योरेंस एंड सुपर वीजा इंश्योरेंस के बेस्ट रेट एंड बेस्ट प्लान के लिए एक ही नाम, संजीव पुरी।
2: संजीव शॉप अराउंड करके आपको बेहतरीन रेट और प्लान की गारंटी देते हैं, जिसमें खांसी, जुखाम, बुखार, स्लिप एंड फॉल, वॉकिंग क्लिनिक डॉक्टर की फीस, मेडिसिन एंड टेस्ट के खर्चे से लेकर एम्बुलेंस, हॉस्पिटलाइजेशन एंड फ्यूनरल तक सब कवर्ड होता है।
1: यू विल गेट फुल रिफंड इफ सुपर वीजा इज डिक्लाइंड।
2: इसके अलावा बच्चों की RESP, लाइफ इंश्योरेंस, मॉर्गेज इंश्योरेंस, फ्यूनरल इंश्योरेंस, क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस, डिसेबिलिटी इंश्योरेंस के लिए भी कॉल करें संजीव पुरी 416-890-3232 890-3232।
3: Our loan and credit card bills keep piling up. We have no money to pay them with our limited income.
4: I'm afraid we are going to go bankrupt and lose our house, business and all assets. Is this why we immigrated to Canada?

0: जी हाँ, यहाँ त्योहार पूजा पाठ और सजावट का सामान, मंदिर, मूर्तियाँ, हवन सामग्री, फेंग शुई वास्तु आइटम्स, रिलीजियस बुक्स,
1: यानी पूरे इंडिया का कल्चर एक ही छत के नीचे।
0: 31 मेलिनी ड्राइव, ब्रैम्पटन। कॉल 905-458-6808
1: और विजिट pujahut.com।
2: इंडिया सजावट एंड पूजा हट।
0: जय श्री राम। आप सुन रहे थे शॉन एक्सप्रेस मस्ती की रेलगाड़ी विद शालिनी ऑन CMRFM 101.3। फॉर एडवर्टाइजिंग कॉल अस ऑन 416-569-7812, 416-569-7812 और ईमेल अस एट info@shawnmedia.com। शॉन एक्सप्रेस, अ शॉन मीडिया प्रेजेंटेशन।

0: You're listening to CMR FM 101.3.
1: Listen to us around the universe. www.cmr.fm.
2: The views and information shared by the guests and their ads are their own and shall not be construed as advice from Radio Voice hosts. We make no recommendations or endorsements for radio show programs, products, or experiences mentioned on air. Personal views expressed by the guests, ads, interviews will always be presented as such. No liability, explicit or implied, shall be extended to Radio Voice or the show hosts whose words and or opinions appear on the show.
3: रेडियो वॉइस एक ऐसा रेडियो शो जो सुने आपकी बात,
4: जो हो आपके दिल के करीब,
3: जो मनाए आपके त्योहार,
4: रखे चुटकुले तैयार,
3: जहाँ पर मिले आपके सवालों के जवाब,
4: जहाँ मचे शायरी की धूम,
3: जो दे खबरें अप टू डेट
4: और दे ढेरों इनाम,
3: आपका अपना रेडियो शो रेडियो वॉइस
4: जतिन के संग
3: ऑन CMR 101.3 FM. ट्यून इन मंडे टू फ्राइडे और लॉग ऑन टू CMR.FM.

0: Imagine over 1,000 exotic birds and animals roaming wild. Come face to face with lions and nature's most amazing creatures, all closer than you'd ever imagined. African Lion Safari, Canada's original safari adventure. African
1: Lion Safari. Get closer and begin your adventure today at lionsafari.com.
2: नॉर्थ अमेरिका का सब तो वड्डा माझा मालवा दुआबा वेडिंग स्टोर।
3: यहाँ से आपको ठाका, चुन्नी, मेहंदी, जागो, मिलनी और बारात से डोली तक का सारा सजावट का सामान भी मिलेगा। 30 मेलेनी ड्राइव, यूनिट 9 एंड 10, ब्रैम्पटन। टेलीफोन 905-799-9400। माझा मालवा दुआबा वेडिंग
4: स्टोर। Craving something truly authentic? Mumbai Grill in Ajax has been delighting taste buds for 18 years. Just specialized in mouth-watering momos plus tandoori and butter chicken momos. Jahan milenge best of South Asian cuisine. Miss out mat karna unka famous lunch and dinner buffet. Signature dishes like butter chicken and shahi paneer. Agar food aapko karta hai excite, to zarur pahunche Mumbai Grill at 619 Kingston Road, Ajax. Call kare at 905-239-4077 ya visit kare MumbaiGrill.com. Available for small and very large group catering services. Mumbai Grill, yummy food that thrills.
5: Medical insurance for new immigrants, the visitors insurance and super visa insurance ke best rate and best plan ke liye ek hi naam.
6: Sanjeev shop around karke aapko behtareen rate aur plan ki guarantee dete hain jisme khansi, zukham, bukhar, slip and fall, walking clinic doctor ke fees, medicine and test ke kharche se lekar ambulance hospitalization and funeral tak sab covered hota hai. Iske ilawa bachchon ki RESP, life insurance, mortgage insurance, funeral insurance, critical illness insurance, disability insurance ke liye bhi call kare Sanjeev Puri 416-890-3232 8903232.
7: क्या बात है, उलझन में लग रही हो?
8: उलझन ही तो है, एक तरफ चिंटू के दांतों में कीड़ लग गई है, चॉकलेट इतने खाता रहता है, और दूसरी तरफ माँ जी के दांतों में दर्द हो रहा है, समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
7: समझना क्या, डॉक्टर नील गज्जर को फोन करो, बहुत ही रिनाउंड डेंटिस्ट है, और उन दोनों के साथ साथ तुम्हारा और मेरा भी अपॉइंटमेंट बना लो दांत की सफाई करने के लिए. ये लीजिए फोन नंबर 289-401-0009 289-401-0009.
8: Dr. Neil Gajar, 735 Twain Avenue, Suite 16, Mississauga. Call 289-401-0009.
9: Our loan and credit card bills keep piling up. We have no money to pay them with our limited income.
10: Help is just one call away. No need to file bankruptcy. We can save your assets, stop collection calls and make one monthly interest-free installment for maximum debt relief. Call Aisha Munawwar, Debt Solutions Specialist and Insolvency Counselor with Rumanek & Company Limited, a company with licensed insolvency trustee. Call Aisha Munawwar at 416-428-2165.
11: रेडियो वॉइस आपकी पहली चॉइस. कॉल करें 416-660-8545.

0: अपने बिजनेस को बढ़ाना है, एक नई ओर ले जाना है तो डायल करें 416-660-8545 रेडियो वॉइस।
1: डोसा खाने का मन है तो चलिए गुरु लक्ष्मी, 7070 सेंट बारबरा बुलेवर्ड, यूनिट नंबर 44-50 मिसिसागा। मंडे और ट्यूसडे को लंच 12-3, डिनर 5-10। थर्सडे से संडे लंच 12-3, डिनर 5-10। वेनसडे को बंद लेकिन लॉन्ग वीकेंड्स पर खुले रहेंगे। कॉल करें 905-795-2299, 905-795-2299 या विजिट करें gurulakshmi.com। गुरु लक्ष्मी, स्वाद सेवा और साउथ इंडिया का असली तड़का। क्या आप शेरों, हाथियों और चीतों को बिल्कुल करीब से देखना चाहते हैं? तो पहुंचिए अफ्रीकन लायन सफारी, बंदर भाइयों कनाडा के सबसे बड़े वाइल्ड लाइफ एडवेंचर पर। पहुंचना होगा 1386 कूपर रोड, कैम्ब्रिज। आज ही टिकट बुक करें lionsafari.com पर। ये हिडन वॉइस, हम हैं आपके दोस्त जतीन।
2: घर कहीं भी लेना

0: For any information, call Sarab Sabarwal 647-864-8844. That's 647-864-8844.
1: Or visit teamsabarwal.com.
2: Your search ends here.
3: रेट्स फर्निचर का यह मैसेज जरा ध्यान ना।

0: रेडियो वॉइस में अपनी एड सुननी है तो इंतजार क्यों? कॉल करें 416-660-8545 रेडियो वॉइस।
1: डॉक्टर नील गज्जर एसोसिएट्स एंड स्पेशलिस्ट्स, फैमिली डेंटिस्ट, केयरिंग फॉर ऑल योर डेंटल नीड्स, एक्सेप्ट कर रहे हैं पेशेंट्स जिनके पास CDCP यानी कि कैनेडियन डेंटल केयर प्लान है। अगर आपने ये प्लान रिसीव नहीं किया है और आप एलिजिबल है तो इस प्लान में एनरोल होने के लिए विजिट करें CDCP वेबसाइट। CDCP की वेबसाइट विजिट करके एनरोल हो जाइए और कांटेक्ट कीजिए डॉक्टर नील गज्जर एसोसिएट्स एंड स्पेशलिस्ट का। बेंद्र भाइयों, आपकी अपॉइंटमेंट अभी से बुक करवा ले 905-564-2021 डॉक्टर नील गज्जर एसोसिएट्स एंड स्पेशलिस्ट, आपके फैमिली डेंटिस्ट।

तो चलिए गुरु लक्ष्मी 7070 सेंट बारबरा बुलेवर्ड यूनिट नंबर 44-50 मिसिसागा। मंडे और ट्यूसडे को लंच 12-3, डिनर 5-10। थर्सडे से संडे लंच 12-3, डिनर 5-10। वेनसडे को बंद लेकिन लॉन्ग वीकेंड्स पर खुले रहेंगे। कॉल करें 905-795-2299 या विजिट करें gurulakshmi.com। गुरुलक्ष्मी स्वाद सेवा और साउथ इंडियन का असली तड़का।

0: अपने बिजनेस को बढ़ाना है, एक नई ओर ले जाना है, तो डायल करें 416-660-8545 रेडियो वॉइस।
1: रिट्स फर्नीचर का मैसेज जरा ध्यान।

0: Meet Rohit the Yes Man at Ritz Furniture Planet 5200 Dixie Road, Mississauga. Telephone 905-232-RITZ. That is 232-7489. Visit ritzfurnitureplanet.ca.
1: Sasta saman sasta nahi. High end the saman mile sasta.
2: क्या बात है, उलझन में लग रही हो?
3: उलझन ही तो है, एक तरफ चिंटू के दांतों में कीड़ लग गई है, चॉकलेट इतने खाता रहता है, और दूसरी तरफ माँ जी के दांतों में दर्द हो रहा है, समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
2: समझना क्या, डॉक्टर नील गज्जर को फोन करो, बहुत ही रिनाउंड डेंटिस्ट है, और उन दोनों के साथ साथ तुम्हारा और मेरा भी अपॉइंटमेंट बना लो दांत की सफाई करने के लिए। ये लीजिए फोन नंबर 289-401-0009
3: Dr. Neil Gajar, 735 Tween Avenue, Suite 16, Mississauga. Call 289-401-0009.
4: Radio Voice, आपकी पहली choice. Call करें 416-660-8545.

0: Wow, Mom. Dad is in a jolly good mood today. What is the reason?
1: This is the effects of famous masala chai by Navigator's Cafe.
0: I know this place. They're also famous for delicious snacks like aloo patties, samosa, vada pav, spring rolls, mango lassi and my favorite, samosa chaat and bhel.
2: Navigator's Cafe, located at northwest corner of Queen Street East and Airport Road in Brampton. They are conveniently open 24/7.
3: वक्त जो है वो बदल चुका था। रामाधीर ने उस गाने को नहीं पहचाना, पर वो रेडियो वॉइस को पहचान गया था। ये वो जमाना था जब लोग अपना ईमेल का पासवर्ड भूल जाया करते थे, पर रेडियो वॉइस सुनना नहीं। और उसके बाद रेडियो वॉइस पर जो एडवर्टाइजर्स का ताता शुरू हुआ, उससे पूरे एफएम रेडियो का समीकरण ही बदल गया। एडवर्टाइजिंग जो है उसके लिए आज ही कॉल करें 416-660-8545।

0: रेडियो वॉइस में अपनी एड सुननी है तो इंतजार क्यों? कॉल करें 416-660-8545 रेडियो वॉइस।
1: संजीव पुरी ऑफ स्टार लाइफ इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट इंक एक ब्रोकर है और डील करते हैं सारे मेजर कंपनीज के साथ। ही कैन शॉप अराउंड फॉर यू फॉर द बेस्ट प्लान्स ऑफ इंश्योरेंस दैट विल सूट योर बजट एंड नीड्स। संजीव पुरी इंश्योरेंस प्लान्स में तो माहिर है ही, लेकिन हाई रिस्क इंश्योरेंस प्लान्स के बेस्ट रेट्स दिलाने में बहुत ही माहिर है। तो अगर किसी को ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, हार्ट अटैक, बाईपास सर्जरी, लिवर या किडनी के इश्यूज हो, या इंश्योरेंस कंपनी ने आपकी इंश्योरेंस डिक्लाइन की है, तो संजीव पुरी को आप कॉल करेंगे फ्री कोट के लिए। और अगर आपको लगता है कि आप इंश्योरेंस पॉलिसी के बहुत हाई प्रीमियम पे कर रहे हैं, तो पॉलिसी रिव्यू करवाने के लिए भी संजीव पुरी 416-890-3232 416-890-3232।

जब करने को ना हो कोई भी बात या लिखने में आ रहा हो बहुत सारा या थोड़ा सा आलस या शब्द पड़ जाए कम टू एक्सप्रेस योर इमोशंस, तब ये जो ऑनलाइन या मोबाइल चैट का इमोजी फीचर होता है ना, ये बन जाता है हमारा बातचीत की हलचल। इट कम्स एज आर यू नो हमारे रेस्क्यू करने के लिए जैसे आ जाता हो कि चलो कुछ तो मिला, ऐसे यही भेज देते हैं, एक स्माइली भेज देते हैं, एक टंग आउट वाला भेज देते हैं, काम चल जाएगा, एक थम्स अप भेज देते हैं और हमारा मैसेज पहुंच जाएगा। एंड दैट्स व्हाई वर्ड डिसाइडेड टू सेलिब्रेट इट वर्ड इमोजी डे, क्योंकि कितने काम की चीज है आजकल, सबसे ज्यादा शब्दों से ज्यादा यही काम आते हैं। कितने इमोजीज आ चुके हैं मार्केट में, कलरफुल, फनी, सरकास्टिक, कुछ हंसी वाले, कुछ खुशी वाले, कुछ उदासी वाले और कुछ चिढ़ाने वाले, कुछ इमोशन से भरे, स्टैटिक भी है, मूविंग भी है, टू कीप अस मूविंग विद टेक्सटिंग। एंड द मोस्ट यूज्ड इमोजी जो बताया जाता है वो है वही थम्स अप वाला ब्लू ब्लू, एंड जस्ट नॉर्मल स्माइल वाला भी एक काफी चलता है। मेरा फेवरेट वाला है जिसमें वो जीभ बाहर निकली होती है, कहते हैं ना ये, अरे ये क्या कर दिया, सॉरी वाला। राइट नाउ वेल बिफोर घड़ी सेज के इट्स टाइम आउट, लेट्स स्टार्ट विद सम गाना शाना ऑन द शो, सिंग इमोजी हो ना हो, कीप दैट स्माइल इंटैक्ट।

0: माहौल को बनाइए एफर्टलेस विद द लेक्सस TX 350 एट डॉन वैली नॉर्थ लेक्सस. स्पेशियस, रिफाइंड और हर ड्राइव के लिए रेडी. क्विक रिफ्यूलिंग के साथ बिना चार्जिंग डिलेस के. वेलकम बैक ऑफर और 10 MSDs का एडवांटेज लीजिए और लीज कीजिए TX 350 लग्जरी पैकेज फॉर $799 प्लस टैक्सेस पर मंथ विद अ 1.4% लीज रेट. ओनली एट डॉन वैली नॉर्थ लेक्सस. लग्जरी का एक्सपीरियंस लीजिए बिना वेट के. A proud member of Wayne's Auto Group.
1: ऑटो एंड होम इंश्योरेंस के बिना तो काम चलता नहीं इफ यू हैव अ कार एंड अ हाउस, है ना. अब ऐसे में सोचिए, अगर आपके पास एक कार और एक घर है और इंश्योरेंस पर सालाना आपके $400 से $500 की बचत हो जाती है, या आपके पास दो कार और एक घर है और ऑटो एंड होम इंश्योरेंस पर आपकी बचत हो सकती है अप टू $2,029, तो कितना अच्छा हो, है ना. यानी कि रेट्स भी सही मिल जाए, कवरेज कॉम्प्रोमाइज ना हो एंड सेविंग्स ही सेविंग्स. तो भाई ये पॉसिबल है. कॉल सिमरन बेंस फ्रॉम ऑलस्टेट की मिसिसागा साउथ एजेंसी एट 6474535353. उनको कॉल करेंगे तो आपको और ऑप्शंस भी पता चल सकते हैं. 6474535353.

0: देना चाहते हैं अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयां और नए आयाम, तो एडवरटाइज करें हमारे साथ ऑन फिल्मी नुक्कड़। इंटरेस्टिंग पैकेजेस अवेलेबल। 6478305042, 6478305042। विजिट filminukkad.com।
1: हर एक ग्रेट जर्नी शुरू होती है एक सही पार्टनर के साथ। वेन्स ऑटो ग्रुप में हमारे डीलरशिप्स का वाइड नेटवर्क डिवर्स कम्युनिटीज को प्राउडली सर्व करता है। एक्सपर्ट कार बाइंग गाइडेंस, प्रीमियम सर्विस और ऐसा सपोर्ट जो आपकी लैंग्वेज समझे। हर डीलरशिप का प्रॉमिस एक ही है, ट्रस्टेड केयर, कंसिस्टेंट सर्विस और कंप्लीट ऑटोमोटिव सपोर्ट। फ्रॉम फर्स्ट ड्राइव टू लाइफ टाइम केयर, वेन्स ऑटो ग्रुप इज ऑलवेज देयर। विजिट veinsautogroup.com।
2: नजर बदलो, नजारे बदल जाएंगे। आप भी अपनी जिंदगी की खूबसूरती को देखें स्पेक्स एक्सप्रेस के साथ, जहां है वर्ल्ड क्लास क्वालिटी डिजाइनर सनग्लासेस, आई ग्लास फ्रेम्स एंड लार्ज सिलेक्शन ऑफ कॉन्टैक्ट लेंसेज।
3: गेट सिलेक्टेड फ्रेम रेगुलर सिंगल विजन लेंसेज फॉर जस्ट $129। 35 रेजोल्यूशन ड्राइव, ब्रैम्पटन इन वॉलमार्ट प्लाजा। कॉल 9054608888, दैट्स 9054608888।
2: सर्विंग फ्रॉम टू लोकेशंस, बेस्ट सर्विस बेस्ट प्राइस, स्पेक्स एक्सप्रेस के साथ।
0: अब फायदा उठाएं जून के हॉट हॉट रेट्स का विद अमित खुराना। 3 years fixed 4.19%, 5 years fixed 4.24%, 5 years variable 3.55%। साथ ही मिले $5,100 तक का हॉट हॉट कैश बैक भी, और इतना ही नहीं एक गिफ्ट कार्ड भी अप टू $1,500। है ना आइसिंग ऑन द टॉप। कॉल अमित खुराना एट 6473412785, 6473412785, और विजिट amitkhurana.com।
4: Another Dawn clean with the Dawn Ducks.
5: Oh, he's doing dishes with Dawn Platinum.
6: The only soap trusted to save wildlife affected by oil.
5: And Platinum removes up to 99% of grease and food residue, so he doesn't have to work so hard.
6: Well, flap my wings. What'll he do with all that unused elbow grease?
5: Organize the fridge, the spice rack, the junk drawer.
6: What are you quacking on about? He's gonna make enchiladas.
5: More dishes? That's giving this duck goosebumps.
4: Dawn Platinum, the better grease getter.
0: Follow us on Instagram. It's RJ Swati _Toronto.

0: It's time to Toyota at Markville Toyota. Corolla L lease kijiye from $84 weekly for 60 months with zero down. Ya Corolla Cross L front wheel drive lease kijiye from $98 weekly for 60 months with zero down. Or up Tundra 4x4 Crewmax Limited nightshade lease kijiye from $208 weekly for 60 months. Great offers. Sirf Markville Toyota par. More details ke liye visit kare markville.com. Markville Toyota, a proud member of Vane's Auto Group.
1: Movies released, Broadway's on. कौन सी वेब सीरीज should be binge watched? अगर है confusion, तो tune in for Nukkar's Weekend Watch. अच्छा Friday है तो Weekend Watch segment करना तो बनता है, नहीं? वैसे इस week ना there are not too many new Hindi releases. Actually एक ही है. और जो है ना वो भी कुछ खास ज्यादा एंटिसिपेशन वाली नहीं है, बट स्टिल थिएट्रिकल रिलीज है तो उसके बारे में बता देती हूँ. इसका टाइटल है रहूं मैं तेरे रूबरू. इट्स अ क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर. कास्टिंग भी कोई ज्यादा नोन नहीं है. ट्रेलर भी मुझे तो इम्प्रेसिव बिल्कुल नहीं लगा. और कहानी एक वी लॉगर की है जिसकी गर्लफ्रेंड का किडनैप हो जाता है और जिस पर मर्डर का आरोप लग जाता है, एक नहीं कुछ ज्यादा. अब उसको खुद को बचाना है और साथ में गर्लफ्रेंड को भी बचाना है. लुक्स लाइक जुड़वा शक्ल का है कोई जो ये काम कर रहा है, या जुड़वा भाई है मे बी जो ये सब कर रहा है. नाम वी लॉगर का लगा रहा है. रिव्यूज एंड रेटिंग्स भी वैसी ही है जैसा ट्रेलर कह रहा है. बेसिकली इन शॉर्ट वेस्ट ऑफ टाइम. आप स्किप कर सकते हैं मुझे ऐसा लगता है. आई एम श्योर सबके पास यू नो टाइम लिमिटेड होता है, वहां लगाए तो भाई जहां कुछ कंस्ट्रक्टिव होता है या एटलीस्ट मन तो लगता है, नहीं? अच्छा एक और रिलीज होनी थी जो हुई नहीं है इसी वीकेंड पर. नाम है उसका महाप्रभु जगन्नाथ. एनिमेटेड फर्स्ट यू नो फुल लेंथ फीचर फिल्म है ऑन लॉर्ड जगन्नाथ. इस पर पहले से ही लीगल और रिलीजियस विवाद चल रहे हैं कि यू नो डीटी को फिक्शनल एनिमेटेड क्यों कैसे दिखा दिया. और लोगों को ऑब्जेक्शन हो रहा है कुछ. सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल इसकी रिलीज पोस्टपोन कर दी है और जुलाई 28 या उसके बाद ये रिलीज होगी. आइडिया यही है कि एनुअल रथ यात्रा फेस्टिवल जो है वो एंड हो जाए, समाप्त, उसके बाद देखते हैं. एंड यस ओटीटी पर आते हैं तो हिंदी में जियो हॉटस्टार पर करण जौहर की चांद मेरा दिल रिलीज हो रही है, विच इज अ रोमांटिक ड्रामा. अनन्या पांडे और लक्ष्य कपूर की है लीड रोल्स की. अब अगर आपने थिएटर पर मिस कर दी है और देखना चाहते थे तो आपके लिए है. बाकी फिल्म थिएटर पे तो फ्लॉप रही थी, क्या मालूम टीवी पर जब आप देखें घर बैठ के इत्मीनान से तो इसमें खासियत कुछ आपको दिख जाए.

0: समर ड्राइव का एक्साइटमेंट बढ़ाएं विद टंड्रा एट डॉन वैली नॉर्थ टोयोटा। आपके नेक्स्ट एडवेंचर के लिए बिल्ट और फाइनेंसिंग सिर्फ 3.99% से। बिग सिलेक्शन, बिग समर मोमेंटम, टोयोटा करोला भी इन स्टॉक है आपकी रोजाना ड्राइव के लिए। बुक अ टेस्ट ड्राइव टुडे, वी पे टॉप डॉलर फॉर योर ट्रिप। इट्स टाइम टू टोयोटा एट डॉन वैली नॉर्थ टोयोटा.com। लोकेटेड है 3300 स्टील्स एवेन्यू, ईस्ट मार्कम पर। A proud member of Vane's Auto Group.
1: Well, हम सुन रहे थे तेरे बिना क्या है जीना। मुझे लगता है हमारी जो आंखें हैं ना, उनके लिए भी हम ये कह सकते हैं। और आंखें अगर जो दुरुस्त नहीं होंगी तो प्रॉब्लम हो ही जाएगी, है ना। तो उसके लिए टाइमली चेकअप जरूरी होते हैं, और टाइमली चेकअप्स के लिए आप वहां जाएं जहां पे आपकी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ आई चेकअप हो जाता है। अपॉइंटमेंट्स ईजीली बन जाते हैं और एकदम राइट तरीके से चेकअप होता है, रिपोर्ट जल्दी मिलती है ताकि आगे का काम आसान हो जाए। प्लस वहां पे जाएंगे तो आंखों के लिए खूबसूरत ब्रांडेड चश्मे मिलेंगे, वो भी बहुत ही अच्छे प्राइसिंग पर। वैल्यू पैकेजेस हैं वहां पे जो उनके बहुत पॉपुलर हैं। यस, मैं बात कर रही हूँ स्पेक्स एक्सप्रेस की। आप वीकेंड का फायदा उठाते हुए वहां जरूर जाइएगा। हर वीकेंड बहुत अच्छे अच्छे डिस्काउंट्स होते हैं, सिलेक्शन इज ऑसम उनका। आप जितनी ब्रांड्स देखना चाहते हैं वो ब्रांड्स आपको मिलेंगी। 2026 का लेटेस्ट कलेक्शन आ चुका है उनके पास, और वो भी डील्स में कुछ ना कुछ डिस्काउंट्स फिल्मी लुकर के लिसनर्स को जरूर मिल जाता है। पर कहाँ जाना है, क्या नंबर अपॉइंटमेंट का, और इस हफ्ते की डील्स क्या है, ये मैं आपकी बात डायरेक्ट राजन जी से कराती हूँ। राजन जी वेलकम।
2: स्वाति जी, आपको और फिल्मी लुकर के सभी लिसनर्स को प्यार भरी नमस्कार। जी, आज की डील्स के बारे में बताना चाहूंगा कि सबसे पहले जिन्होंने भी 2026 के समर कलेक्शन के लेटेस्ट मॉडल लेने हैं तो उनके लिए जी स्पेशल अरेंजमेंट है। गुची के हमारे पास, प्राडा के, टिफनी के, टॉम

फ्लैट 50% ऑफ दिए जा रहे हैं जी, और उससे भी बढ़िया डील आपको आज टॉमी हिलफिगर के फ्रेम, फैंडी के फ्रेम, वैलेंटिनो के फ्रेम एंड कैल्विन क्लाइन के फ्रेम फ्लैट 75% ऑफ करके दिए जाएं जा रहे हैं। सो एग्जांपल कैल्विन क्लाइन के फ्रेम एंड टॉमी हिलफिगर के फ्रेम ये 399 के हैं, तो 75% ऑफ करके आपको सिर्फ $99 में लेके जा सकते हैं। फैंडी के फ्रेम 599 के हैं, तो 75% ऑफ करके सिर्फ $149 में लेके जा रहे हैं। तो ये बहुत प्यारी प्यारी बहुत अच्छी अच्छी डील्स हैं जी। इसके अलावा जिन्होंने प्रिस्क्रिप्शन ग्लासेस बनवानी है तो उन्होंने आई एग्जाम भी करवाना है, आई एग्जाम के लिए डॉक्टर हमारे पास जी आज अवेलेबल हैं। आप अपना कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव आई एग्जाम करवा सकते हैं, विजन चेक करवा सकते हैं, आंखों की हेल्थ चेक करवा सकते हैं, और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के इक्विपमेंट हमारे पास जिसमें OCT, टोपोग्राफी, रेटनोग्राफी, AR, NCT, स्लेट टेम्प एंड विजुअल फीड, ये 7 अलग अलग मशीनें हैं हमारे पास जिसपे हम आपकी आंख का हर एक एक कोना चेक करते हैं जी। और जो भी रिजल्ट आता है वो आपको एक बड़ी डिजिटल स्क्रीन के ऊपर डॉक्टर दिखाते हैं, समझाते हैं कि अगर आंख में कोई प्रॉब्लम चल रही है तो क्या प्रॉब्लम चल रही है और उसका क्या ट्रीटमेंट है। खास करके अगर आपने बच्चों का एग्जाम करवाना चाहते जी तो हमने स्पेशली जो टोपोग्राफी की मशीन मंगवाई है जी, ये है ही बच्चों के लिए जिनका नंबर हर साल बढ़ जाता है, तो ये मशीन हमें पहले ही बता देती है कि अगर आपका बच्चा उस कैटेगरी में आता है जिसका नंबर हर साल बढ़ेगा, और अगर यस आपका बच्चा उस कैटेगरी में आता है तो हम उन्हें पहले ही मायोपिया कंट्रोल ट्रीटमेंट वाले ग्लासेस बना के देते हैं जो कि देखने में तो सेम ही लगते हैं लेकिन एक थेरेपी का काम करते हैं जिससे आपके बच्चों की प्रिस्क्रिप्शन वहीं की वहीं रुक जाती है। तो अगर आप ऐसा डिटेल्ड आई एग्जाम करवाना चाहते हैं और अपने बच्चों का मायोपिया कंट्रोल ट्रीटमेंट करवाना चाहते हैं तो जरूर हमें कॉल करें 905-460-8888, 905-460-8888। इसके अलावा स्वाति जी जिन्होंने लेने हमारे हमारे से वैल्यू पैकेज में तो इतनी ज्यादा सेविंग हो जाती है कि कई बार हमारे कस्टमर्स होते हैं कि वो आते हैं बर्लिंगटन से, वॉन से, मार्कम से, क्योंकि उनको होता है कि ड्राइव करके जाना वर्थ इट है क्योंकि पैसे बहुत बचते हैं। $300 की कीमत का फ्रेम हम दे रहे हैं इस वैल्यू पैकेज में, और ये सभी सिलेक्टेड ब्रांडेड फ्रेम्स हैं, लंडन फॉग, लिवाइस, रैंगलर, वैन ह्यूसन, एडी बावर्स, रूट्स, आइजोड, और तकरीबन 700 से 800 फ्रेम लगाया है हमारे पास स्वाति जी डिस्प्ले के ऊपर। हमारे लिसनर्स आकर कोई भी फ्रेम चूज कर लें, $300 की कीमत का फ्रेम है जी। सो वैल्यू पैकेज में एक तो ये फ्रेम इंक्लूडेड है, दूसरा $100 की कीमत के सिंगल विजन लेंसेज वो भी इंक्लूडेड है। सो कुल मिलाकर ये 400 का पैकेज हो जाता है जो कि हम अपने लिसनर्स को सिर्फ $129 में दे रहे हैं, सिर्फ 129। और इससे बढ़िया बात यह है कि जो ये फ्रेम्स हैं जी इन सब के ऊपर आपको 1 ईयर की मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट की वारंटी मिल रही है, प्लस इस वैल्यू पैकेज के अंदर जितने भी फ्रेम हैं इनकी सबकी हम जब आप 1 साल तक आते हो कोई भी अलाइनमेंट करवाते हो तो कोई भी अलाइनमेंट करवाने का कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है, ये सब कुछ 129 के पैकेज में इंक्लूडेड है। और ऐसे ही स्वाति जी जिन्होंने प्रोग्रेसिव ग्लासेस लेने हैं उनके लिए SLR कंपनी के हाई डेफिनेशन डिजिटल प्रोग्रेसिव लेंसेज हैं हमारे पास, ये $300 की कीमत के लेंसेज हैं एंड $300 की कीमत का फ्रेम, 600 वाला पैकेज हम अपने लिसनर्स को सिर्फ $258 में दे रहे हैं। ऑन टॉप ऑफ इट आप अपने ग्लासेस के ऊपर जितनी मर्जी कोटिंग ऐड करवाएं सभी की सभी कोटिंग्स फ्लैट 50% ऑफ दी जा रही है जी। और अगर आप दो पेयर बनवा रहे हैं तो पहले पेयर पे कोटिंग 50% ऑफ है और दूसरे पेयर के ऊपर कोटिंग्स 100% ऑफ यानी कि एब्सोल्युटली फ्री दी जाती है जी। सो अमेजिंग अमेजिंग डील है हमारे लिसनर्स के लिए। मैं जरूर कहूंगा हमारे लिसनर्स को कि पहुंचे यहाँ पर स्टेक्स एक्सप्रेस के ऊपर 35 रेजोल्यूशन ड्राइव ब्रैम्पटन में, 410 एंड स्टील्स के लिए या कैनेडियन स्टील्स के इंटरसेक्शन है जी, वॉलमार्ट वाला प्लाजा। और जिन लिसनर्स के पास बेनिफिट्स है बताते चलें कि मोस्ट इंश्योरेंस कंपनीज को हम डायरेक्ट बुक करते हैं, चाहे आपका आई एग्जाम हो, आपके प्रिस्क्रिप्शन ग्लासेस हो या फिर प्रिस्क्रिप्शन सनग्लासेस। नंबर एक ही हमारा जी 905-460-8888। और आज फ्राइडे का दिन है, वीकेंड है, हमारे फिल्मी नुक्कड़ के लिसनर्स के लिए एक स्पेशल डील होनी चाहिए। तो जो भी हमें पहले 5 कॉलर्स कॉल करेंगे जी उनके लिए स्पेशल डील है, आपको टिफनी के ब्रांडेड सनग्लासेस फ्लैट
50% ऑफ दिए जाएंगे जो भी पहले

0: $5 कॉल कर रहे हैं जी, टिफनी के ब्रांडेड सनग्लासेस फ्लैट 50% ऑफ लेने हैं, तो हमें अभी कॉल कर लें 905-460-8888, 905-460-8888।
1: तो राजन जी आपने बेस्ट लास्ट के लिए बचा के रखा, टिफनी के सनग्लासेस अगर आपको चाहिए भाई तो फटाफट कॉल कर लें, क्योंकि सिर्फ पहले 5 कॉलर्स को ही ये मिलने वाला है, 50% डिस्काउंट है उस पर, तो फटाफट कॉल करें। नंबर आपने ठीक सुना, 905-460-8888, इट्स ओनली फॉर फर्स्ट 5 कॉलर्स जो सुन के कॉल करेंगे, तो फटाफट कॉल कर लें और मुझे बताइएगा आपका अनुभव कैसा रहा। राजन जी थैंक यू सो मच फॉर ब्रिंगिंग दीज गुड वंडरफुल डील्स फॉर माय लिसनर्स। अगले हफ्ते फिर कनेक्ट करते हैं आपसे।
0: थैंक यू सो मच, थैंक यू।

0: advertise with Filmi Nukkad on CMR at 5 PM, your prime drive time show. Call Swati at 647-830-5042. That's 647-830-5042. It's the free time.
1: Our loan and credit card bills keep piling up. We have no money to pay them with our limited income.
2: Help is just one call away. No need to file bankruptcy. We can save your assets, stop collection calls and make one monthly interest-free installment for maximum debt relief. Call Aisha Munawwar, Debt Solutions Specialist and Insolvency Counselor with Rumanek & Company Limited, a company with licensed insolvency trustee. Call Aisha Munawwar at 416-428-2165.
3: Don Valley North Lexus पर कॉन्फिडेंस के साथ इलेक्ट्रिक ड्राइव करें. चूज करें Lexus RZ या ES इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और एंजॉय करें प्रीमियम ईवी एक्सपीरियंस मेड सिंपल. बाय ए फ्री लेवल 2 होम चार्जर, इंस्टॉलेशन कोऑर्डिनेशन और फर्स्ट ईयर ऑफ होम चार्जिंग रीइंबर्स्ड अप टू $1,000. प्लस रिसीव करें वन ऑन वन ईवी डिलीवरी सेशन एट योर होम और $500 क्रेडिट फॉर एनी प्रोटेक्शन पैकेज वैल्यूड एट $2,500. आज ही विजिट करें DonValleyNorthLexus.com. A proud member of Wayne's Auto Group.

0: राजधानी स्वीट्स, ये सचमुच है स्वाद की राजधानी। खुद आइए, दोस्तों को भी लाइए।
1: ये है राजधानी, राजधानी, राजधानी।
2: राजधानी स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट, द लार्जेस्ट इंडियन वेजिटेरियन रेस्टोरेंट चेन इन कनाडा। फाइंड आउट मोर एट rajdhanisweets.ca।
3: पहला घर खरीदना है या रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना है, इस सेमिनार में होंगे मॉर्गेज स्पेशलिस्ट, लीगल एक्सपर्ट्स एंड पीके सबरवाल। एंजॉय एक्सक्लूसिव इंसेंटिव्स, कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट एंड लंच 26 जुलाई 2026 को होने जा रहा है।
4: बहुत सारे इंसेंटिव्स जिनके बारे में आपने सुना भी नहीं है।
3: लिमिटेड सीट्स हैं, आज ही रजिस्टर कीजिए विद न्यू जेन रियल्टी एक्सपर्ट 6472994757 6472994757 teamsabarwal.com।
5: Real estate का कोई सवाल, टीम सबरवाल।
6: Another Don Clean with the Don Ducks.
7: Oh, he's doing dishes with Dawn Platinum.
8: The only soap trusted to save wildlife affected by oil.
7: And Platinum removes up to 99% of grease and food residue, so he doesn't have to work so hard.
8: Well, flap my wings. What'll he do with all that unused elbow grease?
7: Organize the fridge, the spice rack, the junk drawer.
8: What are you quacking on about? He's gonna make enchiladas.
7: More dishes? That's giving this duck goosebumps.
6: Dawn Platinum, the better grease getter.
9: Follow us on Facebook. Filmi Nukkad, it's the free time.

अब मैं सोच रही थी ना कि ऐसा हम सबका ऐसा ही मन होता है, एक बार तो लाइफ में लॉटरी लग जाए। कितनी बार हम न्यूज़ पढ़ते हैं और अपने मन में सोच के रह जाते हैं कि काश हमारी भी एक बार लॉटरी लग जाए, और बहुत सारे शेख चिल्लियों की तरह ना ख्वाब भी बुन लेते हैं। मेरे ख्याल से कोई शायद ऐसा इंसान होगा जिसने कभी अपने मन में एक बार ये नहीं सोचा होगा कि अगर मेरी लॉटरी लग गई ना तो मैं ये करूँगा, वो करूँगा, यहाँ जाऊँगा, वहाँ जाऊँगा, बहुत सारे प्लान्स हम बना लेते हैं शेख चिल्ली की तरह। और कई बार तो हम लॉटरी का टिकट भी पूरी जिंदगी नहीं खरीदते, फिर भी प्लान बना लेते हैं। तो आप मुझे कॉल करके बताएं कि आपने कभी ऐसा सोचा है या नहीं, और सोचा है तो आपने क्या सोचा कि लॉटरी लगेगी तो आप क्या करने वाले हैं। जो भी है आप शेयर कर सकते हैं तो मुझसे शेयर करें, ऑफ एयर, ऑन एयर, जैसे भी आप शेयर करना चाहते हैं। बट स्टूडियो का नंबर 4165930055। लॉटरी लगना इज मोस्टली अबाउट मनी दो, बट कई बार मुझे लगता है फटीले जेब सुलझाने के अलावा एक काम और होता है। लॉटरी जब लगती है ना, पैसे वाली नहीं लगे तो रिश्तों में भी कई बार लॉटरी लग जाती है, तो ऐसे ही लग जाए ना तो जिंदगी भर लाइफ सेट हो जाती है ना।

0: जेनेसिस मार्कम पर लग्जरी मिलती है एक एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा। लीज कीजिए ब्यूटिफुली डिजाइन्ड 2026 G70 सिर्फ 1.9% से अप टू 39 मंथ्स, या लीज कीजिए 2026 GV70 सिर्फ 2.9% से। बुक योर टेस्ट ड्राइव टुडे। विजिट genesismarkham.ca, लोकेटेड एट वुडबाइन एवेन्यू एंड जॉन स्ट्रीट, मार्कम। Genesis Markham, doing luxury your way. A proud member of Vane's Auto Group.
1: All right. इस वक्त आपको अगले वीकेंड के बारे में बताती हूँ, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली मेरे लिए और मेरे जैसे कुछ लोगों के लिए जो ये सोचते हैं कि हम कुछ तो ऐसा करें कि किसी का भला हो पाए हमारे जरिए, हम उसमें कंट्रीब्यूट कुछ तो कर पाए, कुछ तो लाइफ अपनी मीनिंगफुल बना पाए। तो उसके लिए एकल विद्यालय ऑफ कनाडा, जो भी मिशन उसका रहता है, उसमें जो भी वो काम करता है, मेरी कोशिश और मेरे साथ और बहुत सारे लोग हैं जो इनकी कोशिश रहती है कि हम उनके मिशन में कंट्रीब्यूट कर पाएं। और इसीलिए एकल विद्यालय ऑफ कनाडा की एनुअल पिकनिक होती है समर्स में हर साल, विच इज अ सोशल फंड रेजर। इस साल भी है अगले हफ्ते, अगले वीकेंड पे। आपने अब तक टिकट्स नहीं लिए हैं तो जरूर ले लीजिए। पर वहां पे क्या क्या होने वाला है पिकनिक में, उसके लिए डिटेल्स के लिए मेरे साथ जुड़ी है वो सोनिया, जो कि एकल कनाडा के साथ वॉलंटियर तो है ही, जो यूथ उनके वॉलंटियर्स हैं उनका सारा ट्रेनिंग वो ही देखती है। सोनिया वेलकम।
2: हेलो एवरीवन।
1: हेलो हेलो, एंड हाउ द पिकनिक प्लान इज गोइंग?
2: पिकनिक प्लान इज गोइंग वेरी वेल, बहुत अच्छा चल रहा है। मैं सब ऑडियंस को, दर्शकों को हेलो कहना चाहती हूँ और इनवाइट करना चाहती हूँ कि एकल विद्यालय कनाडा के पिकनिक पे जरूर आएं। एकल विद्यालय के साथ मैं 8-9 साल पहले जुड़ी थी, जब मेरी डॉटर ग्रेड 10 में थी और वॉलंटियर करना चाहती थी। तो वेयर बेटर टू गो फॉर अ वॉलंटियर फॉर अ यूथ देन कंट्रीब्यूट बैक टू चिल्ड्रन ऑफ इंडिया। तब से मैं एकल के साथ एज अ यूथ वॉलंटियर्स के साथ मैं जुड़ी थी और आज तक यूथ वॉलंटियर्स के साथ मैं रहती हूँ। अब मेरा सन जो हाई स्कूल जाता है वो वॉलंटियर कर रहा है। तो पिकनिक है 26 जुलाई को।
1: 26 जुलाई, दैट इज संडे, फ्रॉम 11 AM टू 5 PM, ग्लेन हैपी कॉन्जर्वेशन पार्क कैलिटन में है ये। आपने टिकट्स नहीं लिए तो ले लीजिए, क्योंकि अभी ले लेंगे ना तो $27 में ले लेंगे, लेकिन अगर आप पिकनिक वाली जगह पे उस दिन पहुंच के लेंगे तो महंगे पड़ेंगे। तो अकलमंदी कहती है कि अभी ले लें। बट सोनिया, मैं आपके जरिए ये जरूर बताना चाहूंगी अपने लिसनर्स को कि वाई एकल की पिकनिक इज सो इम्पोर्टेंट टू अटेंड।
2: एकल की पिकनिक इज सो इम्पोर्टेंट टू अटेंड फॉर मेनी रीजन। फर्स्ट रीजन इज योर ओन। आप डेफिनेटली अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन को देना चाहेंगे सपोर्ट, तो पिकनिक पे आके टिकट खरीद के इंजॉय करके आप जरूर देंगे। सेकेंड, पिकनिक की एक्टिविटीज बहुत अमेजिंग रहती हैं, पूरा दिन का फन रहता है। आपको फूड आइटम्स में बहुत अच्छी इंडियन फूड मिलता है, वेजिटेरियन, आपको चाय, स्नैक्स, सब कुछ मिलता है। अलॉन्ग साइड वी प्ले तंबोला, दिस ईयर वी आर हैविंग अ सॉकर मैच, फीफा के टाइम पे सॉकर मैच के बेटर क्या हो सकता है, वॉलीबॉल, क्रिकेट, बहुत कुछ।
1: इतने सारे स्पोर्ट्स रहते हैं वहां पे, मैं देखती हूँ, और सभी लोग पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, किसी भी एज ग्रुप के लोग होते हैं ना, सभी कर रहे होते हैं। प्लस वहां पे योगा भी हो रहा होता है, और इतने सारे हमारे स्पॉन्सर्स हैं, उनका भी धन्यवाद देना चाहूंगी मैं यहाँ पर, जो एकल के साथ जुड़ रहे हैं इस पिकनिक के जरिए, वो भी कहीं ना कहीं कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। उनकी तरफ से भी बहुत सारे रेफल ड्रॉज और गिव अवेज रहते हैं, छोटे छोटे, बड़े भी रहते हैं। और खाने की आपने बात करी तो मैं मेन्यू चेक कर रही थी सोनिया, इतना जबरदस्त मेन्यू है। सुबह ब्रेकफास्ट में इतनी सारी चीजें हैं, देन लंच में तो इतनी सारी डिशेस हैं, और इवनिंग में मैं देख रही थी जलेबी, चाय एंड सो मेनी थिंग्स। बहुत अच्छा सा प्लान है। तो पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन टू द होल टीम के बहुत अच्छे से पिकनिक प्लान करी जाती है हर साल, इस साल भी करी गई है। और आपको स्पेशल, क्योंकि यूथ जो इतना इन्वॉल्व हो रहा है एकल के साथ, आप इतने अच्छे से यूथ का पूरा कहते हैं ना देख पाते हैं उनको, जिस तरीके से आप काम देते हैं कि वो वॉलंटियर करना सीख पाएं और जुड़ पाए, एक बिलोंगिंगनेस के साथ जुड़ पाए, मुझे लगता है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड एज यू मेंशन कि जो एकल का अपना मिशन है, अंडर प्रिविलेज्ड एंड अनप्रिविलेज्ड बच्चों की पढ़ाई, उनकी एजुकेशन, उनकी वेलबींग, उसमें हम सभी सिर्फ पिकनिक मनाने भर से सोचो तो कंट्रीब्यूट कर पाते हैं। व्हाट बेटर देन दिस, कि अपना भी मजा हो गया और किसी का भला भी हो गया। तो सोनिया, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। एक चीज और बताएं कि उस दिन जो लोग पिकनिक पे आ रहे हैं उनके बच्चे अगर जो छोटे छोटे हैं, तो उन्हें भी टिकट लेना पड़ेगा क्या?
2: नहीं, बिलो सिक्स के लिए कोई टिकट नहीं है, लेकिन बच्चों के लिए फन ही फन है. क्राफ्ट टेबल होती है, हमारे यूथ वॉलंटियर्स उनके साथ क्राफ्ट करते हैं, हैना करते हैं, फेस पेंटिंग करते हैं, ऑल फॉर लाइक फन. सो लिटिल किड्स एंजॉय द होल डे.
1: मतलब, और मुझे याद है अंताक्षरी हम हर साल करते हैं, उसमें बहुत लोग मजा करते हैं. अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन, कि जो भी लोग आ रहे हैं वो अपने लिए कुछ चीजें साथ में भूले ना लेके आए, बिसाइड्स देयर यू नो स्पिरिट, हाई स्पिरिट.
2: ऑफ कोर्स यू गोइंग फॉर अ पिकनिक एंड इट्स ब्यूटिफुल ग्रीन एरिया, ब्रिंग योर सनस्क्रीन, योर हैट इफ यू वॉन्ट टू ब्रिंग अ मैट. अपने साथ जो भी आप नॉर्मल पिकनिक पे लेके जाए यहाँ जरूर लाएं, वाटर बॉटल लाएं, एनवायरमेंटल फ्रेंडली रहना चाहते हैं तो डेफिनेटली ब्रिंग एवरीथिंग दैट यू वुड ब्रिंग टू अ रेगुलर पिकनिक एंड कम एंड एंजॉय.
1: बस फूड लेके आने की जरूरत नहीं, क्योंकि फूड हम प्रोवाइड करेंगे, पानी भी हम प्रोवाइड करेंगे, पर अपनी बॉटल लेके आए ताकि आप उसे बार बार भर सकें. बाकी अपना बिछाने के लिए मैट और ब्लैंकेट जैसे होते हैं जिसपे आप बैठ सकें, और सनस्क्रीन और टोपी, इस तरह की चीजें आप ला सकते हैं. या थैंक यू सो मच सोनिया, आप ऐसी प्लान करते रहे और यूथ को ऐसी मोटिवेट करते रहे.
2: थैंक यू स्वाति.
1: ऑलराइट, ये थी हमारे साथ सोनिया फ्रॉम एकल विद्यालय ऑफ कनाडा. और मैं फिर से याद दिला दूं, पिकनिक इन द पार्क है विच इज अ सोशल फंड रेजर. ईच पेनी दैट इज रेज्ड विल गो टुवर्ड्स द मिशन ऑफ एकल विद्यालय ऑफ कनाडा, दैट इज एजुकेशन ऑफ अंडर प्रिविलेज्ड एंड अनप्रिविलेज्ड चिल्ड्रन भारत में जो ट्राइबल और रूरल एरियाज में होते हैं. टिकट इज ओनली फॉर $27. पूरे दिन की एक्टिविटीज हैं जहाँ पे पिकनिक वाली, और बहुत सारे वहाँ पे प्राइजेस आप जीत सकते हैं, कॉन्टेस्ट वगैरह चलते रहेंगे वहाँ पे, तंबोला वगैरह होता है और बहुत सारी चीजें जीतने के लिए हो सकते हैं अंताक्षरी वगैरह में. तो आइएगा जरूर. बट टिकट कैसे ले सकते हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट. टिकट के लिए आप जा सकते हैं उनकी वेबसाइट ekal.ca, दैट इज ekal.ca. थैंक यू.

0: हुंडई का नेक्स्ट स्टार्ट्स नाउ सेल्स इवेंट चल रहा है डॉन वैली नॉर्थ हुंडई पर। अब सिक्योर करें साल के लोएस्ट रेट्स। हर कस्टमर क्वालिफाई करता है अप टू 1% रेट रिडक्शन के लिए या कैश परचेस पर $500 का बेनिफिट। ऑफर सिर्फ जुलाई 31st तक है। एट डॉन वैली नॉर्थ हुंडई वी स्पीक योर लैंग्वेज। विजिट DonValleyNorthHyundai.com या Woodbine Avenue and Denison Street, Markham. Don
1: Valley North Hyundai, doing
2: a proud member of Wayne's Auto Group.
3: Today's trends and trolls. Kuch seedhi baat, kuch cool bol.
4: Main te bas follow karta. Main te bas follow karta.
5: मैं तो बस फॉलो करती और आप लोगों से शेयर कर देती कि आज के कुछ चर्चाफुल हाइलाइटेड ट्रेंडिंग टॉपिक्स क्या हैं। तो भाई सबसे पहले ट्रेंडिंग इज टैन चाओ, एज टूरिज्म कल्चर और गेमिंग मिनिस्टर जो हैं हमारे, उन्होंने कैबिनेट से रिजाइन कर दिया है। फोर्ड ने आज अनाउंस किया ये 2023 से अब तक कह रहे हैं $16,000 टोरंटो के होटल एक्सपेंसेस में उन्होंने डाले थे। टैक्स पेयर्स मनी रे। अब ये मत पूछना उनका घर टोरंटो में है कहाँ। If you know, you know. पहले गलती उन्होंने स्वीकार ली है, ये अच्छी बात है, और अब एज MPP वो विलोडेल के लोगों को सर्व करते रहेंगे। फिलहाल इस न्यूज के चलते काफी सारे और पॉलिटिशियंस की स्पेंडिंग पर, स्पेशली होटल स्पेंडिंग पर सवाल खड़ा हो चुका है। बोले तो मेनी आर अंडर स्कैनर, पब्लिक की निगाह में तो फॉर श्योर होगा उनका कुछ या नहीं अभी। ये बात है। और देन ट्रेंडिंग इज वाइल्ड फायर स्मोक, आज भी वार्निंग का कलर है नारंगी, मींस सेम एडवाइस फॉर एवरीबॉडी जो दो दिन से चल रही थी। 190 वाइल्ड फायर से लड़ाई है जारी, आउट ऑफ कंट्रोल है उनमें से अभी आधी। देन ऑल्सो ट्रेंडिंग इज नील लिम्डन हियर, एज हमारे ओंटारियो के मिनिस्टर ऑफ स्पोर्ट्स ने रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है, August 4 से ये इफेक्टिव होगा। देन भारत में ट्रेंडिंग रहा हाइड्रोजन ट्रेन, भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन इज ऑन ट्रैक, ऐतिहासिक कदम है ये, जहां भारत ने क्लीन ग्रीन और सस्टेनेबल रेन ट्रांसपोर्ट को चुना। चर्चा में है आमिर खान, और इस बार कोई फिल्म या अपनी शादी के लिए नहीं, उन्होंने एक जगह जब उनसे पूछा गया कि 3 Idiots में जो उनका कैरेक्टर है वो क्या सोनम वांगचुक से ही इंस्पायर्ड है, उस सवाल पर उन्होंने साफ नकार दिया, कहा सोनम वांगचुक और 3 Idiots का आपस में कोई लेना देना नहीं है, शूटिंग करते वक्त तो हमें पता भी नहीं था कि वो कौन है, उनके बारे में कुछ नहीं जानते थे। वेल, इससे जनता भी शॉक्ड है, CJP भी, आमिर रॉक्ड या नहीं ये डाउटफुल है। ट्रेंडिंग इज ऑल्सो प्रियंका चोपड़ा, क्योंकि कल है उनका बर्थडे, तो आज ही से उनके अचीवमेंट्स, इंटरव्यूज, पुरानी पिक्चर्स, जब वो मिस वर्ल्ड बनी थी तब का सारा, यू नो, उनकी जगह जगह जो अच्छे अच्छे से कोट्स हैं जो वो देती रहती है इंटरव्यूज में, वो सारे सोशल मीडिया पे ही चर्चा का विषय है। दिस देसी गर्ल फॉर श्योर रॉक्स, ये तो हम सभी मानेंगे।

0: लेना चाहते हैं अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयां और नए आयाम, तो एडवरटाइज करें हमारे साथ ऑन फिल्मी नुक्कड़। इंटरेस्टिंग पैकेजेस अवेलेबल। 6478305042, 6478305042, विजिट filminukkad.com।
1: नजर बदलो, नजारे बदल जाएंगे। आप भी अपनी जिंदगी की खूबसूरती को देखें स्पेक्स एक्सप्रेस के साथ, जहां है वर्ल्ड क्लास क्वालिटी डिजाइनर सनग्लासेस, आई ग्लास फ्रेम्स एंड लार्ज सिलेक्शन ऑफ कॉन्टैक्ट लेंसेज।
2: गेट सिलेक्टेड फ्रेम रेगुलर सिंगल विजन लेंसेज फॉर जस्ट $129। 35 रेजोल्यूशन ड्राइव, ब्रैम्पटन इन वॉलमार्ट प्लाजा। कॉल 9054608888, दैट्स 9054608888।
1: सर्विंग फ्रॉम 2 लोकेशंस, बेस्ट सर्विस बेस्ट प्राइस, स्पेक्स एक्सप्रेस के साथ।
3: क्या आपके होम एंड ऑटो इंश्योरेंस के रिन्यूअल का टाइम आ गया है? क्या आप गुड रेट्स में एक सही कवरेज ढूंढ रहे हैं? तो कॉल सिमरन बेंस फ्रॉम ऑल स्टेट की बीसी सागर साउथ एजेंसी एट 6474535353। दो कारों और एक घर की इंश्योरेंस पर $2,029 तक की सेविंग्स कर सकते हैं। सिमरन बेंस एंड ऑल स्टेट के साथ आप हैं इन गुड हैंड्स। कॉल सिमरन बेंस एट 6474535353, 6474535353। And yes, even for one car and a home, $400 to $500 की annual savings possible. Call Simran Benz 6474535353.
4: हर एक ग्रेट जर्नी शुरू होती है एक सही पार्टनर के साथ। Vains Auto Group में हमारे डीलरशिप्स का वाइड नेटवर्क डिवर्स कम्युनिटीज को प्राउडली सर्व करता है। एक्सपर्ट कार बाइंग गाइडेंस, प्रीमियम सर्विस और ऐसा सपोर्ट जो आपकी लैंग्वेज समझे। हर डीलरशिप का प्रॉमिस एक ही है, trusted care, consistent service, or complete automotive support. From first drive to lifetime care, Vains Auto Group is always there. Vains Auto Group, Vains Auto Group, Canada. Visit VainsAutoGroup.com.
5: Dad is in a jolly good mood today. What is the reason?
6: This is the effects of famous masala chai by Navigator's Cafe.
5: I know this place. They're also famous for delicious snacks like aloo patties, samosa, vada pav, spring rolls, mango lassi, and my favorite, samosa chaat and bhel.
7: Navigator's Cafe, located at northwest corner of Queen Street East and Airport Road in Brampton. They are conveniently open 24/7.
0: Get on your feet with Peppy Nukkad Beats.

That was from Sultan, जिसका initially दंगल सोचा गया था नाम पर, as we all know कि White got changed from दंगल to Sultan. वो क्या है ना, बेबी को बेस पसंद था तो आमिर को टाइटन दंगल पसंद था, एंड इसीलिए टू अवॉइड द कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ नाम सलमान की दंगल बन गई सुल्तान. अब दोनों ही फिल्में थी कुश्ती बेस्ड, वो बात और है कि एक की फिक्शन तो दूसरी रियल लाइफ स्टोरी और कैरेक्टर्स पर बेस्ड. पब्लिक उन्होंने दोनों को ही दिया बॉक्स ऑफिस पर भरपूर भरपूर प्रेम. वो कहते हैं ना कि टाइटल टाइटल पर लिखा होता है फिल्म का नाम, बस वैसे ही फिल्म फिल्म पर भी लिखा होता है एक्टर्स का नाम. अब देखो ना, बिफोर रणदीप हुडा इट वाज संजय दत्त का नाम कंसिडर्ड फॉर द रोल ऑफ कोच, विच आई गेस वाज अ गुड डिसीजन कि रणदीप हुडा बने, क्योंकि हरियाणवी एक्सेंट की जब बात आती है तो हुडा का जो नेचुरली एक्सेंट है वो काफी जबरदस्त है ना, वेरी अप्ट फॉर द रोल. वैसे फिल्म देख के ना मुझे पहली बार लगा था कि सलमान ना ही इज कैचिंग अप विद द एज. उसमें एक रोल भी था जिसमें एक्चुअली ये दिखाया भी जाना था, शायद इसलिए भी लगा. तो दे वर सक्सेसफुल विद दैट सीन, वो जो पॉन्च सीन था फोल्डर सुल्तान. कहते हैं सलमान को खुद कई महीने लगे टू से यस टू द सीन, कि अच्छा कर लूंगा. देन फ्यू डेज टू रियली बी रेडी मेंटली टू डू दैट सीन, और जिस दिन शूटिंग थी उस दिन भी कुछ घंटे लगे उन्हें. बट यू नो व्हाट, सिंसियरिटी जो होती है टुवर्ड्स योर वर्क रोल दैट पेज ऑफ रियली वेल. सुल्तान के साथ तो यही हुआ, तोरे इसने कई रिकॉर्ड्स, निक्कर नो टी शर्ट पहनकर भी सलमान एक्चुअली कुड डू सक्सेसफुली ऑल दोज दिल दिया गल्लास विद हिज फैंस.

0: जेनेसिस मार्कम पर लग्जरी मिलती है एक एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा। लीज कीजिए ब्यूटिफुली डिजाइन्ड 2026 G70 सिर्फ 1.9% से अप टू 39 मंथ्स, या लीज कीजिए 2026 GV70 सिर्फ 2.9% से। बुक योर टेस्ट ड्राइव टुडे। विजिट genesismarkham.ca, लोकेटेड एट Woodbine Avenue एंड जॉन स्ट्रीट, मार्कम। Genesis Markham, doing luxury your way. A proud member of Vane's Auto Group.
1: Movies released Broadway's on. कौन सी वेब सीरीज शुड बी बिंज वॉच्ड? अगर है कंफ्यूजन तो ट्यून इन फॉर नुक्कड़'स वीकेंड वॉच।
2: ये दिन जहाँ मोस्टली इंडोर रहो वाली हिदायतों से निकला बिकॉज ऑफ दैट पुअर एयर क्वालिटी। वीकेंड पर बारिश कहेगी कि क्यों ही निकला जाए भाई, क्यों ना घर पर बैठकर ही बोर्ड गेम्स, चटपटी बातें और चाय पकौड़ों का मजा लिया जाए, यही सही। पर फिर भी अगर आपके पैरों में है चक्कर और दिल से आप हैं घुमक्कड़, तो शहर भी अपना है भाई फुल ऑन हैपनिंग। जहां वीकेंड पर है यहां वहां तरह तरह के फेस्टिवल्स के मंजर, खूबसूरत मंजर, जैसे बिग ऑन ब्लू फेस्टिवल जिसके लिए ब्लूर इज गोइंग टू बी कार फ्री। इस साल है ये इनकी 20th एनिवर्सरी, मेला सा है फुल ऑन वहाँ पे। कहते हैं कोई 1,80,000 लोग वहाँ पे आते हैं हर साल। देन देयर इज यूनिटी फेस्ट एट हार्बर फ्रंट सेंटर विद कैनेडाज नेशनल हिप हॉप फेस्टिवल, जहाँ पे एग्जीबिशन, परफॉर्मेंसेस, मार्केट प्लेस, डांस बैटल्स ये सब रहेगी, और ये सब सैटरडे को है। ब्राजील फेस्ट भी है, स्पिरिट ऑफ ब्राजील, ये भी मना रहे हैं 20th एनिवर्सरी अपनी। यहाँ भी ब्राजीलियन म्यूजिक, डांस, ट्रेडिशंस, खाना पीना ये सब आप विटनेस कर सकते हैं, ये दो दिन है। देन देयर इज टेस्ट ऑफ वियतनाम, जहाँ सिर्फ ऑथेंटिक टेस्ट नहीं, उनका कल्चर, म्यूजिक ये सब आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। आज से ही शुरू है ये, तो यानी कि दो दिन प्लस फ्राइडे इवनिंग मिला के मोर देन टू डेज। देन टोरंटो ब्लू जेज होम सीरीज है, वो आप देख सकते हैं। और ये संडे को तो फीफा फाइनल है, स्पेन वर्सेस अर्जेंटीना। देन दुर्हम में यात्रा है ऑन 18th, एंड वहाँ पे देखिए तो वहाँ पे क्या, टोरंटो में भी बहुत सारे कुछ रोड क्लोजर्स भी रहेंगे ही, तो जब भी आप घर से निकले तो देख के निकले। बाकी मैं सोच रही थी बोलते बोलते भी कि कितना सच है ना, हमारा जो ये शहर है ये कितना डाइवर्स और कलरफुल है। तो इफ यू लव टू एक्सप्लोर डिफरेंट कल्चर्स, म्यूजिक, फूड, एक्चुअली अपनी सिटी टोरंटो इज द बेस्ट सिटी। मानेंगे? मान लीजिए।

the birth anniversary of superstar of yesteryears, जिसके लिए मैं कह सकती हूँ कि बहुत सारे अंकल आंटीज ऑफ दैट टाइम वो अभी भी कह सकते हैं कि हम तो भाई राजेश खन्ना साहब के फैन हैं। उनका शॉर्ट कुर्ता स्टाइल फैशन बन गया था उस टाइम, और जो सर टेढ़ा करते हुए स्माइल करते थे ना, कितने ही लड़कों का उस टाइम के रोमांटिक स्टाइल बन गया था। यूं तो एक्टिंग में देखें वो ओरिजिनल थे एकदम, पर गुरुदत्त साहब को अपना आइडल बताते थे, कहते थे कि सबसे इंस्पायर होता हूं मैं, दिलीप साहब से डेडिकेशन इंटेंसिटी में, राज कपूर साहब से स्पॉन्टेनिटी में, देवानंद साहब से स्टाइल में, और शम्मी कपूर साहब से रिदम में। बट फिर भी जानते हैं उनके लिए उनके सबसे बड़े आइडल कौन थे, जिनको वो कहते हैं कि ग्रेटेस्ट लिविंग ऑफ दैट टाइम, जब इन्होंने वो इंटरव्यू में कहा था उस समय लिविंग थे, वो कौन थे? बंगाली सिनेमा के एक्टर उत्तम कुमार, वो उनके ऑल टाइम फेवरेट थे। वेल, टैलेंट इज ऑलवेज ग्रेट व्हेन इट हैज एन अर्ज टू लर्न मोर फ्रॉम अदर टैलेंट्स। कहते हैं ना, वो टैलेंट हमेशा आगे जाता है जो एरोगेंस को साइड में रखता है और सीखने की ललक को, भूख को एकदम आगे।

0: देना चाहते हैं अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयां और नए आयाम, तो एडवरटाइज करें हमारे साथ ऑन फिल्मी नुक्कड़। इंटरेस्टिंग पैकेजेस अवेलेबल। 6478305042, 6478305042। विजिट filminukkad.com।
1: समर ड्राइव का एक्साइटमेंट बढ़ाएं विद टंड्रा एट डॉन वैली नॉर्थ टोयोटा। आपके नेक्स्ट एडवेंचर के लिए बिल्ट और फाइनेंसिंग सिर्फ 3.99% से। बिग सिलेक्शन, बिग समर मोमेंटम, टोयोटा करोला भी इन स्टॉक है आपकी रोजाना ड्राइव के लिए। बुक अ टेस्ट ड्राइव टुडे, वी पे टॉप डॉलर फॉर योर ट्रेन। इट्स टाइम टू टोयोटा एट डॉन वैली नॉर्थ टोयोटा.com। लोकेटेड है 3300 स्टील्स एवेन्यू, ईस्ट मार्कम पर। A proud member of Vane's Auto Group.

वाई फाई और स्मोक की चर्चा है ना सब तरफ, जिसके लिए कहा जा रहा है बार बार कि जरूरी नहीं तो ना निकलो भाई घर से बाहर, और निकलो तो मास्क पहनकर। तो भाई इसको लाइटली बिल्कुल ना लें। आई वॉज रीडिंग कि इससे सिर्फ नहीं खराब हो सकते आपके फेफड़े, बल्कि अगर ये ब्लड स्ट्रीम से होते हुए या नाक के जरिए पहुंच गई सीधा भेजे में, तो इसके टॉक्सिन्स कैन कॉज इन्फ्लेमेशन रिजल्टिंग इन टू फॉगिनेस, लैक ऑफ फोकस एंड हेडेक्स। और ज्यादा हो गया ना तो ब्रेन सेल्स भी हो सकते हैं डैमेज। वैसे इस स्मोक के चलते जहां यूएस पॉलिटिशियंस कस रहे हैं कैनेडा पे तंज, सेनेटर्स ऑन सोशल मीडिया आर कॉलिंग फॉर सैंक्शंस, मोर टैरिफ्स ओवर वाइल्डफायर स्मोक, ट्रंप टू थ्रेटन्स, वही सवाल उठ रहा है हम कैनेडियंस में भी कि वाइल्डफायर मैनेजमेंट कैनेडा की प्रायोरिटी आखिर होगी कब, जब होती है ये हर साल। बस इतनी सी है बात।

0: हाइब्रिड के बारे में सोच रहे हैं? लेकिन क्या एक गैस लेक्सस आपके लिए ज्यादा सेंस बनाता है? डॉन वैली नॉर्थ लेक्सस पर NX350 और RX350 प्रीमियम पैकेजेस इमीडिएट डिलीवरी के लिए अवेलेबल हैं। और वेलकम बैक लॉयल्टी ऑफर के साथ आप सेव कर सकते हैं थाउजेंड्स। लीज स्टार्टिंग फ्रॉम जस्ट $657 पर मंथ फॉर 24 मंथ्स विद एन अमेजिंग 0.4% लीज रेट यूजिंग योर रिफंडेबल डिपॉजिट्स। आज ही विजिट करें DonValleyNorthLexus.com, a proud member of Wint Auto Group.
1: अच्छी लाइफ के लिए एक सक्सेसफुल करियर होना बहुत जरूरी है और उसके लिए रूहानी कॉलेज ऑफ हेल्थ बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी। वहाँ से सिर्फ एक साल का RMT हाइब्रिड कोर्स करने पर आप $15,000 पर मंथ तक कमा सकते हो। एलिजिबिलिटी 12th पास ओनली। इसके अलावा एक साल की ऑस्टियोपैथिक मैनुअल प्रैक्टिस, एक्यूपंक्चर एंड नेचुरल हीलिंग साइंसेज का कोर्स भी है जिसे करके $300 पर आठ तक आप कमा सकते हो। कोर्सेज तो और भी बहुत है यहाँ, बस आप अपना करियर बनाने का करो पक्का इरादा। विजिट 239 क्वीन स्ट्रीट ईस्ट यूनिट 21 Brampton or call 905-731-2555. Visit RuhaniCollege.com.

मेनुकर सीएमआर 101.3 एफएम पर यू आर विद स्वाति एंड पायस मिनी एंड अ क्विक रिमाइंडर, अगर आप हमसे जुड़े रहना चाहते हैं आफ्टर दिस शो एज वेल तो आप हमसे हमारे सोशल मीडिया पे जुड़ सकते हैं। हमारा हैंडल रहता है rjswati_toronto, चाहे वो इंस्टाग्राम हो या फेसबुक या टिकटॉक या ट्विटर बोले तो एक्स या लिंक्डइन या कोई और, आप हर सोशल मीडिया पे हमसे rjswati_toronto के अंडर में जुड़ सकते हैं। दैट्स माई हैंडल एट ऑल द सोशल मीडिया प्लेसेस। कई बार आप कोई विन जीतते हैं उसके बारे में बात करने, किसी स्पॉन्सर की कोई डिटेल चाहिए होती, कोई फीडबैक देना है, और इन सभी प्लेटफॉर्म्स पे कई बार मैं कुछ अलग अलग चीजें पोस्ट करती रहती हूँ, कंटेस्ट होते हैं, बहुत सारे क्विजेस चलते रहते हैं, एंड देयर इज अ डिफरेंट स्टफ जो सोशल मीडिया पे हम लोग डालते हैं, तो इट्स इन्फॉर्मेटिव, इट्स एंटरटेनिंग एंड इट्स गुड टू कनेक्ट देयर एज वेल, है ना। फैमिली है तो वहीं पे कनेक्ट होना भी अच्छा लगता है, सिर्फ 5 से 7 का इंतजार हमें रोज नहीं करना पड़ेगा एक दूसरे से मिलने के लिए, तो इट्स वेरी ईजी टू स्टे कनेक्टेड थ्रू सोशल मीडिया। तो याद रखें rjswati_toronto, एंड इफ यू वॉन्ट टू बी अ स्पॉन्सर ऑन द शो, आप चाहते हैं कि आपके बिजनेस को हम करें प्रमोट, इसका फिल्मी नुक्कड़ फैमिली का स्पॉन्सरशिप्स का आप हिस्सा बनना चाहते हैं, तो प्लीज मुझे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं मेरे मोबाइल पर। माई नंबर इज 6478305042, दैट 6478305042।

0: देना चाहते हैं अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयां और नए आयाम, तो एडवरटाइज करें हमारे साथ ऑन फिल्मी नुक्कड़। इंटरेस्टिंग पैकेजेस अवेलेबल। 6478305042, 6478305042। विजिट filminukkad.com।
1: क्या आपके होम एंड ऑटो इंश्योरेंस के रिन्यूअल का टाइम आ गया है? क्या आप गुड रेट्स में एक सही कवरेज ढूंढ रहे हैं? तो कॉल सिमरन बेंस फ्रॉम ऑलस्टेट की बीसी सागर साउथ एजेंसी एट 6474535353। दो कारों और एक घर की इंश्योरेंस पर $2,029 तक की सेविंग्स कर सकते हैं। सिमरन बेंस एंड ऑलस्टेट के साथ आप हैं इन गुड हैंड्स। कॉल सिमरन बेंस एट 6474535353, 6474535353. And yes, even for one car and a home, $400 to $500 की annual savings possible. Call Simran Benz 6474535353.
2: Say wow! अपना पहला घर खरीदना है या real estate में invest करना है? इस seminar में होंगे mortgage specialist, legal experts and PK Sabarwal. Enjoy exclusive incentives, complimentary breakfast and lunch. 26 July 2026 को होने जा रहा है.
3: बहुत सारे incentives जिनके बारे में आपने सुना भी नहीं है.
2: Limited seats हैं, आज ही register कीजिए with new gen realty expert 6472994757, 6472994757, teamsabarwal.com.
4: Another Don Clean with the Don Ducks.
5: Oh, he's doing dishes with Dawn Platinum.
6: The only soap trusted to save wildlife affected by oil.
5: And Platinum removes up to 99% of grease and food residue, so he doesn't have to work so hard.
6: Well, flap my wings. What'll he do with all that unused elbow grease?
5: Organize the fridge, the spice rack, the junk drawer.
6: What are you quacking on about? He's gonna make enchiladas.
5: More dishes? That's giving this duck goosebumps.
4: Dawn Platinum, the better grease getter.
7: हर एक ग्रेट जर्नी शुरू होती है एक सही पार्टनर के साथ. वेन्स ऑटो ग्रुप में हमारे डीलरशिप्स का वाइड नेटवर्क डिवर्स कम्युनिटीज को प्राउडली सर्व करता है. एक्सपर्ट कार बाइंग गाइडेंस, प्रीमियम सर्विस और ऐसा सपोर्ट जो आपकी लैंग्वेज समझे. हर डीलरशिप का प्रॉमिस एक ही है, ट्रस्टेड केयर, कंसिस्टेंट सर्विस और कंप्लीट ऑटोमोटिव सपोर्ट फ्रॉम फर्स्ट ड्राइव टू लाइफ टाइम केयर. वेन्स ऑटो ग्रुप इज ऑलवेज देयर. विजिट veinsautogroup.com.
0: Follow us on Instagram. It's RJ Swati _Toronto.

And today marks the birthday of 80s ki actress, ek wo next door girl wala face, Zarina Wahab, jinka debut hua tha film Ishq Ishq se. पर नोटिस में आई असल में वो चितचोर और घरोंदा जैसी फिल्मों से. कहते हैं वेल ट्रेन थी फ्रॉम फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे, पर काम नहीं मिल रहा था. फिर राज कपूर साहब द शोमैन, उन्होंने दी सलाह अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे कि थोड़ी अपीयरेंस बदलो भाई, थोड़ी ग्रूमिंग करो और थोड़ी नेटवर्किंग भी करो, क्योंकि पार्टी वार्टी में आओगे जाओगे, दिखोगे तो याद भी रहोगे. एंड इट वर्क्ड फॉर हर. एक्टिव आज भी हैं एज कैरेक्टर आर्टिस्ट, बहुत अच्छे अच्छे रोल्स इन्हें अभी भी मिल जाते हैं. सो विशिंग ज़रीना जी ऑन अ बर्थडे टुडे. दिस इज स्वाति साइनिंग ऑफ फॉर नाउ, सेइंग कि बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि सुनो सबकी करो मन की, पर जो सुनकर सीखो को मन में उतार ले उसको आगे बढ़ने से कोई तकदीर नहीं रोक सकती, है ना. हम मिलते हैं फिर कल, तब तक लव एंड स्माइल्स फ्रॉम मी टू यू.

0: 24. It's 905-461-2424. ICICI Immigration.
1: अपने मकान की नेक्स्ट मंथ क्लोजिंग है, कुछ सोचा है टीवी और अप्लायंसेस कहाँ से लेने हैं?
2: हाँ, ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस, जहाँ स्पेशल सेल चल रही है, टीवी, फ्रिज, वॉशर, ड्रायर, किचन रेंज हुड, माइक्रोवेव, सारा कुछ मिल जाएगा बहुत ही रीजनेबल प्राइस पे।
1: सेल तो अब चल रही है पर हमें चाहिए नेक्स्ट मंथ।
2: आज के रेट हम लॉक भी करवा सकते हैं।
1: दैट्स वंडरफुल।
2: वहाँ से सेल फोन और इंडिया भेजने के लिए 220 वोल्ट का सारा सामान भी मिल जाएगा।
1: ब्रैम्पटन में ये कहाँ पे है?
2: ऑन बोवे हेड, जस्ट वेस्ट ऑफ मैक्लॉगलिन। टेलीफोन 9054502828 और विजिट ब्रैम्पटन अप्लायंसेस।
0: Pride of Mississauga Barbecue Tonight Restaurant, 35 Dundas Street West, Highway 10 और Dundas के intersection Mississauga में। Barbecue का असली मजा Barbecue Tonight पर। चरगा, लाहौरी फिश, चपली कबाब, कड़ाही गोश्त, चिकन टिक्का मसाला, चिकन बिरयानी, सीख कबाब, रेशमी कबाब, चिकन बोटी, चिकन टिक्का, बिहारी कबाब, लैम चॉप्स, अफगानी टिक्का, नेहारी और बहुत कुछ। खूबसूरत कुशादा पैटियो Barbecue Tonight Restaurant, 9052680088। It's 9052680088, Highway 10 और Dundas के intersection Mississauga। मेटा फर्नीचर होलसेल गैलरी। अगर आप ब्रांड न्यू, पायदार और लेटेस्ट डिजाइन के फर्नीचर की तलाश में हैं, तो मेटा फर्नीचर आपकी तमाम जरूरियात को पूरा करता है। बेहतरीन क्वालिटी और प्राइस की गारंटी। मिसिसागा, ब्रामटन, स्कारब्रो, कैम्ब्रिज और लंदन, ओंटारियो की पांचों लोकेशंस पर ब्रांडेड, ट्रेडिशनल और हाई एंड फर्नीचर की बेहतरीन वेरायटी। फ्लोर मॉडल्स पर स्पेशल डिस्काउंट, दूसरे स्टोर से 10-30% तक डिस्काउंट मॉडल नंबर की गारंटी के साथ। पांचों लोकेशंस के लिए एक ही नंबर 4169012810। 4169012810। ये लॉग इन हो metafurniture.com। हर हफ्ते स्पेशल डील्स का फायदा उठाइए। मेटा फर्नीचर, हर तरह का फर्नीचर होलसेल प्राइस पर।
3: जी जनाब, हम कहते हैं कि होलसेल प्राइस पे, तो ये वाकई होलसेल प्राइस है। आप कहीं से कंपेयर कर लें, 10-30% डिस्काउंट आपको फॉर श्योर मिलेगा। मीठा फर्नीचर होलसेल गैलरी, 4169012810। सभी लोकेशन के लिए एक नंबर है, metafurniture.com इनकी वेबसाइट है। मिसागा लोकेशन 3050 वेगा बोलेवार्ड, 295 क्वीन स्ट्रीट ईस्ट ब्रामटन, 1319 कैनेडी रोड स्कारबरो, 30 पाइन बुश रोड कैम्ब्रिज, 3075 वंडरलैंड रोड साउथ यूनिट डी। ये है लंदन ओंटारियो की पांच लोकेशन है इनकी। ब्रांडेड फर्नीचर चाहिए आपको, आपको ट्रेडिशनल फर्नीचर चाहिए, आपको हाई एंड फर्नीचर चाहिए, बेस्ट वैरायटी, बेस्ट क्वालिटी, लेटेस्ट डिजाइन आपको मिलेंगे। डायरेक्टली इंपोर्ट करते हैं, कंटेनर्स रेगुलरली आते हैं, इसलिए आपको मार्जिन जो है अपना थोड़ा रख के आपको देते हैं। तभी ये दावा करते हैं कि 10-30% तक आपको डिस्काउंट मिलेगा। स्पेशल डील्स एवरीडे आपके लिए लेकर आते हैं। मेरा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मजीद डिटेल उन्हें लेंगे। मेरा साहब, वेलकम यू इन वेरी पाकिस्तान टोरंटो।
4: थैंक यू वेरी मच भट्टी साहब, और रेडियो पाकिस्तान टोरंटो के सुनने वाले सभी बहन भाइयों को मेरी गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैंने भट्टी साहब कल भी कहा था, समर सेल है, मौसम में तो चलो थोड़ा बदलाव, आजकल फायर जो लगी हुई थी, स्मोक भी था, पर मिड्डा फर्नीचर इन साइड आपके लिए बहुत सारी डील लेके आते हैं। और मैं बड़े दिनों से खुद कंफ्यूज हो जाता हूँ भी किस चीज को बोलें प्राइस। कभी जैसे आपके रेडियो पे मुझे कभी, मैंने जो प्राइस पॉइंट वाली चीजें होती हैं, मैं लो एंड तो नहीं कहूंगा, प्राइस पॉइंट वाली हमने कभी नहीं बोली
3: जी जी।
4: और कई बार लगता है कि हमें बोलना चाहिए, या कई बार क्योंकि आजकल इकोनॉमी थोड़ा स्लो है, नो डाउट, थोड़ा हर बहन भाई आप सब मिडिल क्लास लोग हैं, मतलब अपने तो, लेकिन सभी मेहनतें भी करते हैं, सभी के खर्चे भी ज्यादा हैं। तो हमने कल से एक और बनाया
3: जी।
4: जो मेरे बहन भाई, जब हमारा बहन भाई वाला रिश्ता तो बना, जो आप ढूंढ रहे हैं वो आपको बाजार से सस्ता, अब एक तो सिर्फ बोलने में सस्ता है, हम कह रहे हैं आपके पास कोई एडवर्टीज प्राइस, कोई एडवर्टीज प्राइस जो आप ढूंढ रहे हैं, हमारी हमारी आइटम ढूंढ रहे हैं उसके ऊपर भी 10% कम कर देंगे। और जो आपने अगर कोई ढूंढी हुई है, तो हम अपने रिश्ते की चेन को लंबा करने के लिए ये हमने सोचा है कि मिनिमम तो 10% कोई भी, अगर जो आप आइटम ढूंढ रहे हैं, कई बार होता है हमारी वेबसाइट पे ना हो महंगे वाले में, तो बाकी साहब 10-20-30% हम सस्ते हैं, वो तो हम प्रूफ के साथ सस्ते हैं। जैसे चाहे आप टॉप ग्रेन लैदर चाहिए, रिक्लाइनर्स चाहिए, एशले के हाई एंड प्रोडक्ट्स जो चाहिए, मैग्नासन प्लस की, उसमें तो 30% सस्ते हैं। लेकिन वो जो 299, 399, 499 मतलब एड हम वो हम करते नहीं थे, 999 में मैट्रेस भी फ्री। तो अभी आपके रेफरेंस का कोई ओशवा से फोन आया था, कहते जी कम चलो मैट्रेस चाहिए 2 महीने के लिए दे दो। हमने कहा मैट्रेस तो दे देते हैं, लेकिन 2 महीने अगर कमर दुखेगी तो आपको भी उलाना देंगे और मिड्डा फर्नीचर को भी देंगे। हाँ, अगर जरूरत है तो हम 399 वाली 350, मतलब जो मैं ये कर सकता हूँ कि 399 वाली 350 में दे सकता हूँ, लेकिन ये नहीं कह सकता कि ये अब इसमें कमर नहीं दुखेगी या इसके स्प्रिंग नहीं चुभेंगे। तो हम चाहते हैं आप जो लेना चाहते हैं एक बार बेशक शॉप पर राउंड कर लें, एक बार हमें फोन कर लें, फिर हम व्हाट्सएप नंबर पे हमें वो मॉडल नंबर हमारे से हमारी प्राइस पूछ लें, 10% तो कम कर ही लें, हो सकता है 15% कर पाएंगे तो 15% कम करके देंगे। हम आपका रिश्ता मजबूत करना चाहते हैं और रिश्तों को तो बना हुआ है उस चेन को लंबा भी करना चाहते हैं, क्योंकि मैं सोचता हूँ कि जब तक फर्नीचर जड़े राह जाना नहीं कहते वाह भी की पैना, मतलब अगर आप फर्नीचर नहीं लेना तो आप फर्नीचर के बारे में नहीं सोचते। तो लेकिन बहुत प्यार मिला है आपके भट्टी साहब, आपके मार्फत बहुत हमें प्यार मिला है, ये प्यार जो मिला हुआ है उसे और मजबूत करेंगे, जो रिश्ता बना हुआ है उसे स्ट्रांग भी करेंगे और रिश्ते की चेन को और लंबा भी करेंगे और नए बहन भाई को भी अपने साथ जोड़ना चाहते हैं। तो हमारी एक छोटी सी पहल है माफी मांगते हुए, किसी के कंपटीशन नहीं कर रहे, कई बार ऐसे लगता है कि किसी के प्राइस को बीट वाली बात, मैं कह रहा हूँ हम सस्ते देंगे आपको, हम बीट वाली बात नहीं करना चाहते, हम ऊपर कहते हैं ऊपर वाला सभी को सभी के हिस्से का बिजनेस दे हम चाहते हैं, पर हमें प्यार मांगते हुए जरूर लालच रखते हैं कि आपका प्यार हमें सबसे ज्यादा मिले, तो वो मिल भी रहा है। थैंक यू वेरी मच भट्टी साहब। 416-901-2810 416-901-2810 और middafurniture.com से भी आप हमारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच,
3: बहुत शुक्रिया मैम साहब, नेक्स्ट सेगमेंट में आपसे बात करते हैं। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। 416-901-2810 416-901-2810 middafurniture.com इनकी वेबसाइट है। अजनाम पाकिस्तान में अब दुनिया भर में ये होगा अगर जंग इसी तरह लगी रही, आपने हुरमस के बाद एक और आपनाए है उस पर भी ईरान ने कहा अगर मैं उसको भी बंद कर सकता हूँ तो वो भी हो गया, तो फिर तो आप केओस समझें, $200 पर बैरल तक भी तेल की प्राइस जा सकती हैं। पाकिस्तान में 3 रोज के लिए पेट्रोलियम इस्तेमाल की कीमतों में इजाफा किया गया है, डीजल कीमत में 31.05 रुपये और नई कीमत 354 रुपीज हो गई, पेट्रोल कीमत में 5.44 रुपये इजाफा किया गया जिसके बाद नई कीमत 316 रुपये 15 पैसे फी लीटर हो गई है। नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, रात 12 बजे के बाद वहां पे ये 20 जुलाई तक जो है वो किया गया है, नाफिज़ अमल हो जाएगा। बड़ी ज़रूरत की चीज़ है, पेट्रोल के साथ ही सारी चीज़ें चलती हैं, जब ये कीमतें कम बढ़ती हैं तो हर चीज़ बढ़ जाती है, लेकिन क्या कीजिए, ओवरऑल हालात भी हैं, कुछ गवर्नमेंट भी अपनी लेवीज़ वगैरह इतनी बढ़ाई हुई हैं, क्या कह सकते हैं, यहाँ पे बैठ के तो हम थोड़ा सा अपना तबसरा कर सकते हैं। चलिए तबसरे के साथ साथ आपके लिए एक खूबसूरत सी शायरी और खूबसूरत सा नगमा, आइए सुनते हैं आज की शायरी।
5: न मैं यूं दर बदर फिरता न तुम खुद को सजा देते, ये अच्छा था कि हम दोनों जमाने को भुला देते, वही चेहरा वही आंखें वही चाहत वही खुशबू, कोई कर झांकता दिल में तेरी सूरत दिखा देते, किसी को हम बताते क्या किसी से जाके कहते क्या, तुम्हारे प्यार की बातें हंसी में क्यों उड़ा देते। बहुत अच्छा हुआ महफिल में रुसवाई न हो पाई कि रो देते खुशी से हम अगर तुम मुस्कुरा देते, ये बेहतर है कि दर्द अपना छुपा है अपने सीने में, मगर ना साध दुश्मन भी बहुत इसको हवा देते, तवक्को ही नहीं रखी किसी से भी भलाई की, अगर हम ये ना कर सकते तो मंजिल भी गंवा देते। चलो लोगों को छोड़ो तुम, इन्हें अब भूल जाओ तुम, भली है उनकी नफरत ही वो हमको और क्या देते, ना मैं यूं दर बदर फिरता ना तुम खुद को सजा देते, ये अच्छा था कि हम दोनों जमाने को भूले।

0: जिसमें $500 जो है वो पार्टिसिपेशन फ़ी है, $30,000 दो लोगों के लिए होगा, तीन ड्रॉ करेंगे, तीन फैमिलीज़ को जो है ये आज के लिए इसमें एलिजिबल हो सकेंगे। 1,000 जैसे ही लोग कंप्लीट होते हैं तो ये ड्रॉ कर देंगे। इसके अलावा आप 1 मुहर्रम से 30 सफर तक जो है इनकी फ्यूनरल मेम्बरशिप जो है वो भी ओपन है, आप रब्ता कर लीजिए मुश्ताक जदी साहब से 416-985-0293। खबरों का वक्त हुआ चाहता है और जुबैरदीन साहब आपके लिए खबरें पेश किया करते हैं। आपको बता दें कि रियल स्टेट के वाले कोई सर्विस चाहिए टीम भट्टी से रब्ता कीजिए, कॉल ताला भट्टी 6472957861। लिए चलेंगे आपको न्यूज़ की तरफ, पेश करें जनाब जुबैरदीन साहब।
1: न्यूज के लिए मताउन देते हैं आइकॉन इवेंट स्पेस, 6887 डिक्सी रोड मिसागा, डिक्सी डेरी के इंटरसेक्शन, 3 खूबसूरत हाल, 1200 तक अफराद की गुंजाइश, एम्पल पार्किंग। अपने खुशी के लम्हात को यादगार बनाइए आइकॉन इवेंट स्पेस के साथ। मजीद मालूमात के लिए कॉल कीजिए 4374252500, इट्स 4374252500, आइकॉन इवेंट स्पेस। न्यूज के लिए मताउन 6472957861।
2: खिदमत है आज की अहम खबरें। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने फजाई आलूदगी से निमटने के लिए कैनेडियन सामान पर मजीद टैरिफ आयद करने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि कनाडा के जंगलात में लगी आग से अमरीका बुरी तरह मुतासिर हुआ है और कनाडा की हुकूमत पर जंगल की आग को कंट्रोल करने में जानबूझकर गफलत करने का इल्जाम लगाया। वाज़ेह रहे कि इस वक्त भी कनाडा में 800 से ज्यादा मकामात पर आग लगी हुई है जो बेकाबू होकर मजीद फैलती जा रही है। दूसरी जानिब जंगलाती आग के बायस न्यूयॉर्क में 19 जुलाई को होने वाले फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल का इनेकाद खतरे में पड़ गया है। उधर अमरीकी सेंट्रल कमान ने ऐलान किया है कि उसकी अफवाज ने जुमे को ईरान पर मजीद हमलों का एक नया दौर शुरू किया है। जुमेरात की शब से होने वाले अमरीकी हमलों में 8 अफराद हलाक और 19 जख्मी हुए। उधर ईरानी फौज का कहना है कि उसकी बहरिया ने शिमाली बहर हिंद में एक अमरीकी बहरी जहाज को साहिल से साहिल तक मार करने वाले क्रूज मिसाइल से निशाना बनाया है। ईरानी पासदारा ने इनकलाब के एक बयान में कहा गया है कि ईरानी मुसल्ला अफवाज किसी भी वक्त अमरीकी बहरी अफवाज के खिलाफ कार्रवाई कर सकती हैं। ईरान की पासदारा ने इनकलाब ने सूबे खुजिस्तान में अमरीकी जासूस ड्रोन मार गिराने का दावा किया है, जबकि अमरीकी अल उदैद एयरबेस को भी निशाना बनाया गया। अमरीकी हमलों के जवाब में उर्दुन में अमरीकी जंगी तैयारों को मिसाइलों और ड्रोन से निशाना बनाया गया। पासदारा ने इनकलाब ने अमरीका पर इल्जाम आयद किया है कि उसने गुज़श्ता रात शहरी आदाफ को निशाना बनाया जिनमें जनूबी ईरान के शहर बंदर अब्बास में कई पुल, रिहायशी इलाके और पानी पंप करने का एक मरकज शामिल है। पासदारा ने इनकलाब ने दावा किया है कि उन्होंने शाम के इलाके तनफ में अमरीकी अफवाज के कमान सेंटर को निशाना बनाया है। अमरीकी सेंट्रल कमान का कहना है कि अमरीकी फौज ने ईरान की चाबहार बंदरगाह पर निगरानी का एक टावर गुज़श्ता रोज के हमले में तबाह कर दिया है। यमन के हूसियों ने ऐलान किया है कि अगर यमन के खिलाफ महासरा और जारियत जारी रही तो वो ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्ला मुश्तबा खामनेई की जानिब से जारी होने वाली हर हिदायत पर अमल दरामद के लिए तैयार हैं। उधर गजा के एक पनागुजी कैंप में एक जनाजे के लिए जमा शहरियों पर इसराइल के बराह रास्त हमले में 9 फलस्तीनी जाबहक जबकि 20 जख्मी हो गए। उधर बलूचिस्तान हुकूमत और क्वेटा धरना कमेटी के दरमियान मुजाकरात कामयाब होने के बाद एक माहिदा तय पा गया है। माहिदे के मुताबिक जियारत वाकई में जाबहक होने वालों के लवाहिकीन की कफालत, बच्चों की तालीम और मुआवजा सरकारी पॉलिसी के मुताबिक फराहम किया जाएगा। दूसरी जानिब सिक्योरिटी फोर्सेस ने बन्नू और मुलहका इलाकों में कार्रवाइयां करते हुए 24 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। आज़ाद कश्मीर के साबिक वजीर आजम सरदार तनवीर इलियास के काफिले पर फायरिंग हुई है जिसमें एक सिक्योरिटी गार्ड जाबहक और कई अफराद जख्मी हो गए। और आज रात से गैस की कीमत में 1 सेंट फी लीटर कमी हो जाने का इम्कान है। इसके साथ ही अब तक की खबरें खत्म हुई, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।
0: खबरें इस बार आपके लिए पेश किया करते हैं स्टूडियो में रब्ते के नंबर 416-593-0003। ईरान अमरीका की बात तो रोज ही करते हैं, मामला अभी तक चल रहा है, पता नहीं कब तक चलेगा, लेकिन हालात थोड़े से मुश्किल भी हो रहे हैं। पाकिस्तान ने भी मैसेज ईरान को दिया है कि सऊदी अरब के हवाले से, उन्होंने कहा कि सऊदी हमारी जो है वो रेड लाइन है। अब देखें इसके बाद क्या सूरत हाल बनती है। इधर ट्रंप साहब देखें, ये आग हमने तो नहीं लगाई है, अल्लाह की तरफ से है, लेकिन उसके बाद वहां पर सूरत हाल काफ़ी अमेरिकन रास्ते तो में खराब हो रही है और वहां पे अभी तो शायद वर्ल्ड कप के फाइनल की बात भी हो रही है।

0: स्पेशल पैकेज डील के लिए कॉल करें 9052753555 9052753555
1: Dundas Street East Unit 1C Mississauga
2: बहुत खुशबू आ रही है खाने में, ऐसा लग रहा है जैसे घर के पिसे हुए मसालों से बना हो।
3: अरे खुशबू कैसी नहीं होगी, ये हांडी के मसालों का कमाल है जो चुन चुन के इकट्ठे किए गए हैं खास हमारे लिए ताकि ये लज्जत और स्वाद हमें मिल सके।
4: हांडी मसाले बिल्कुल घर जैसा स्वाद।
5: फॉर होलसेल इंक्वायरी कॉल 4167465550 7465550।
6: अपने खुशी के लम्हात को यादगार बनाएं। आईकॉन इवेंट स्पेस में शादी, मेहंदी, रिसेप्शन, बर्थडे पार्टीज, कारपेट इवेंट्स, गजल और कवाली नाइट्स या किसी भी तकरीब के लिए तीन खूबसूरत और शानदार हॉल्स हैं जहां 1200 तक गेस्ट्स की भरपूर मेहमान नवाजी कर सकते हैं। तमाम हलाल डिशेस पाकिस्तानी शेफ की निगरानी में रिवायती जायकों के साथ तैयार की जाती हैं। इन हाउस स्टेजिंग, ऑडियो विजुअल सिस्टम, 10 प्रोजेक्टर स्क्रीन्स, मुकम्मल टेक्निकल सपोर्ट के साथ 6887 डिक्सी रोड मिसिसागा। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन एंड बुकिंग कॉल मिस्टर आलम 4374252500 और ब्रॉम्पटन में क्वींस मैनर इवेंट सेंटर 2 ऑक्शन लेन ब्रॉम्पटन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 416-814-3600।
7: सिंस 1993 MWC फूड बैंक्स हैव प्रोवाइडेड इंडिविजुअल्स एंड फैमिलीज विद नॉन पेरिशेबल फूड, हलाल मीट एंड एसेंशियल हाउसहोल्ड आइटम्स। ओवर 10,000 फैमिलीज अक्रॉस कनाडा रिलाई ऑन MWC फूड बैंक्स टू सप्लीमेंट देयर फूड रिक्वायरमेंट्स। वी सर्व इन स्कारबोरो, मिसिसागा एंड इन First Nations communities. Charity starts at home. Please donate generously to Muslim Welfare Canada. Call 1-866-754-3111 or visit mwcanada.org.
8: Sirf mortgages. That's Rajiv Talwar, the mortgage superstar. Mortgage residential, low ya commercial, for customized mortgage solutions, choose Rajiv Talwar. Mushkil se mushkil mortgage ho, last minute deal ho, ya phir credit issues ho. Rajiv Talwar ka wasi ilm aur tajurba aapka kaam aasan kar dega. To ya रखिए मॉर्गेज उनसे मत लीजिए जो मॉर्गेज भी करते हैं, बल्कि मॉर्गेज सिर्फ उनसे लीजिए जो मॉर्गेज ही करते हैं। कॉल राजीव तलवार ऑफ लीडिंग एज मॉर्गेज एक्सपर्ट्स 9058191001 9058191001 लाइसेंस नंबर 12374।
9: आवर लोन एंड क्रेडिट कार्ड बिल्स कीप पाइलिंग अप, वी हैव नो मनी टू पे देम विद आवर लिमिटेड इनकम।
10: आई एम अफ्रेड वी आर गोइंग टू गो बैंकक्रॉप्ट एंड लूज आवर हाउस, बिजनेस एंड ऑल एसेट्स। इज दिस व्हाई वी इमिग्रेटेड टू
11: कनाडा?
12: Help is just one call away. No need to file bankruptcy. We can save your assets, stop collection calls and make one monthly interest-free installment for maximum debt relief. Call Aisha Munawwar, Debt Solutions Specialist and Insolvency Counselor with Rumanek & Company Limited, a company with licensed insolvency trustee. Call Aisha Munawwar at 416-428-2165. That's 416-428-2165.
13: खुदा ना करे अगर आपका कार एक्सीडेंट हो गया और आप कानूनी मदद लेना चाहते हैं तो ना सिर्फ हम आपके हक का जायज ज्यादा से ज्यादा पैसा लेकर दिलवाते हैं बल्कि अपनी फीस भी आपका क्लेम दिलवाने के बाद ही लेते हैं। और मैं आपकी अपनी अंजुम कृषि आपकी अपनी जबान बोलती हूँ और हमारे पर्सनल इंजरी लॉयर्स की टीम आपके क्लेम को प्रोफेशनली हैंडल करते हैं। और अगर अपने क्लेम के सिलसिले में आप हमारे लॉयर के साथ मीटिंग करना चाहते हैं तो हमारी कंसल्टेंसी बिल्कुल फ्री है। आज ही मुझे कॉल करें, आपके कार एक्सीडेंट केस में आपका इन्फॉर्मेशन लेना आपका हक है। 416-570-0157
14: जी हाँ, अंजुम कुरैशी साहब जिनके रबते के नंबर 416-570-0157 है।
15: बहुत अरसे से कम्युनिटी को सर्व कर रही हैं, खुदा न खास्ता आपका एक्सीडेंट हो जाता है, आप गिर जाते हैं, बिल्कुल परेशान ना हो। बहुत जबरदस्त लॉ फर्म है, बहुत अरसे से जिनके साथ काम कर रही हैं, आपके अपनी जुबान में बात करती हैं, मैक्सिमम कंपनसेशन और फीस जब आपका केस सेटल हो जाए उसके बाद 416-570-0157 रबते का नंबर है। खुश आमदीद कहेंगे अंजुम कुरैशी साहब, अस्सलाम वालेकुम।
16: वालेकुम सलाम और तमाम सुनने वालों को आदाब, नमस्ते।
17: जी हाँ, हमेशा लेकर आते हैं एक अच्छी सी अवेयरनेस और आपको याद दिलाते हैं कि जहाँ आपके हुकूक हैं, जहाँ आपकी ड्यूटीज हैं, वहाँ पर आपके हुकूक भी हैं। यानी अगर आप कभी भी अगर गाड़ी में होते हैं और आपने इंश्योरेंस ली हुई होती है तो आप समझ लीजिए कि आपने अपनी ड्यूटी पूरी की। यानी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपने निभाई के बगैर इंश्योरेंस की गाड़ी आपने नहीं चलाई। और बगैर इंश्योरेंस की गाड़ी चलाना ना सिर्फ आपके अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी बहुत ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। अगर आपका कार एक्सीडेंट होता है, आप आपके पास इंश्योरेंस नहीं है और अगर आपकी बहुत सीरियस इंजरी हो जाती है, अल्लाह ना करे अगर आप काम पे जाने के काबिल नहीं रहते, आपका घर कहाँ से चलेगा, आपकी ज़िंदगी की ज़रूरियात कहाँ से पूरी होंगी, और उस पे सोने पे सुहागा कि अगर आप एट फॉल्ट हैं और आपने किसी को मार दिया और वो जब आपको सू करेगा तो ये आपकी अपनी पर्सनल जिम्मेदारी होगी। हमारा काम सिर्फ ये होता है कि हम हमेशा दूसरों के बारे में भी सोचें और अपने बारे में भी सोचें कि कार एक्सीडेंट कभी भी हो सकता है रोड पर जब आप होते हैं। तो क्या आपने अपनी ड्यूटी निभाई? अगर आपने अपनी ड्यूटी निभाई तो आपने दूसरों के लिए भी अच्छा किया और अपने के लिए भी अच्छा किया। हमारा काम होता है आप तक वो अवेयरनेस पहुंचाना जिसका ताल्लुक ट्रैफिक यानी कि कार हादसे से होता है, और कार हादसे में आपकी इंश्योरेंस ही वो चीज़ होती है जो आपको ज़हनी सुकून देती है और बहुत बड़े मसलों से बचाती है। अगर आपका कोई भी कार एक्सीडेंट होता है और जब आप हमारे पास आते हैं तो हमारे लॉयर्स ना सिर्फ बैठ के आपको ये बताते हैं कि आपके कार एक्सीडेंट में वो किस तरह आपकी मदद कर सकते हैं, बल्कि अपनी फ़ीस भी आपका क्लेम दिलवाने के बाद लेते हैं। और मैं जैसे कि हमेशा आपको कहती हूँ कि मैं आपकी अपनी अंजुम, आपको ये महसूस होता है, आपको ये फील होता है कि कोई हमारा अपना बंदा आपसे बात कर रहा है, और कार एक्सीडेंट में आप उदास होते हैं, दिल उदास होता है, परेशानी होती है, और उस वक्त आपके साथ शाना बशाना अगर आपके साथ कोई खड़ा हुआ है और हमारी टीम ऑफ लॉयर्स आपके साथ होती है जो ना सिर्फ आपके हक का पैसा दिलवाते हैं बल्कि अपनी फीस भी आपका क्लेम दिलवाने के बाद लेते हैं। 416-570-0157। जिंदगी रही तो ऐसी ही काम की बातें लेकर हाजिर होते रहेंगे और हमेशा की तरह बहुत अच्छी अवेयरनेस आप तक पहुंचाएंगे। अगर आपको कोई ट्रैफिक टिकट मिल गया है उसके लिए भी आप हमें कॉल कर सकते हैं, जो हमारे पास एक टीम मौजूद है जो आपके टिकट्स को भी डील करती है।
16: बस ये नंबर आपने अपने पास रखना है। जिंदगी रही तो मंडे को फिर हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। गुड नाइट।
15: गुड नाइट। बहुत शुक्रिया अंजुम कुरैश साहबा। मुद्दम सामी नंबर नोट कर लें 416-570-0157 416-570-0157। روڈے پاکستان ٹورانٹو سی ایم آر 101.3 FM۔ اچھا جناب، بس اسپورٹس میڈیسن سے منسلک لوگ کہتے ہیں صرف 10 منٹ میں پاؤں کی سوجن کم اور ذہنی تناؤ سے نجات کا ایک آسان طریقہ وہ بتاتے ہیں۔ برائن اسپورٹس میڈیسن جو ماہرین ہیں وہ کہتے ہیں کہ روزانہ صرف 10 منٹ تک زمین پر لیٹ کے ٹانگیں دیوار کے ساتھ اوپر رکھنا پاؤں کی سوجن کم کرنے، تھکن دور کرنے اور ذہنی سکون حاصل کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ طبی ماہرین کے مطابق ایک باقاعدہ مشق ہے جسے یوگا کی زبان میں وپریتا کرانی کہا جاتا ہے۔ یہ مشق جسم میں خون اور رطوبتوں کی بہتر گردش میں مدد دیتی ہے۔ ماہرین کہتے ہیں کہ طویل وقت بیٹھے رہنے، کھڑے رہنے یا سفر کرنے والے افراد کے لیے یہ طریقہ خاص طور پر بہت مفید ہے، اور اس مشق کے نتیجے میں پاؤں اور ٹخنوں کی سوجن میں کمی آتی ہے۔ کن افراد کے لیے مفید ہے؟ جو طویل وقت تک دفتر میں بیٹھتے ہیں، اساتذہ، طبی عملہ، زیادہ سفر کرنے والے افراد، ورزش کرنے، عمر رسیدہ افراد اس مشق سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ لیکن احتیاط کن کو کرنی ہے؟ جن کا بلڈ پریشر قابو میں نہیں رہتا، آنکھوں کے جن کے بعض امراض ہیں، گردن یا کولے کی سرجری ہوئی ہے، یا ان کو سنگین ہارٹ کے پرابلمس ہیں، یہ مشق کرنے سے پہلے ڈاکٹر سے مشورہ جو ہے وہ ضرور کریں۔ 416-593-0003 ریڈیو پاکستان ٹورانٹو سی ایم آر 101.3 FM۔

0: 2732393।
1: याद रखें, अगर आप किसी भी क्रिमिनल ऑफेंस में चार्ज हो गए हैं या आपको कोई भी फैमिली लॉ का मसला है, जैसे कि प्रॉपर्टी डिवीजन, स्पाउसल सपोर्ट, चाइल्ड कस्टडी एंड एक्सेस, या आपका कोई सिविल लिटिगेशन का मामला है, कम्युनिटी के जाने पहचाने और तजुर्बेकार लॉयर ताहिर मजीद से राब्ता कीजिए 6478384773। कानूनी मामलात के लिए उनसे राब्ते कीजिए जो कानून को मुकम्मल तौर पर जानते हैं। फॉर ऑल योर लीगल मैटर्स कॉल ताहिर मजीद 6478384773।
2: अपने खुशी के लम्हात को यादगार बनाएं। आईकॉन इवेंट स्पेस में शादी, मेहंदी, रिसेप्शन, बर्थडे पार्टीज, कारपोरेट इवेंट्स, गजल और कवाली नाइट्स या किसी भी तकरीब के लिए 3 खूबसूरत और शानदार हॉल्स हैं, जहां 1200 तक गेस्ट्स की भरपूर मेहमान नवाजी कर सकते हैं। तमाम हलाल डिशेस पाकिस्तानी शेफ की निगरानी में रिवायती जायकों के साथ तैयार की जाती हैं। इन हाउस स्टेजिंग, ऑडियो विजुअल सिस्टम, 10 प्रोजेक्टर स्क्रीन्स, मुकम्मल टेक्निकल सपोर्ट के साथ 6887 डिक्सी रोड, मिसिसागा। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन एंड बुकिंग कॉल मिस्टर आलम 4374252500 और ब्रॉम्पटन में क्वींस मैनर इवेंट सेंटर 2 ऑक्शन लेन, ब्रॉम्पटन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 416-814-3600। कैनेडा में आए हर खानदान का ख्वाब होता है कि उनका एक अपना प्यारा सा घर हो या कारोबार हो, लेकिन मॉर्गेज के बढ़ते रेट्स और घरों की बढ़ती कीमतें अगर आपके ख्वाब को पूरा नहीं होने दे रही, तो रॉयल फाइनेंशियल ग्रुप के शिराज हुसैन से राब्ता कीजिए। शिराज हुसैन और उनकी टीम 100 से ज्यादा लेंडर्स के साथ काम करते हैं। इनकी इंतहाई प्रोफेशनल टीम अपनी सर्विसेज में एक्सपर्ट हैं। मॉर्गेज चाहे घर की हो या कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, प्राइवेट, या आपको चाहिए इक्विटी लाइन ऑफ लोन, पर्सनल लोन या बिजनेस लोन, 100% गारंटीड अप्रूवल। कॉल शिराज हुसैन 6472714147 6472714147। SSR ऑटो रिपेयर 3438 शेपर्ड एवेन्यू ईस्ट, स्कारब्रो, वार्डन और शेपर्ड का इंटरसेक्शन। 24/7 ऑटो रिपेयर, वेरी क्लोज टू हाईवे 401। तमाम मेजर रिपेयर वर्क करते हैं। बॉडी शॉप, एक्सीडेंटल रिपेयर, डेंटिंग, पेंटिंग, इंजन रिपेयर, ऑयल चेंज, टायर चेंज, ब्रेक पैड्स एंड राउटर, व्हील अलाइनमेंट, बैटरी एंड एसी सर्विस। 24/7 टोइंग सर्विस भी अवेलेबल है। SSR ऑटो रिपेयर, कॉल नजीर चौधरी, अवैस चौधरी और मुनीर हुसैन 6473217444। इट्स 6473217444।
1: बारबेक्यू टुनाइट की दूसरी लोकेशन 5165 डिक्सी रोड, डिक्सी और एमको का इंटरसेक्शन, मिसिसागा में। 200 से ज्यादा लोगों की गुंजाइश, बड़ी पार्टीज भी आप अरेंज कर सकते हैं। बारबेक्यू आइटम्स, बिहारी कबाब, सीख कबाब, कड़ाही, बिरयानी, ताजा नान और बेशुमार डिशेज, जायका वही और खूबसूरत सेकंड लोकेशन। पार्टीज की बुकिंग या मालूमात के लिए कॉल कीजिए 9052829868। बारबेक्यू टुनाइट की सेकंड लोकेशन 5165 डिक्सी रोड, डिक्सी और एमको का इंटरसेक्शन, मिसिसागा में। 9052 9868। पाकिस्तान टोरंटो CMR 101.3 FM। एक बार फिर आपको ले चलेंगे मीडा फर्नीचर होलसेल गैलरी, मिसिसागा, ब्रैम्पटन, स्कारब्रो, कैम्ब्रिज, लंदन, ओंटारियो। 5 लोकेशन आपको सर्व करते हैं। 4169012810 पांचों लोकेशन के लिए यही नंबर है। मीडा फर्नीचर .com की वेबसाइट है। समर की स्पेशल सेल, अभी मेरे साहब ने फर्स्ट सेगमेंट में कुछ अनाउंस की थी चीजें, मजीद डिटेल भी लेंगे। मेरे साहब वेलकम यू अगेन सर।
3: थैंक यू भट्टी साहब, और रेडियो पाकिस्तान टोरंटो के सुनने वाले सभी बहन भाइयों को मेरी गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। बिल्कुल, मिड्डा फर्नीचर आपकी सेवा में हाजिर है। 5 लोकेशन, ब्रैम्पटन, मिसिसागा, स्कारब्रो, कैम्ब्रिज, लंदन। और जैसे कि मैंने पिछले लिंक में कहा था, समर सेल, हम अपने जो समर सेल है, समर का टाइम है, तो आपके लिए फर्नीचर की हर आइटम पे, फिर एक दो आइटम की बात नहीं कर रहे, जो आप ढूंढ रहे हैं, चाहे वो मेरे बहन भाई कोई प्राइस पॉइंट ढूंढ रहे हैं, चाहे कोई, उसके लिए तो हम जाने, भट्टी साहब हाई एंड फर्नीचर के लिए तो हम जाने जाते हैं। अगर आपको टॉप ग्रेंड, जैसे टॉप ग्रेंड जेन्युइन लेदर का कुछ अगर चाहिए, तो मिड्डा फर्नीचर की प्राइस जब कंपेयर करने के बाद, मेरे कहने पे नहीं, मैं तो कह ही रहा हूँ सस्ता हूँ, जब आपको कंपेयर कराते हैं तो 30% का फर्क है। 4000 वाली चीज आपको 3000 में है, मतलब ये, और दावे के साथ है, प्रूफ के साथ है, ऐसा नहीं है बोलने में, तो मैं भी बोल रहा हूँ, कोई बहन भाई बोल सकता है, चाहे वो ब्रांड नेम फर्नीचर की बात। और जो हर आइटम में मिनिमम 10% तो सस्ते हैं, वजह बता रहे कि हमें आपकी दुआओं से जो 5 स्टोर हुए, हमें वॉल्यूम डिस्काउंट मिलता है, 10% हमें मिलता है, 10% तो हर आइटम में सस्ते हैं। और इसके अलावा जो बहन भाई वाला मार्जिन, हर बंदा 2 पैसे कमा के देता है, हम भी कमा के दे रहे हैं और बहन भाई कमा के दे रहा है, तो अपने मार्जिन में से 5% छोड़ देंगे तो 15% तो किसी प्राइस को कम कर देंगे, मतलब 10 से 15 ऑप्शन में किसी पे हो सकता है 15 ना कर पाऊं, क्योंकि अगर कोई और भी कॉस्ट पे मतलब लिया लो मार्जिन पे खेल रहा होगा तो 10% हम आपको कम करके दे रहे हैं। तो आपको ओपनली ये कह रहे हैं कि जो आप ढूंढ रहे हैं, मतलब आपका, क्योंकि हर किसी बहन भाई का अपना एक बजट है, अपनी एक रिक्वायरमेंट है, साइज है, प्राइस है, घर का साइज है, देयर आर सो मेनी फैक्टर्स। तो जो आप ढूंढ रहे हैं मिड्डा फर्नीचर पे कम से कम 10% और बचत पाएंगे, और ये भी साथ में आपको कंपेयर भी करा देंगे। कई बार हम भट्टी साहब इनोसेंटली, जैसे एक कंप्रेस वुड का बेड आता है, कंप्रेस वुड के बेड जो होते हैं उसकी रेलिंग तीन तरह की आती है, एक तो रेलिंग जैसे आईकिया टाइप आती है, एक से स्टील के ग्लाइडर लगे होते हैं, एक मेटल के लगे होते हैं, बेड की पिक्चर देखने में सेम है, लेकिन एक चीज वही जो 600-700 की है वो 1500 की भी हो सकती है। अब आप ये मत समझ लें कि वो 1500 वाला 700 में मिल रहा है, तो 700 में मिल रहा है तो उसकी रेलिंग जरूर चेक कर ले। मतलब मेरे कहने का, मैंने एग्जांपल क्रिएट करने की कोशिश करी, आई एम नॉट ऑफरिंग द प्राइस, कि पिक्चर दोनों की सेम है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बताने में तो यही बता रहे हैं कि 1500 वाला 700 में है, लेकिन डिफरेंस है। तो हम हमारे स्टोर पे बहन भाई के नाते आपको इस चीज से आगाह भी कराया जाता है कि ये प्राइस है, ये क्वालिटी है, आपको ये है। हाँ, मॉडल टू मॉडल तो फिर आपको कह ही रही है कि 10-15% सस्ते हैं, तो आएं अजमाएं और अपना बनाएं। मिड्डा फर्नीचर, मिड्डा फर्नीचर, मिड्डा फर्नीचर, 4169012810, 4169012810, और वेबसाइट से भी middafurniture.com से भी आप हमारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच,
1: बहुत शुक्रिया मेरे साहब। नेक्स्ट सेगमेंट में आपसे फिर कल नेक्स्ट प्रोग्राम में बात करते हैं। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। नंबर नोट कीजिए, 4169012810, 4169012810 middafurniture.com की वेबसाइट है। वेस्ट इंडीज के लेजेंडरी ऑलराउंडर सर गार्डफील्ड सोबर्स 89 ईयर्स के एज में इंतकाल कर गए। एक ओवर में 6 छक्के लगाने वाले पहले खिलाड़ी थे। टेस्ट क्रिकेट की सबसे बड़ी इंफरादी भी इनिंग्स उन्होंने अपने जो है वो दौर में खेली थी। बेहतरीन ऑलराउंडर उन्हें कहा जाता है और तेज और स्पिन बॉलिंग दोनों में यकसा महारत रखते थे। 58 में पाकिस्तान के खिलाफ अपने पहले क्रिकेट टेस्ट में 365 रन नॉट आउट बना के उन्होंने ये खेला था। लारा ने बाद में उनका रिकॉर्ड 36 साल के बाद तोड़ा था। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में एक ओवर की तमाम 6 गेंदों पर 6 छक्के मारने का नाकाबले यकीन कारना भी उन्होंने 1968 में नॉटिंघम शहर की तरफ से खेलते हुए अंजाम दिया था।
4: Pakistan Toronto, Alaska Safar, Dil Se Deta.

0: रानी राजधानी।
1: राजधानी स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट के प्योर वेजिटेरियन लजीज खाने, जिसके स्वाद के सभी है दीवाने। फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आकर खाइए या फिर केटरिंग करवाइए, मिठाइयाँ ऐसी की मजा आ जाए।
0: ये है राजधानी राजधानी राजधानी।
1: मल्टीपल लोकेशंस इन GTA। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट rajdhanisweets.ca।
2: सिर्फ मॉर्गेजेस, दैट्स राजीव तलवार द मॉर्गेज सुपरस्टार। मॉर्गेज रेजिडेंशियल लो या कमर्शियल, फॉर कस्टमाइज्ड मॉर्गेज सॉल्यूशंस चूज राजीव तलवार। मुश्किल से मुश्किल मॉर्गेज हो, लास्ट मिनट डील हो या फिर क्रेडिट इश्यूज हो, राजीव तलवार का वसी इल्म और तजुर्बा आपका काम आसान कर देगा। तो याद रखिए, मॉर्गेज उनसे मत लीजिए जो मॉर्गेज भी करते हैं, बल्कि मॉर्गेज सिर्फ उनसे लीजिए जो मॉर्गेज ही करते हैं। कॉल राजीव तलवार ऑफ लीडिंग एज मॉर्गेज एक्सपर्ट्स 9058191001 8191001, license number 12374.
3: Since 1993, MWC Food Banks have provided individuals and families with non-perishable food, halal meat, and essential household items. Over 10,000 families across Canada rely on MWC Food Banks to supplement their food requirements. We serve in Scarborough, Mississauga, and in First Nations communities. Charity starts at home. Please donate generously to Muslim Welfare Canada. Call 1-866-754-3111 or visit mwcanada.org.
4: तो चलिए जनाब, आपसे जाएंगे इजाजत, दुआ में रखिएगा याद, हौसला निहारना, बल हौसला भी घोड़ने की चीज, एंड ऑलवेज फॉलो योर हार्ट, क्योंकि सब अच्छे की आवाज प्रोग्राम के बाद रابطे के नंबर 416-300-5600। आज टॉक शो नहीं करेंगे, मंडे को इंशाल्लाह ताला, और वीकेंड है, बच्चों को वक्त दीजिएगा, उन्हें आपके वक्त की जरूरत है। बशर्ते जिंदगी इंशाल्लाह मंडे शाम 7 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी। स्टूडियो इंजीनियर मरियम और अपने मेजबान अरशद भट्टी को दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़ और सब पर दिमाग़।